हाँ तो मैं पहले ही गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये गाना चेंज नहीं हुआ या गाने ने मुझे मौका नहीं दिया या कुछ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ हो नहीं पाई। इसी वजह से मैंने बोला चलो भाई तू कर ले, पहले तू पहले गाना चला ले, उसके बाद मैं आता हूँ। तो यस, गाना यहाँ पे चला था नखरीले, शंकर महादेवन और अली जफर की आवाज़ में आपने सुना। अली जफर का एक वो गाना है, बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को। यार मैं ढूंढ के बताता हूँ, बेसिकली ही

लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, यस यस यस यस यस, ये वो मूवी है जहाँ पे जिसमें यू नो वो फिल्म है। तो कौन सा पॉपुलर गाना है मुझे प्लीज याद दिलाएगा। बट अभी के लिए आप बने रहिए, बिकॉज होमसिक रेमेडीज के लिए कंटेंट है आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है। तो आप मुझे कॉल करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका सफर जब आप पहली बार आए थे यहाँ पे, बींग फ्रॉम एनी वेयर, लाइक यू नो चाहे आप इंडिया से हो या फिर फीजी से या फिर आप कोई और कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से भी हो, और आप अगर अपना पूरा शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप बेझिझक कर सकते हैं इस एक गाने के बाद। अलविदा चलाते हैं रिप्राइज वर्जन का, अलविदा।

0: with Ketan.
1: Mujhe pasand hai ladka. Hum.
2: Welcome back. You are listening to Lunchbox. I was so busy in reading one article and I completely forgot that I have to make sure, I have to give you a chance to call me over here right now. 0800-004-866. यहाँ पे आप मुझे call करिए और मुझसे बात करिए, share करिए आपका experience regarding. Sorry, not sure क्या हो गया माइक को, but yes, regarding आप जब पहली बार यहाँ पे आए थे तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी चीजें आप मुझे बताइए. आप फोन करिए 0800-004-866 पे. आई बी वेटिंग फॉर इट एंड यस इट्स गोना बी अमेजिंग कंटेंट टू डिस्कस. कुछ कॉल्स पहले भी आए थे जहाँ पे उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों का यू नो ऑब्वियसली सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जिनका एक्सपीरियंस था उन्होंने अपना शेयर किया और उससे हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने का मौका मिला. यानी कि आप यहाँ पे जब आए थे ऑब्वियसली completely different city, completely different region, completely different culture as well. And काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सच में बहुत early आए थे आज के compare में, as in like not early, literally early, but कहने का मतलब है कि 2010 से पहले पहले I don't know how much Indians were already here in New Zealand. तो उनका स्ट्रगल तो वॉज ऑन अनदर लेवल. सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव योर कॉल. आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए मुझे कि क्या स्टोरी आपकी है. सो यस, 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल करिए और बताइए मुझे आप अपनी स्टोरी. वैसे यस, एक मैसेज आया है उसे भी हम पढ़ लेते हैं. लेट मी, किधर गया ये. मीनवाइल आप मुझे कॉल करते हैं और शेयर करते हैं आपकी स्टोरी कि क्या ऐसी कहानी है आपकी जब आप आए थे और कितना टाइम आपको, कितना वक्त आपको लगा यहाँ पे रिगार्डिंग यू नो एडजस्ट होने में. काफ़ी लोगों ने बताया कि उन्हें 2 साल लगा, किसी ने बोला कि मुझे 7 साल लगे. सो क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली, बट इट्स अमेजिंग टू नो, राइट. सो यस, कॉल करिए मुझे 0800-004-866 पे और मैं बात करूँगा ज़रूर यहाँ पे. ये मैसेज आया, ये मिल गया मुझे, मैं पढ़ लेता हूँ. ये है विकास की तरफ से. विकास भाई कहते हैं, Hi Ketan, how are you? Lovely to hear this. Every afternoon during our lunch time, you always bring out this topic which we don't usually use. We don't usually talk. But of course, I caught a mild flu this week in Auckland's freezing winter weather. And it made me miss home more than ever. Back home in Fiji, whenever I was sick, my mom would instantly take over, making hot soup, checking my temperature every hour and constantly pampering me. That's so cool. Here, even with a fever, you have to drag yourself out of bed to boil water, pop a Panadol and make your own toast while shivering under the duvet. Being sick away from home is ultimate homesickness test. How do we get through this when family is thousands of miles away? Well, कोई है यहाँ पे जो कॉल करके बताना चाहे या फिर मुझे मैसेज करके बताना चाहे कि इनकी जो ये सुझाव है क्या हो सकता है, राइट. बट यस, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अभी 11 साल हो गए मुझे. इनिशियली तो मुझे भी बहुत ऐसा फील होता था, बट द गुड थिंग इज यू नो वॉट दैट यू ऑलवेज लिव विथ यू डोंट. मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल स्टेज पे आपको अकेले नहीं रहना चाहिए. अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं तो वो थोड़ा सा यू नो इट माइट गोना क्रिएट मोर सिकनेस. लाइक आप घर को ज़्यादा मिस करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स आप अकेले रहना पसंद करते हैं. तो वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं जब आया था नया नया तो आई वाज अलोन इन द रूम. जो मेरे 1 से 2 हफ्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाले थे बिकॉज ऑफ कोर्स मैं जिनके साथ रहता था उस घर में दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज. ऑफ कोर्स एक वो मैचअप हो नहीं पाया, बट देन स्लोली मुझे दोस्त मिले, इंडियन ही दोस्त बने, फिर मैं उनके साथ मैं शिफ्ट हो गया था एंड देन माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज फ्रॉम देयर. जो मेरे को स्टार्टिंग में 2 हफ्तों का स्ट्रगल मैंने देखा था वो मुझे काफ़ी फील हुआ डिफरेंस आफ्टर शिफ्टिंग टू देयर हाउस. सो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप नए हैं यहाँ पे तो ट्राई टू स्टे विथ योर कम्युनिटी, उनके साथ रहो. और वैसे देखो यहाँ के भी अगर लोग हैं आपके तो जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फैमिली हर जगह हो, बट जिनके साथ आप रह रहे हो उनके साथ भी आप फैमिली बना के यू नो यू जस्ट कैन हैव अ गुड फैमिली अराउंड. लेट्स पिक अ फोन. हेलो
0: हेलो
2: हाय
0: हाय केतन. ओके आयुष दिस साइड, हाउ आर यू?
2: हाय आयुष, क्या हाल है? कल वाले आयुष हैं आप?
0: एकदम बढ़िया यार, एकदम बढ़िया. मैं एक्चुअली आपका रेडियो ही सुन रहा था.
2: राइट.
0: एंड ऑब्वियसली जो टॉपिक आपका है आज होमसिक वाला, तो यार आई एक्चुअली रेजोनेट क्वाइट वेल विद इट. मैं आपको बताता हूँ, ऑब्वियसली इट्स माय एक्सपीरियंस एंड आई थॉट इट वुड बी अ वेरी नाइस प्लेस टू शेयर दैट एक्सपीरियंस.
2: राइट, गो फॉर इट.
0: तो मैं एक्चुअली न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइम आया था 2010 में.
2: ओके.
0: तो आई ऑब्वियसली वॉज वर्किंग हियर. मैंने बर्गर किंग में काम किया उस टाइम और भी जगहों पे कुछ कुछ काम किया.
2: राइट.
0: बाकी ऑब्वियसली आई वॉज वेरी होम सिक दैट टाइम, क्योंकि मैं इतना एंजॉय नहीं कर रहा था. एक बड़ा रीजन उसका ये था कि आई डिड नॉट बाय अ कार बैक देन. दैट वॉज अ बिग रीजन. तो आई मीन अगर कोई नए लोग कंट्री में आ रहे हैं, कोई नया बंदा आया है कंट्री में, इट्स अ वेरी फ्रेंडली एडवाइस. Definitely buy a car in this country. It will change your life.
2: Oh.
0: You will become good point, more actually. Publicly available. You will be more publicly available. You will have a bigger social circle. Or shayad aap itna zyada homesick na feel karo.
2: Right.
0: So that is just one thing. So obviously us time pe maine gaadi nahi li. Mere kahi friends hain jinhone mujhe kaafi us time pe advice kiya. मैंने नहीं मानी वो बात उनकी. नहीं यार चल रहा है. बट दैट वॉज ऑब्वियसली बैड थिंग ऑन माई पार्ट. तो मैं फिर एट द एंड सब करके फाइनली आई वेंट बैक टू इंडिया.
2: राइट. कार लेने गए थे आप इंडिया?
0: काफी उस टाइम पे मैं यार वापस गया था 2012 में.
2: अच्छा, मुझे लगा कार लेने गए आप.
0: नहीं, मैं भाई फाइनली चला गया था. मतलब ना
2: अच्छा,
0: मैंने अपना वीजा अप्लाई किया. मैं फाइनली शिफ्ट हो गया कि मैं इतना होमसिक फील कर रहा था. आई वाज लाइक काइंड ऑफ रियली हार्ट ब्रोकन कि यार मेरे को मजा नहीं आ रहा है. बट वो मजा ना आने का बिगेस्ट रीजन वाज मी मायसेल्फ. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट.
2: राइट. दिस इज रियली हार्ड थिंग टू एक्सेप्ट कि भाई जगह भी नहीं हो सकती. इट कुड बी यू एज वेल. दिस इज वेरी गुड ऑन यू यार. गुड ऑन
0: यू एज वेल. तो आई थॉट कि शायद ऑब्वियसली ये मैं मे बी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जरूर जा रहा हूँ, बट अगर कोई मेरे को सुन रहा है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव दिस एडवाइस कि कंट्री या जगह कभी बोरिंग नहीं होती. आप खुद भी बोरिंग हो सकते हो या आपके जो डिसीजंस है दैट कैन मेक योर लाइफ मोनोटोनस.
2: दैट इज आई थिंक या दैट मेक सेंस.
0: या
2: आपकी खुद की पर्सनल चॉइस भी होती है.
0: अगर एब्सोल्युटली आपसे जगह कोई बोरिंग नहीं होती यार. बंदे आपको हर जगह पे मिल जाते हैं और हर जगह पे कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा who will resonate very well with you.
2: Perfect. बहुत ही अच्छी बात बोली आयुष भाई. एंड वेरी लवली टॉकिंग टू यू एज वेल यार.
0: थैंक यू सो मच. बाकी या बैक देन 2010 में व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं होता था, तो आई थिंक सबसे बड़ी रेमेडी आज की डेट में इज व्हाट्सएप. You feel lonely, you want to talk to your family, you just do a video call right away.
2: That's true.
0: बहुत बड़ी help है आज की date में.
2: That's true. I know, like it wasn't, there was no video call before, 2015, I guess. Apart from someone who's using, who already on the iPhone or someone already using the, Viber? What? I forgot the app name.
0: Viber.
2: मैं वाइपर बोल रहा हूँ.
0: Viber.
2: Yes. Viber पे क्रेडिट लेके then you need to call. But cool. Thank you so much, Ayush भाई.
0: मुझे अभी भी याद है. उस टाइम पे 2010 में हम लोग एक सैफरन करके कार्ड होता था.
2: Right.
0: $8 का आता था and we used to get 300 minutes in it. ऐसे उस टाइम पे बात होती थी इंडिया में.
2: True.
0: अब तो things have changed drastically. तो यार मेरे हिसाब से अगर आप रेमेडी होम रेमेडी पूछोगे, I mean, obviously, if you are missing your home, the best advice would be go out and meet people.
2: That is true. But yeah. Cool. Thank you so much, Ayush bhai, aapke time ke liye aur aapke call ke liye. And very lovely, so good ki aapne apna experience bhi share kiya aur aapne ye bhi bataya about what you felt during that time. Like, you realized it later, but glad to know that. काफी कम लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को. बट कुल थैंक यू सो मच ब्रो एंड यू हैव अ लवली लवली डे. लेट्स प्ले सम सॉन्ग फॉर यू नाउ.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
4: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
5: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
6: Mike here from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. For as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
7: Show us your crack.
8: Ah, Novus!
9: Get 70% off selected stock at Spa World's Clearance Centre sales event this Thursday to Sunday.
10: There's thousands off display models, scratch and dent, and end-of-line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first-come basis.
9: This Thursday to Sunday from 9 a.m. at Spa World's Clearance Centre, 9 Sylvia Park Road.
11: Okay, let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
12: अरे बबीता, thank you so much for giving me गुरुज नंबर यार.
13: क्यों? क्या हुआ?
12: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
14: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800-564-424.
15: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
16: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
17: Non-stop Bollywood.
18: Hum.
17: Playing Bollywood's biggest hits.
19: Lunchbox with Ketan.
20: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
19: Office shout out.
21: Hi hi hi hi.
17: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ब्रेकफास्ट विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
3: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: Gully gang, gully gang. Water, water, gang.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। 14 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 4 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। सनसेट आज होगा 5:34 पे, लेकिन ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही चांस 1% भी नहीं है। लाइट सदरली विंड्स आपको महसूस हो सकती है।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: क्या नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुनेंगे अंटिल 3। वेल यस, इस आर में भी काफी कुछ सुनने को मिलेगा आपको, लेटेस्ट खबर से बॉलीवुड तक और बॉलीवुड से ऑफ कोर्स लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट तक। और साथ में आपको मौके भी दिए जाएंगे जहां पे आप जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं यहां पे, उसके थ्रू आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। वो कैसे, आप बस बने रहिए, सुनते रहिए। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बढ़िया गाने से, फुकरेटा सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में।
0: बचाओ क्या,

वेलकम बैक ओरे पिया, राहत फतेह अली खान की आवाज में आपने गाना सुना है, वन ऑफ माय फेवरेट, वन ऑफ माय गो टू गो सॉन्ग, जिसमें ऑफ कोर्स एक गाना जो है मैशअप बढ़िया लगता है, एक तो ये हो गया ओरे पिया, और इसी के अंदर बहुत ही प्यारा है दे वो जो गाना है ना इंग्लिश वाला, देयर्स ए फायर स्टार्टिंग इन माय हार्ट, ये बहुत ही बढ़िया जाता है गाना इस पे. We could have had it but yes, आप बस बने रहिए बिकॉज और भी बातें करेंगे. लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए 5599 पे, या फिर मुझे कॉल भी करेगा थोड़ी देर में. मैं जैसे आपको बोलता हूँ आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज हुई हो जहाँ पे यू फेल्ट लाइक यार क्या था ये क्यों था, मतलब एक होता ना कि कुछ ऐसे पल हो जाते हैं जहाँ पे इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है. बट यस, जब तक वो होता है उससे पहले मैं बता देता हूँ दैट आप मुझे ड्राइव लिख के 5599 पे टेक्स्ट भेज दीजिए ताकि आपको एक पॉडकास्ट का फुल ऑडियो लिंक मिल जाए. और उस पॉडकास्ट में हमने बात की है शनील भाई से, शनील लाल, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से डीप जाके बात की है LGBTQ. जी हाँ, उनका हक, उनका उनके ऊपर जो भेदभाव होता है और क्या रिप्रेजेंटेशंस हैं, और यू नो एक होड़ जो है हमेशा उनकी रही है, बहुत सालों से होती आ रही है और आज भी वही है, जो है इक्वालिटी, उसकी कमी बहुत ज़्यादा है. तो उसी के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की है, काफ़ी कुछ आपको उसमें सुनने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा. सो यस, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर आपको सुनना चाहिए. मुझे ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक लिंक पहुंच जाए. और साथ में अगर आप विजय एंड पूजा का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो के बारे में अगर जो भी कंटेंट होता है उसको सुनना चाहते हैं जस्ट व्हाइल ड्राइविंग, यू वांट टू हैव सम फन, सो आप BF लिखे, BF बोले तो ब्रेकफास्ट का इनिशियल है, वो 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक ना पॉडकास्ट की लिंक पहुँच जाए. And of course, there's one more.

0: thing happening. Amazingly, जैसे कि मैंने बताया था कल की 100K views हो चुके हैं, 1 lakh views हो चुके हैं on YouTube मेरे गाने की, Sapphire 2.0 बहुत ही बढ़िया जा रहा है आपके पास. I would love to get some more feedback. अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए YouTube पे, आप सर्च करिए Sapphire केतन और गाना आ जाएगा. Obviously ऑडियो भी आएगा, वीडियो भी आएगा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड आप वीडियो देखिए और स्टार्टिंग से देखिए कि कैसे स्टोरी कहानी शुरू होती, क्या रीज़न था, किस वजह से ये गाना बना है. एक छोटी सी हमारी पहल थी जो हमने नॉर्थ आइलैंड पे घूमे हैं बहुत ज़्यादा, यू नो, फ्रॉम ऑकलैंड टू तोरंगा, तोरंगा से हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स से हम ऑल द वे डाउन साउथ गए, फिर वहाँ से रिटर्न के टाइम माउंट ताराना की, दो माउंट ताराना की का शॉट हम यूज़ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बट उसके बाद हम फिर से हॉबिटन गए, बहुत अलग अलग प्लेसेस पे गए. सो यू वुड एंजॉय द वीडियो, हाईली रिकमेंड आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा. आप मेरे प्रोफाइल पे भी जाके आप देख सकते हैं अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो. बट यस, ये सारी चीज़ों के साथ साथ अभी लंच टाइम रेंट लाइन की भी बातें होगी थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो आज का, ओनली ऑन हम 104.2 FM. लंच बॉक्स विद केतन.
1: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
2: इसके पीछे
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
5: The boss shouted us coffees this morning from BP.
6: No way.
7: We in trouble?
5: Nah, it's BP Plus.
7: What is that?
5: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
8: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months. Plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
9: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
10: Please use your imagination for the following ad.
11: If I won Powerball, the first person I'd tell would be... and would surprise all our friends by...
10: Imagine winning $4 million this Wednesday. Play in store or online.
12: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है. हाँ,
13: अच्छा
12: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं.
13: मिसेस सिंह,
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
16: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
17: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
18: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
19: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Tūtaki. All Together Auckland.
2: Lunchbox with Keithan. Mujhe pasand hai ladka. Hum. Lunchtime Rant Line.
0: वेलकम बैक, लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है. मुझे कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 पे. वेल यस, कुछ मैसेजेस मिले हैं मुझे आज. एक्चुअली देखिए ना, तो कॉल्स बहुत कम आ रहे हैं आजकल, ये लास्ट के दो हफ्ते. मेरे को लगता है कि जो लॉन्ग वीकेंड था उसके बाद इतना बदलाव आया लोगों में, दैट दे आर नॉट फीलिंग वेरी गुड इन टू कॉलिंग मी एंड डिस्कस करना यहाँ पे. नॉट श्योर यार, क्या रीज़न हो सकता है, देखते हैं यार. आज कॉल करिए मुझे 0800-44866 पे. एक तो फ्लू भी काफ़ी लोगों को हो रहा है, यू नो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जो मेरे रेगुलर मैसेज भेजने वाले हैं या फिर जो रेगुलर कॉल्स करते हैं मुझे वो भी नहीं भेज पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्लू ऑब्वियसली. क्योंकि मेरी भी आवाज़ में, आई डोंट नो इफ यू कैन नोटिस और नॉट, बट मेरे भी आवाज़ में थोड़ा बदलाव तो है. दैट यू नो आई फील लाइक थोड़ा जुकाम तो मेरे में भी है, मुझे भी है, नॉट मेरे में भी है, मुझे भी है. पर यस, मैसेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं. पूजा कहती हैं, टुडेज रेंट इज अबाउट पीपल हु स्टैंड स्टिल एट द एंड ऑफ द एस्केलेटर. राइट, दैट इज सो कंसर्निंग. ऐसा बहुत होता है यार, बहुत होता है. लाइक यू नो मेरे को एक इंसिडेंट याद है दैट यू नो पीपल they don't even want to stop anywhere. They have one level of floor fix कि भाई मुझे 11 माले पे जाना है या फिर 12 माले पे जाना है. अब यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि भाई इधर किधर इतनी ऊंची बिल्डिंग, भाई सिटी जाओगे वहाँ पे है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द 2021 जब मैं यहाँ पे रहता था, मैं सिटी में रहता था. तो वहाँ पे बेसिकली ऑब्वियसली कार्ड नहीं होता था, कार्ड के बिना तो आप यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन जिनके पास कार्ड होता था वो एक्सीडेंटली कोई भी गलत वाला लगा लेते हैं. समटाइम्स यू नो 3, 4, 5 ऐसे डाल देते हैं. उस चक्कर में क्या होता था कि यू नो लिफ्ट इतनी स्लो होते हो जाती, तो वो मुझे काफ़ी इरिटेट करती. इस जो मैसेज आया है पूजा का उसके थ्रू मुझे लगा. उसके बाद अरविंद कहते हैं टकरीनी से, व्हाई डू पीपल लीव 1% मिल्क इन द ऑफिस फ्रिज एंड पुट द बॉटल बैक. ये सही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग. उनको ये होगा कि यार क्या पता 1% जो दूध है वो भी कोई यूज़ कर ले. बट ग्लैड मैं, मतलब हम यहाँ पे तो नहीं है, मीडिया वर्क्स में तो ऐसा कोई नहीं है. यू नो अगर वो खाली है, थोड़ी सी है, तो दे विल जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ केप्ट आउटसाइड समवेयर. और कोई होगा तो उनसे पूछ लेंगे भाई इतना सा ही बच्चा है, वुड यू लाइक टू यूज़ इट और नॉट, ऐसे पूछ लेते हैं. राकेश का है मैसेज, वो कहते हैं फीजी इंडियन डैड्स विल सर्कल द कार पार्क फॉर 10 मिनट्स टू सेव 2 मिनट्स वॉक. नॉट जस्ट विद फीजी इंडियन, इवन लाइक मेरे पापा भी ऐसे हैं एक्चुअली. नो खैर इंडिया में तो पार्किंग का होता नहीं तो है नहीं, लेकिन व्हेन ही वेंट टू मुंबई, मतलब जब वो आए थे तो उनको मैंने बाइक दी थी चलाने के लिए, तो पुश बाइक, सॉरी नॉट लिटरली वो गियर वाली बाइक, पुश बाइक मैंने दी थी. तो जहाँ पे पार्क वहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं थी, और फिर दूसरे के उनको जब पार्किंग मिली तो वहाँ पे पेड पार्किंग थी, यानी कि 10 रुपये की पार्किंग थी. लेकिन उन्होंने 10 रुपये बचाने के चक्कर में 1 किलोमीटर दूर जाके पार्क की, जहाँ पे पार्किंग हुआ मिल गई फॉर फ्री. मैंने कहा पापा आई नो आपके पास बहुत टाइम है बट स्टिल थिंक अबाउट इट. बट आपके अगर पापा या फिर आपके भी अंकल या फिर आपके चाचा मामा या फिर आप खुद ऐसा करते हैं तो मुझे बताइए 5599 पे.
2: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लंच बॉक्स. वैसे यस, एक नया आर्टिकल आया है जिसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में. बट यस, काफ़ी लोगों ने मुझे यू नो मैसेजेस भेजे हैं जिनके बारे में थोड़ी देर में बात होगी. बट एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा है कीवी डिज़ाइनर फेस ऑफ विद अली एक्सप्रेस शीन कॉपीज. ये जो दो ब्रांड है ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं हर जगह जहाँ पे. ऑफकोर्स यू नो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव. आई एम प्रीटी श्योर ये आपके और एक और ऐप है वो तो डेफिनेटली आपने डाउनलोड किया होगा और आपने यूज़ भी किया होगा. बट लोग इतना इस चीज़ में क्लेम कर रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है या ऐसा कुछ है. एंड बट यस, कुछ जो कपड़े हैं वो काफ़ी कॉपीड भी लगते हैं कि वो यहाँ मिले ना मिले, इसलिए लोग काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या सच है क्या सही नहीं है. बट आप मुझे बताइए कितना आपको कंफर्टेबल फील होता है इन टर्म्स ऑफ जब आप बाय करते हैं. इज़ दैट द एग्जैक्टली थिंग यू गेट व्हेन यू बाय इट आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर. मेन इशू पता है क्या, मेन इशू इसमें होता है दैट अली एक्सप्रेस और शीन जैसे बहुत ही बड़ी फास्ट फैशन वेबसाइट न्यूजीलैंड डिज़ाइनर के कपड़ों के डिज़ाइन और फोटोज़ चुरा कर सस्ते दाम पर उनकी कॉपीज बेच रहे हैं. यू गेट इट व्हाट आई मीन. तो बेसिकली कुछ ब्रांड्स हैं जो जिनके डिज़ाइंस यहाँ बन रहे हैं और वही ब्रांड वही डिज़ाइन अली एक्सप्रेस और यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते मामले में. एंड ऑफ कोर्स द क्वालिटी नॉट श्योर कैसी है उसकी, बिकॉज जिन्होंने मंगाया होगा जिन्होंने यूज़ किया होगा उन्हीं को पता होगा. कुछ ब्रांड्स हैं वो काफ़ी अफेक्ट हुए हैं जैसे कि रूबी और फ्राइडे फ्लेमिंगो जैसे लोकल ब्रांड्स ने कंप्लेन की है कि उनकी ओरिजिनल डिज़ाइन को कॉपी किया गया है. क्वालिटी और फैब्रिक अलग होने के बावजूद डिज़ाइन बिल्कुल सेम दिखते हैं. कैसे पॉसिबल है ये? वेल, लीगल स्ट्रगल पता है क्या यहाँ पे? ये लोकल ब्रांड्स काफ़ी छोटी होती हैं और इसीलिए इनके पास इन मैसिव इंटरनेशनल कंपनीज के खिलाफ लड़ने के लिए इजीली फंड या लॉयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं. डिज़ाइनर का कहना है कि ये सब देखकर उन्हें बहुत हेल्पलेस फील होता है. और अभी यहाँ पे डिमांड पता है क्या कर रहे हैं वो, न्यूजीलैंड की फैशन इंडस्ट्री अब स्ट्रिक्ट रूल्स और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रही है कि ताकि छोटे डिज़ाइन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी और क्रिएटिव डिज़ाइन को इन कॉपीकैट से प्रोटेक्ट किया जा सके. क्या रिव्यू है इसमें आपका? आप मुझे 5599 पे भेज सकते हैं टेक्स्ट कि आई मीन लाइक डेफिनेटली आई वुड से कि यार ये चीज़ होनी चाहिए. बट डू यू थिंक दैट इट इज़ गुड टू हैव दोज काइंड ऑफ थिंग्स ओवर देयर? जो ये ब्रांड्स जो मैंने बताया ब्रांड्स के नाम प्लस ऑफ कोर्स जहाँ पे बिक रहे हैं, आपको लगता है क्या ये सही है या गलत? 5599 नंबर यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं.

0: सैटरडे नाइट, आज ट्यूसडे को चला के बहुत ही बड़ा मजा आ रहा है आपको बस प्रिपेयर कर रहा हूं मैं कि सैटरडे नाइट को आप ये गाना चलाइए और एकदम मस्त एंजॉय करिए। बेनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में आपने गाना सुना। पर यस, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। बड़ा हिस्टोरिक स्टेप हुआ था आज के दिन 28 जुलाई 1893 को न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में वुमेन के वोटिंग राइट्स के लिए एक बहुत बड़ी पेटिशन प्रेजेंट की गई थी। इसमें लगभग 32,000 वुमेन्स के सिग्नेचर थे, जो उस वक्त की न्यूजीलैंड की लगभग 25% एडल्ट यूरोपियन फीमेल पॉपुलेशन थी। पहले के अटेम्प्ट्स में वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन मेड 1880 से इसके लिए स्ट्रगल कर रही थी। इससे पहले 1891 में 9,000 सिग्नेचर्स हुए थे और 1892 में 20,000 सिग्नेचर्स की पेटिशन को पार्लियामेंट के कंजर्वेटिव अपर हाउस ने रिजेक्ट कर दिया था। वैसे दुनिया में हिस्ट्री भी क्रिएट हुई है और वो ऑब्वियसली जब जहां पे आप लगे रहते हो तो रिजल्ट भी अच्छे पॉजिटिव आते ही हैं। 1893 की ये पेटिशन सुपर सक्सेसफुल रही। इसके बाद नए इलेक्टोरल एक्ट पास हुए और न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा सेल्फ गवर्निंग कंट्री बना जहां वुमेन को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में वोट देने का ऑफिशियल राइट मिला।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
7: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manuka. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: We've all been there. 6 p.m., traffic sucks, and that chicken for dinner, still frozen.
9: Ditch dinner dread and come home to HelloFresh. Tender kiwi lamb, salmon, juicy beef, and local produce, ready in the fridge when you are.
8: Take back dinner time with HelloFresh.
10: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
11: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: Lunchbox with Ketan।
15: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: लंच के मंच पे।
0: चलिए बॉलीवुड की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव, सीबीएफसी ने इंडिया में स्पाइडरमैन के रिलीज से पहले 8 सेकंड के जो सीन्स हैं उसे हटाया गया है। आई डोंट नो इफ दैट गोना बी हैपनिंग ओवर हियर इन न्यूजीलैंड एज़ वेल। आई डोंट थिंक सो बट यस, 8 सेकंड के शॉट्स जो है उसे डिलीट किया है। लकी वी आर इन न्यूजीलैंड, अदरवाइज हो सकता है वो 8 सेकंड का क्या सीन है वो हम देख नहीं पाते, और हो सकता है कि कल को नेटफ्लिक्स पे आया रिलीज़ और फिर वहाँ पे नेटफ्लिक्स या जो भी ऐप है, जो भी ऑनलाइन OTT है, वहाँ पे अगर मूवी आ रही है, मेरे ख्याल से डिज्नी हॉटस्टार डिज्नी पे आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्वल का कहीं ना कहीं आई थिंक दे हैव कॉन्कर्ड द ऐप, राइट? सो आई थिंक इट माइट गोना कम ओवर देयर। बट यस, दूसरा स्कूप ये है कि रणवीर कपूर धूम 4 फ्रेंचाइजी से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, ये एक स्कूप है, अंदर की खबर है, अब कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले टाइम पे पता पड़ेगा। बट रणबीर कपूर मेन विलन में नजर आने वाले थे धूम 4 में, लेकिन अब वो नहीं है और YRF ने शुरू कर दिया है सर्च फॉर द नेक्स्ट विलन अनदर एक्टर को। क्या लगता है आपको कौन होगा? मुझे पता है क्या लग रहा है, रणबीर कपूर अगर निकले तो मेरे को लग रहा है रणवीर सिंह आने वाले हैं, और रणवीर सिंह तो खैर खा ही जाएंगे, यू नो बाकियों को, वो इतनी दमदार एक्टिंग करते हैं, कोई भी करता है, कोई भी करे, इवन रणबीर कपूर वो ऑल्सो आउटस्टैंडिंग, कुड हैव बीन आउटस्टैंडिंग, बट ऑफकोर्स वो अब है नहीं फिल्म में। बट यस, कुछ फिल्में रिलीज हुई, उनका कलेक्शन देख लेते हैं। 13 यार हूँ मैं रिलीज हुई है, अभी पेंडिंग है वर्डिक्ट उसका, 0.31 यानी कि 1 करोड़ का कलेक्शन भी अभी तक नहीं हो पाया, सिर्फ 30 लाख का ही कलेक्शन हुआ है अभी तक। द इंडियन स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, जिसमें आई थिंक श्रेयस तलपड़े भी एक्ट कर रहे हैं, 0.63 का कलेक्शन हुआ है। उत्तर दा पुत्र 28 लाख का कलेक्शन, दुल्हनिया ले जाएंगे 18 लाख का कलेक्शन, और जन नेता 9.68 का कलेक्शन, यानी कि इनमें से जो भी मैंने अभी नाम बताया उनमें से अभी तक सारी की सारी फिल्में जो हैं वर्डिक्ट जो है पेंडिंग ही जा रहा है, देखते क्या रहता है, बट अभी तक कुछ और बता नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ ये रिलीज हुई थी जो सुपर फ्लॉप हुई है, 0.01 का ही कलेक्शन किया। बट यस, धमाल 4 स्टिल पेंडिंग, 148.4 इंडिया से कलेक्शन कर चुकी है अभी तक। दिल से

चले कुछ एक बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूँ। फेमस हैवी मेटल बैंड सिस्टम ऑफ डॉन और फेथ नो मोर न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में एक काफी एक्सक्लूसिव वन ऑफ लाइव शो परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया खबर होगी उनके फॉलोअर्स की, उनके चाहने वालों की, उनके लिसनर्स के लिए। जो डेट और वेन्यू है वो भी आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए और बस वेट करिए कि कब इनकी टिकट जो है वो खुले, बॉक्स खुले और आप जाएं और टिकट खरीद सके। ये कॉन्सर्ट वैसे नेक्स्ट ईयर 7 फरवरी को होने वाला है, वाइट टांगी वीकेंड को, हेनरी स्टेडियम वेलिंगटन में। जी हाँ, ऑकलैंड में नहीं, वेलिंगटन में। सो इफ यू आर विलिंग टू ट्रैवल ओवर देयर, मेक श्योर आप जाएं और अच्छे से ले लेंगे टिकट, ले लेने पहले से ही टिकट लेना। इसका पहला जो 28 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो आप गूगल कर लेना, जनरल टिकट्स जो है वो 31 जुलाई करीबन सुबह 11 बजे से शुरू होगी टिकट पर। हाँ, तो ये आप देख लेना गूगल करके कि कहाँ से टिकट मिल रही है। बट यस, इसका मेन रीज़न पता है क्या है? टूरिज्म को बूस्ट करना। गवर्नमेंट और लोकल टूरिज्म बॉडीज को उम्मीद है कि इस इंटरनेशनल इवेंट से वेलिंगटन की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। सो आई एम अज्यूमिंग कि इस बैंड को सुनने के लिए काफ़ी लोग आएंगे, इवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज वेल, क्योंकि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ये वन ऑफ शो हो रहा है यहाँ पे वेलिंगटन में। सो देखते हैं यार क्या क्या रहता है, वेलिंगटन में होने वाला है, मज़ा आ जाएगा यार, मतलब पहली बार देखने को मिलेगा। नॉट श्योर इफ बट यहाँ पे कौन उन्हें सुनता है, आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट भेजिए, बताइए मुझे। और अगर आप सुनते हैं तो कौन सा गाना उनका है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। 5599 इज द नंबर। लेकिन ये 7 फरवरी को ये इवेंट होने वाला है वेलिंगटन में, उससे पहले आप अभी ऑनलाइन जाके गूगल कर लीजिए टिकट कहाँ मिलेगा, आप खरीद के एंड देन एन्जॉय द शो फॉर हिम। दे आर कमिंग ऑन 7th ऑफ फेब नेक्स्ट ईयर।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000

0: बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
2: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
3: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
7: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
8: Kabhi bhi, kahi bhi. Mast malang jo.
9: Lunchbox with Ketan.
10: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
11: इसके पीछे
7: हम.
8: Skip your replay.
12: एक बड़ी खबर लेके आया हूँ यहाँ पे. न्यूजीलैंड के टॉपर डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मर और लॉन्ग सर्विंग मेयर डेविड ट्रीविविज का 63 इयर्स की उम्र में अचानक डेथ हो गई है. लेगेसी एंड सर्विस, उन्होंने टाउपो कम्युनिटी को लगभग 24 साल तक सर्व किया है, जिसमें वो 2013 से 2025 तक चार टर्म्स मेयर रहे. लोकल लेवल पर वो काफ़ी पॉपुलर थे और लोगों से मिलना जुलना उन्हें बहुत ही पसंद था. उनके कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनमें से उनके टेन्योर में लोकल रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सर्विस को बचाना, सीबीडी रीडेवलपमेंट और नए टाउपो एयरपोर्ट टर्मिनल्स के लिए फंडिंग लाना उनका सबसे बड़ा काम था. उनकी हेल्थ करीबन 2019 में उनकी वाइफ एना ने उन्हें एक किडनी डोनेट की थी, जिसके बाद 10 घंटे लंबी सर्जरी हुई थी. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पिछले 3 साल में एक भी काउंसिल मीटिंग मिस नहीं की. अब देख रहे डेडिकेशन आप कि सर्जरी हुई, प्रॉपर सर्जरी हुई, बट स्टिल ही नेवर मिस अ सिंगल मीटिंग. एंड उसके बाद ऑफकोर्स करंट मेयर जॉन फुनल और पूरे सिटी काउंसिल ने उन्हें सम्मान में एक मिनट का मौन रखा. उनकी फैमिली से ने इस मुश्किल वक्त में प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की है, यानी कि इन्फॉर्मेशन तो बाहर आ गई है, लेकिन ऑफ कोर्स दे जस्ट रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब देम, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट इट एज वेल. सो यस, अगर आप भी कुछ उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं, आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट भेज सकते हैं आपके अपने नाम के साथ, ताकि मैं यहाँ पे अनाउंस कर सकूँ.
8: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए बात करते हैं आईसीसी की। ऑफकोर्स मैच हुए हैं अभी थोड़े दिनों पहले। इंडिया तो खैर जीत चुकी है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, 3-0 से जीता, जिसमें से वैभव सूर्यवंशी बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइमलाइट में आ चुके हैं और जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी अब जानने लगे हैं। कुछ और मैचेस हैं वो उन पर बात करते थे। अभी हाल फिलहाल तो कुछ मैचेस दिख नहीं रहे मेन में, लेकिन वुमेन में एक्चुअली सॉरी माय बैड, लेट मी जस्ट क्विकली हैव अ लुक। आज के दिन ऑस्ट्रिया वर्सेस इजराइल के बीच मैच है, टर्की वर्सेस इजराइल, फ्रांस क्रिकेट अंडर 19, आइल ऑफ मैन अंडर 19 और इटली अंडर 19, जर्मनी अंडर 19, स्विट्जरलैंड अंडर 19, बेल्जियम अंडर 19, ये सारे जो मैचेस हैं ये क्वालिफाई यूरोपियन क्रिकेट वर्ल्ड कप यूरोपियन डिवीजन 2 क्वालिफायर चल रहा है, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर वुमेन की बात करें तो अभी हाल फिलहाल कतार अंडर 19 वर्सेस कुवैत अंडर 19 चल रहा है। कतार ने 102 रन बना लिए हैं 3 विकेट के साथ। साथ में श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान भी 4:30 बजे शुरू हो जाएगा, उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। नामीबिया और हांगकांग के बीच में भी मैच होने वाला है वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे और भी है, और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मैं लेके आऊँगा आपको कि कौन कौन से स्पोर्ट्स पे आप नज़र रख सकते हैं आज या कल में। बढ़िया से एक और चीज़ थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ करण औजला के शो के बारे में, तो आप बस बने रहिए, थोड़ी देर में बताऊंगा। और आप जैसे ही सुनते हैं आप फट से अप्लाई कर दीजिए बाय सेंडिंग मी द टेक्स्ट 1559। क्या भेजना है मैं आपको बताऊंगा, मैं सवाल पूछूंगा थोड़ी देर में।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए सवाल कर देता हूँ। सवाल से पहले आपको बता देता हूँ, राज गढ़वी गरबा नाइट होने जा रहा है 1st of August को, इस सैटरडे को। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, फटाफट से जाइए eventstickets.co.nz पे और टिकट खरीद लीजिए। स्वप्न शाह उन्हें कॉल करिए 0224394736 पे, ताकि आपको मिल जाए जवाब रिगार्डिंग जो भी आपके पास सवाल हो। सो यस, वन नाइट वन सेलिब्रेशन, काउंटलेस मेमोरीज, इस वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेलिब्रेशन के लिए आप फट से टिकट ले लीजिए। महात्मा गांधी सेंटर में होने वाला है 1st of August को। राज गढ़वी लाइव, लोटस प्रोडक्शन, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांची ग्रुप आप सभी के लिए प्राउडली प्रेजेंट करते हैं इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड गरबा सेलिब्रेशन, जिसमें फीचर हो रहे हैं खुद द सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव। बढ़िया से ये आप फटाफट से टिकट ले लीजिए eventstickets.co.nz पे जाके। एंड नाउ मेरा सवाल रिगार्डिंग करण औजला, जो कि होने वाला है स्पार्क एरिना में 25th of August को, यानी कि नेक्स्ट मंथ, लेस देन वन मंथ ही आपके पास बचा हुआ है। वैसे मेरा सवाल पता क्या है, इस सवाल का जो भी जवाब मुझे मिलेगा, आप मुझे फट से KA लिखिए, KA, और अपने जवाब के साथ 5599 पे आप भेज दीजिए। वेल यस, द सवाल इज, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार करण औजला है? ऐसी कौन सी कार है जो करण औजला के पास है जो बहुत ज्यादा महंगी है, लाइक उनके पास सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कार कौन सी है, ये आप मुझे भेज दीजिए 5599 पे। KA लिखिए, करण औजला का इनिशियल है KA, और राइट आंसर के साथ मुझे 5599 पे भेज दीजिए और ड्रॉ में आप शामिल हो जाएंगे इसी के साथ। वेल यस, शामिल तो होंगे, लेकिन शामिल होने के बाद अगर आप लकी रहे तो आप जीत सकते हैं इस डबल पास के हकदार। वैसे अगर आपको लेना भी है टिकट तो hum.roa.nz पे जाइए, livenations.co.nz पे जाइए, वहां से आप टिकट कहाँ कैसे खरीदना है वो आप पता कर सकते हैं। स्पार्क एरिना में इनका शो होने वाला है 25 अगस्त को। सो यस, वन नाइट वन सुपरस्टार वन एपिक शो, एंड यस आप सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ करण औजला को ही नहीं, जबकि उनके साथ, बल्कि उनके साथ आ रहे हैं इक्की भी ज्वाइन कर रहे हैं फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ हिट सॉन्ग्स। जी हाँ, करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं यहाँ पे ऑकलैंड में। सो यस, डबल पास अगर जीतना है तो मुझे आपको गूगल करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट KA लिख के आंसर लिख देना कि मोस्ट एक्सपेंसिव कार करण औजला कौन सी ओन करते हैं, उसका जवाब मुझे 5599 पे भेज दीजिए। KA लिखना ना भूलेगा, बिकॉज उसी के साथ आप ड्रॉ में शामिल होंगे।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
3: ड्राइविंग यू होम,
4: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप दिलजीत हो?
6: आए आए बताओगे यार।
4: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepy head, sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
8: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली बस मेरा फोकस है। अच्छा बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: प्लीज यूज योर इमेजिनेशन फॉर द फॉलोइंग एड।
12: इफ आई वन पावरबॉल, द फर्स्ट पर्सन आई'd टेल वुड बी एंड वुड सरप्राइज ऑल आवर फ्रेंड्स बाय।
13: Imagine winning $4 million this Wednesday. Play in store or online.
14: And if you're just joining us after the break, we're talking about...
15: Holy... $10 deals on Uber Eats.
16: Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
17: TradeDepot.co.nz.
18: Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Kukar 50-inch smart TVs, $499. Vogue black glass wall ovens, $349. 60 centimetre black range hoods, $79. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम
1: TikTok.
0: चलिए टेक टॉक के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सोशल मीडिया जायंट मेटा यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के पैरेंट कंपनी के खिलाफ अमेरिका ने टेनेसी स्टेट में एक बहुत ही बड़ा कोर्ट ट्रायल शुरू कर चुके हैं। इस केस में टेनेसी के लॉयर ने जूरी के सामने आरोप लगाया है कि मेटा ने अपने ही इंटरनल रिसर्च वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर किया है, जिसमें यह साफ बताया गया है कि इंस्टाग्राम के कुछ एडिक्टिव फीचर्स जैसे कि इनफिनाइट स्क्रॉल, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन और ऑटो प्ले टीन्स की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। लॉयर्स के मुताबिक इन फीचर्स की वजह से बच्चों में सोशल मीडिया की लत इतनी ज्यादा लग रही है, जिससे उन्हें डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर और सेल्फ हार्म जैसे सीवियर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और इन सभी वार्निंग के बावजूद मेटा ने प्लेटफॉर्म पर से इन फीचर्स को नहीं हटाया, क्योंकि कंपनी का जो मेन फोकस है वो है टीन्स को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक ऐप पर रोक कर एड रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाना। दूसरी तरफ मेटा के लॉयर्स ने इस सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी प्लेटफॉर्म पर मौजूद खतरों को लेकर हमेशा से ट्रांसपेरेंट रही है। उनका कहना है कि जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स में दिखाए जा रहे हैं वो दरअसल इस बात का सबूत है कि मेटा एक्टिवली अपने प्लेटफॉर्म की कमियां जो हैं वो ढूंढती है ताकि उन्हें इम्प्रूव किया जा सके। और उन्होंने पेरेंट्स और टीन्स की सुरक्षा के लिए भी एक नए सेफ्टी टूल्स भी लॉन्च किए हैं। ये केस अमेरिका भर में मेटा के खिलाफ चल रहे 42 स्टेट लॉसूट्स में से एक है, और इसे पहले न्यू मैक्सिको में भी मेटा ऐसे ही एक लॉसूट हार चुकी है, जहां उस पर $375 मिलियन का फाइन लगा था। अगर टेनेसी स्टेट्स ये 7 हफ्ते लंबी ट्रायल जीत जाती है तो कोर्ट मेटा पर ना सिर्फ भारी फाइनेंशियल पेनल्टी लगा सकती है बल्कि इंस्टाग्राम को मजबूर कर सकती है कि वो टीन्स के लिए अपनी प्लेटफॉर्म के वर्किंग स्टाइल्स और एल्गोरिदम में थोड़ा बदलाव लेके आए। क्या लगता है आपको, जो ये चीज हो रही है, ऑफ कोर्स यार ये इम्पैक्ट तो बहुत ही करती है। हम ऑब्वियसली इंस्टाग्राम तब आए थे जब हम टीन से निकल चुके थे, बट डू यू थिंक, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफ़ी होंगे जो इंस्टाग्राम जब आया था तब खुद शायद टीन होंगे या फिर स्टिल दे आर इन टीन कैटेगरी, बट व्हाट यू थिंक आई मीन ये चीज़ तो डेफिनेटली बदलाव लाना चाहिए। एज अ पेरेंट्स आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आना चाहिए इस चीज़ में? आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं 5599 पे। जी हाँ,
1: दिल से

0: Ferina ama skunjegi. Throwback.
1: थैंक यू सो मच. व्हाट अ डे इट हैज़ बीन. बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा. और जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आज, होपफुली काफ़ी यू नो इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करेगी आपकी लाइफ में. एंड आप भी प्लीज़ एआई को लाइटली मत लीजिए. ट्राई टू लर्न इट एज मच एज पॉसिबल. जितना जहाँ से नॉलेज मिल सकती है आपको, आप लीजिए. बिकॉज ये जो यू नो अभी कह सकते हैं कि दिस इज़ द इवोल्यूशन पार्ट. जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, चाहे आप काम कर रहे हो या फिर आप हाउस होल्ड हो और लाइक हाउस वर्किंग हो, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर आप कोई आर्टिस्ट हो, हर एक चीज़ में एआई आ चुका है. ऑफिस में काम करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, यू नो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है दैट आज अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आज अगर आप इस ट्रेन में ना बैठे एआई वाली, तो शायद आप पीछे छूट सकते हैं. तो यस, यही कंसर्न है मेरा. बट यस, आई विल टेक अ लीव. आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज़.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: live 24/7 on Rova.
1: Coffee Break with Sandy.
2: कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है कॉफी ब्रेक में. और 4 बजे के बाद ड्राइव शो शुरू हो जाएगा मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हाउ इज इट गोइंग सो फार? आज का दिन वैसे बहुत ही ब्राइट सनी सा ब्यूटिफुल सा डे है. सो यस, क्या आपने किया आज पूरा दिन? सो काम कैसा जा रहा है आपका, वो भी यहाँ पे आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं. कॉफ़ी ब्रेक में थोड़ी मस्ती भी करेंगे, क्या हो रहा है, कुछ कॉम्पिटिशन्स है आपके लिए उसके बारे में भी जानकारी रहेगी. स्टे ट्यून्ड.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश हीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज़ द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एंड वेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइस provider.
4: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
5: क्यों क्या हुआ
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी

कॉफी ब्रेक आप यहां पे सुन रहे हैं। वैसे करण औजला आपके सुपर सिटी में 25 अगस्त को लाइव परफॉर्म करने वाले हैं स्पार्क अरीना में। टिकट अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है, hum.trova.nz या फिर livenation.co.nz पे जाके अपने टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पास जीतना है तो ये मौका भी आपको मिल सकता है। आपको करना क्या है, बहुत इजी है। आपको KA एज इन करण औजला, KA स्पेस आपको यहाँ पे ये लिख के भेजना है कि करण औजला पहले ऑकलैंड में कब आ चुके हैं, इससे पहले उन्होंने किस साल में टूर किया था, यानी कि दिस इज़ लाइक 2026। क्या करण औजला 2025 में आए थे, 2024 में आए थे, 2023 में आए थे या 2022 में आए थे। तो मैंने आपको 4 ऑप्शंस दी है, इसमें से एक सही आंसर है। इज इट 2022, 2023, 2024 या 2025? इन चारों सालों में से करण औजला किस साल न्यूजीलैंड में आए थे और स्पार्क अरीना में ही इन्होंने लाइव परफॉर्म किया था। KA कीवर्ड के साथ साल का नाम और अपना नाम लिख के भेज डालिए 5599 पर।

0: शो विद सैंडी एंड रिज़बे।
1: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा फाड़ देंगे।
2: गुड आफ्टरनून, 3:30 बज चुके हैं, 3:32 टू बी प्रिसाइज ऑन द 20th ऑफ जुलाई, मंगलवार, और आपका स्वागत है ड्राइव शो में। आज जल्दी शुरुआत। हाय सैंडी।
3: या वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रिज़बे, कैसे हो तुम?
2: मैं बढ़िया सैंडी, आप कैसे हो यार?
3: हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा जा रहा है सब। आज यार 28 जुलाई है, अगर आज आपका बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आप सिटी के अराउंड है तो रिमेम्बर ट्यून इन कीजिए 87.7 एज वेल।
2: 87.7 एफएम एज वेल, क्यों 87.7 पे ही सुनिए?
3: मतलब 104 भी चलेगा, लेकिन देन अगर आप 87.7 कर लेंगे तो आपको और मजा आएगा, अगर आप सेंट्रल लाइक सिटी के अराउंड है।
2: जी जी, और जो हमें 702 पे मिस करते हैं सुनने के लिए, तो वो 87.7 पे तो सुन सकते हैं ना अभी सिटी के।
3: अगर आप सिटी के अराउंड होते हैं,
2: गिर्द है तो,
3: अदरवाइज 104.2 या फिर रोवा के जरिए। रोवा तो ना अपने ऐसा बना ही लीजिए, फेवरेट में डाल दीजिए।
2: जी तो अभी आज सैंडी किस चीज के बारे में हम
3: आज हम कुछ एंट्रीज भी लेने वाले हैं रिज़बे, यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन्स भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ऑल्सो काफी लोगों के सवाल रहेंगे रिगार्डिंग बाली बैंकॉक ट्रिप के बारे में। वी ट्राई टू ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी शाम, एक ऐसी इवनिंग जहाँ पे आप यहाँ पे आ सके। हम प्रमोटर्स को भी बुलाएं, जो सन टूअर्स हैं उनको बुलाएं, एंड देन वी कैन हैव लाइक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉर यू गाइस।
2: जी तो हम ये प्लान कर रहे हैं जहाँ पे यू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ और जानना है, डिटेल जानने हैं ट्रिप के बारे में,
3: बट वी विल नीड आरएसवीपी फॉर दैट।
2: वाइब जाननी है कि वाइब कैसी है, यू नो आजकल वाइब भी बहुत लोग चेक करने के लिए यू नो बिफोर यू डिसाइड। सो एक इन्फो इवनिंग रखने वाले हम लोग, जहाँ पे यू कैन कम इन एंड यू नो हैव दिस चैट इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट। अभी के अभी आप हमें मैसेज करके भेजिए, ड्राइव IN करके लिखकर भेजिए, सो दैट वी गेट एन आइडिया कि भाई वर्थ इट है करना कि नहीं। बट या इफ यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस,
3: अगर आप प्लान कर रहे हैं बाली बैंकॉक के लिए हमारे साथ जाने के लिए, लेकिन आपके पास काफ़ी सवाल है कि ये कैसे होगा, वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, डिटेल आपको जाननी है, बिकॉज जब आप मनी स्पेंड कर रहे हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वर्थ ऑफ मनी है कि नहीं,
2: वर्थ है कि नहीं है,
3: वर्थ है कि नहीं है।
2: वो उन उसके लिए एक इन्फो सेशन करने वाले हम लोग, नो ऑब्लिगेशन इन्फो सेशन है, जहाँ पे आपको हम खाना भी प्रोवाइड करेंगे वैसे। तो आप आइएगा जरूर, बताइएगा मतलब अगर आपको आना है तो। ड्राइव लिख कर भेजिए और IN आप
3: ये
2: बढ़ा दिया काम, मैं सिर्फ IN बोलने वाला था।
3: IN
2: क्या हो गया आपको यार?
3: क्या था रुज़बे? ओके सो या लिखे भेजिए गाइस, 5599 इज द नंबर, ड्राइव कीवर्ड के साथ लिखे भेजिए, सो दैट वी नो कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इस इवनिंग के लिए, एंड देन वी कैन लेट्स जस्ट गो फ्रॉम देयर
2: एंड देन वी कैन प्लान आउट द इवनिंग। ओके सो लेट अस नो।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
1: तुम जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं,
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
5: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
6: I know my sales team really well, but not how to give them the tools to manage every lead.
7: When you're a Spark Business customer, you get a hub full of local tech experts to advise you on the best solutions. Spark, the best bench in business.
8: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
9: Join our tribe!
8: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
9: join our tribe.
5: Weeknights you're flat out. And it's leftovers again?
10: Don't settle for meh dinners. Spice things up with HelloFresh.
5: Zesty laksa, viral tacos or a juicy steak. Ready in minutes.
3: Mm.
5: Take back dinner time with HelloFresh.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल काफी कमाल, ब्यूटीफुल डे ना सुपर सिटी, लाइट विंड्स का साथ रहेगा लेकिन फाइन वेदर रहेगा। 5:34 को होगा आज सनसेट, 2 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग रेकमेंडेड, ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू गो एज लो एज 3 डिग्रीज टुनाइट। कल का दिन भी बढ़िया।

0: tablets from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
3: 4:02 ड्राइव शो आप सुन रहे हैं. आज है 28 जुलाई एंड वी आर ऑन द कोल्डेस्ट नाइट ऑफ द ईयर. आज कोल्डेस्ट नाइट ऑफ द ईयर शायद होने वाला है.
4: काफी थ्री डिग्रीज आज का टेम्परेचर यहाँ पे ऑकलैंड में 3 डिग्रीज रहने वाला है. बट ऑफकोर्स साउथ आइलैंड में इट विल ड्रॉप.
3: साउथ आइलैंड में और भी ज्यादा ड्रॉप हो रहा है एंड मंडे ट्यूजडे को भी काफी कोल्ड टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए हैं काफी जगहों पे. एंड जो पावर का डिमांड है वो भी अक्रॉस द कंट्री काफी बढ़ गया है.
4: या ये भी अभी रिसेंटली न्यूज आई थी ना कि पावर बहुत कम कंज्यूम हो रही है. लेकिन देखो ना
3: पावर कम कंज्यूम हो रही है ऐसा रिपोर्ट्स हैं
4: कि वार्मर टेम्परेचर रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस विंटर.
3: दैट्स राइट. या
4: सो लेट्स सी. लेकिन अभी देखते हैं कि लगता है कि कंज्यूम ज्यादा होने वाली है.
3: अभी तो मैं भी खुद बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैं तो हूँ कंजूस. फिर भी मैंने पिछले 2 दिनों में हीटर बहुत ऑन रखा है.
4: हाँ ठंड थी.
3: ठंड बहुत है. आज भी वैसे ही महसूस होने वाला है. आज भी ठंड काफी रहने वाली है बट कल जाके 4 डिग्री फिर से बढ़ जाएगा टेम्परेचर.
4: यस
3: सो इट्स नॉट गोना बी दैट बैड टुमारो.
4: वेल अनदर न्यूज है मेरे पास रुज़बे. यहाँ पे वो जो फेमस रेस्टोरेंट चेन है बर्गर
3: वो गया ना लिक्विडेशन में.
4: हाँ, लिक्विडेशन में चला गया. सो कंपनी ने अनाउंस किया था दे आर ओइंग अभी $1.8 million जिसमें डेट टू सप्लायर्स रेंट एंड GST ये सब है. लेकिन अभी उन्होंने लाइक ऑफिशियली अनाउंस कर दिया दे गोन इनटू द लिक्विडेशन. सो वाओ इट्स क्वाइट अ न्यूज फॉर मेनी पीपल.
3: या अच्छा चेन था ये. मतलब काफी थे जगह पे. पॉन्सन बी में भी होता था ये. मेरे को लग रहा है
4: ट्राइंग टू फाइंड अ बायर एक्चुअली में for the business but they failed to do so.
3: abhi kaun hi khareedega bhai. burger khareedne ka paisa nahi hai yahan pe. burger chain khareedne ki baat ho rahi
4: hai. burger kaun khareedega.
3: But anyway aur bhi baatein karenge aapke sath.
4: there are just over 3000 liquidations recorded in the last year. 14% on a year earlier.
3: 3000
4: up by 14%. 3000 liquidations recorded hui hai since last year.
3: That's crazy. ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे भी नहीं बोल सकते कि अगर आपका भी लिक्विडेशन में गया है तो यहाँ
4: कॉल करके बताओ.
3: No, we can't do that. But yeah, it is very sad, यार. Like the way जब लिक्विडेट होता है कोई भी बिजनेस तो obviously सिर्फ वो बिजनेस का लॉस नहीं बट काफी लोगों का लॉस हो जाता है उसमें.
4: Community का.
3: And it's a sad thing. But hopefully things improve. ये कहने को भी डर लगता है. बट या होपफुली थिंग्स इम्प्रूव. या ऑल वी कैन डू इज बी पॉजिटिव एंड होप फॉर अ बेटर डे.
4: या वेल कुछ और भी टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे. कॉम्पिटिशन्स भी आपके लिए रहेंगे. और आज 5 बजे के बाद करेक्टर गेस्ट होने वाला है एंड टुडे इज रुज़बेस टर्न. वैसे तुम्हारी 2 टर्म्स आने वाली है.
3: नहीं ऐसे क्यों है?
4: क्योंकि लास्ट 2 मेरी थी.
3: नहीं तो क्या हुआ ये?
4: तो
3: ऐसा
4: क्या
3: नहीं,
4: ऐसे ही होता
3: वो
4: है.
3: गया गया अभी.
4: लास्ट 2 मैंने की है. तुम यहाँ पे नहीं थे तो वो मैंने की है.
3: ओके
4: तो नेक्स्ट 2 इज योर.
3: ऐसा नहीं होता सैंडी, ऑल्टरनेट ही चलता है क्योंकि लिसनर्स को चाहिए वो ऑल्टरनेट. ऐसा आगे चल के टाइम आएगा ना जब आप छुट्टी पर रहोगे तब मैं करूंगा. ऐसा थोड़ी गिन के रखेंगे ना यार. ऐसा गिनने में नहीं रखना है. एनीवे लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस आवर विद अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया. उसके डांस स्टेप्स बहुत वायरल गए आपके लिए इस बार.

0: कुमार सानू और श्रेया घोषाल की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, बहुत ही बढ़िया सा राउडी राठौड़ का गाना है ना ये शायद।
1: Yes.
0: चम्मक छल्लो छेल छली छबीली। एनीवे सैंडी, एक मैं अभी स्टफ पे आर्टिकल एक देख रहा था, बहुत क्रेजी भयानक डरावना ये आर्टिकल है। क्योंकि यहाँ पे एक लाइव वीडियो है जिसमें फीजी में ये वीडियो शॉट हुआ है, जहाँ पे एक डाइवर के ऊपर एक शार्क अटैक कर रहा है
1: और
0: ये लाइव कैप। ओह माय गॉड, इट्स सो स्कैरी, इट्स सो स्कैरी। बट मैंने ये सुना था पहले कि जो फीजी से होते हैं उनको शार्क कभी नहीं काटते।
1: ऐसा तुमने क्यों सुना था?
0: ये सुना था, ये एक नोन फैक्ट है ये।
1: मैं नहीं मानती।
0: या इफ यू आर फ्रॉम फीजी देन आपको शार्क विल नॉट।
1: क्या है सर, क्या रिलेशन रहता है फीजी से?
0: सीरियसली, अगर आप कॉल करके
1: बताओ, 800
0: आप वैलिडेट कीजिए ये जो मैं कह रहा हूँ ये सच है कि नहीं है। 800
1: हमारे पास फीजी लिसनर्स हैं, मतलब फीजी इंडियंस हैं, तो आप बताइए जो रुजबे ने यहाँ पे बोला है कि अगर आप फीजी से हैं तो शार्क आपको नहीं काटेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चले जाओ शार्क के सामने।
0: नहीं बट ये
1: काट के दिखा।
0: हाय, आपका स्वागत है।
2: कैसे हो भाई?
0: बहुत ही बढ़िया, कैसे हो आप?
2: ठीक ठीक है, मैं भी फीजी से हूँ। ऐसा ऐसा नहीं हो कि शार्क आपको चीनेगा ना।
1: वही ना, शार्क तो शार्क है।
2: अगर हाँ, शार्क तो शार्क है, अगर शार्क का चीन परचे है तब नहीं काटेगा, वैसे तो शार्क अपना काम करेगा।
0: नहीं लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो कुछ ब्लेसिंग है ऐसा कि अगर आप फीजी से होते हो तो शार्क आपको नहीं, मतलब आपके पास
1: बनाया
0: भी नहीं।
1: किसी ने
2: कोई बनाया का, वो शार्क तो अपना काम करेगा भाई।

0: अच्छा ओके
1: ठीक है,
0: कोई बनाया मेरे को. क्या नाम है आपका?
1: रोहित.
0: रोहित
2: रोहित, थैंक यू रोहित फॉर कॉलिंग.
0: यार देखो
2: देखो तुम बन गए और अभी तक बने हुए हो.
0: मैं अभी कन्विंस नहीं हुआ हूँ मैं कि ऐसा ऐसा नहीं पॉसिबल है. कोई और कॉल करके कोई और करके थोड़ा सपोर्ट करो यार कि क्या.
2: समवन हु इज आउट देयर फिशिंग.
0: हाय हाय.
3: हेलो
0: जी. हाय
3: कैसे हो रुस्बे और सैंडी?
2: बढ़िया बढ़िया. आप फिजी से हो?
3: हाँ जी मैं डेनिस हूँ.
2: डेनिस, अच्छा हाँ, तो डेनिस बताइए क्या सीन हाँ. है ये शाक नहीं काटती क्या?
3: एक्चुअली रुस्बे को मैं एक स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट करता हूँ.
2: हाँ.
3: ये बात है नेटिव फिजियंस को लेकर, क्योंकि बात ऐसा है कि वो लोग ना फिजी में शाक को एक भगवान की तरह मानते हैं, बोलते हैं दकुआंगा, नाम है दकुआंगा शाक.
2: दकुआंगा ओके.
3: हाँ तो वो लोग ना अपने पुराने जमाने में ना ट्रेडिशनल थे कि शाक गॉड जब आते हैं तो ढेर सारे फिश भी साथ में लेकर आते हैं, तो उनके लिए गुड लक होते थे. और जैसे हमारे फिजी इंडियंस को लेकर तो शाक तो ऐसा बोलते हैं, बोलेगा तो नहीं यार ये बंदा फिजी का, ऐसा तो नहीं कभी होगा. पर एक मिथ है ना, एक मिथ और एक लेजेंड है कि नेटिव फिजियंस जो है वो लोग के पास एक ऐसा पावर है, एक ऐसा शक्ति मिला है दकुआंगा शाक गॉड से कि उनको प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा है.
0: हाँ, तो ऐसा कुछ है मतलब अराउंड अबाउट.
2: ऐसा कोई हाँ, कहानी ऐसा. किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस की होगी ना कि समथिंग
0: कि जो नेटिव फिजी के है उनके ऊपर एक ब्लेसिंग है. क्या बोला आपने? टॉकवांगा. डॉक कौन सा?
2: डकुआंगा.
0: डकुआंगा शाक की ओर से.
3: हाँ
2: जी. बिकॉज जब भी शाक आती है तो ढेर सारी, इसका मतलब कि वहाँ पे फिश है बहुत सारी, इसीलिए शाक वहाँ पे आई है.
0: राइट.
3: एक ऐसा उसके पीछे भी ढेर सारे कहानियां है जो यार मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, पर बेसिकली ऐसा है कि नेटिव फिजियंस को एक ऐसा स्पेशल ब्लेसिंग, एक स्पेशल प्रोटेक्शन है कि उनको नहीं अटैक करेंगे.
0: राइट
2: ओके
0: कूल. डेनिस आप बेनाम्स वाले डेनिस हो क्या?
3: हाँ जी.
0: हाँ, लगा ही था आवाज से. अच्छा वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार आप. किसी ने एक लिंक भी भेजा है हमारे पास यहाँ पे, वो भी लिंक भी चेकआउट करेंगे थोड़ी देर में.
2: वो ही लिखा हुआ है रुस्बे कि लाइक शार्क्स जो है वो फिजियन मैथोलॉजी में एक्चुअली में उन्हें एज ए प्रोटेक्टर्स माना जाता है, एंड एंसेस्टर्स एंड डाइटीज भी कई जगह पे उन्हें ऐसा माना जाता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मिथ है दैट इन्वॉल्व्स द शार्क गोट, जैसे इन्होंने बोला दकुआ, जो कि गार्ड करती है रीव्स को एंड प्रोटेक्टर ऑफ फिशरमैन है. सो इसीलिए
0: देखा
2: ये कहानी है.
0: बनाया नहीं मेरे को
2: किसी ने, नहीं बनाया हाँ, तुम्हें किसी ने थोड़ा बताया लेकिन कहानी
0: मेरा हाफ नॉलेज था मेरा.
2: हाँ मे बी उन्होंने कहानी को अपने ऊपर ले लिया लेकिन जिन्होंने बताया होगा right. ऐसा हुआ होगा.
0: या एनीवे बट थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग. और भी बातें करेंगे आपके साथ, आप लगे रहिए, बने रहिए, सुनते रहिए हम.
4: Daily dose of wisdom, wit and wild conversations.
5: The Drive Show with Sandy and Rusbe.
6: आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए.
7: We've all been there. 6 PM, traffic sucks, and that chicken for dinner, still frozen.
8: Ditch dinner dread and come home to HelloFresh. Tender kiwi lamb, salmon, juicy beef, and local produce. Ready in the fridge when you are.
7: Take back dinner time with HelloFresh.
9: Hello. 2 PM call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
14: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
13: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
14: Available at selected branches. T's and C's apply.
15: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
16: क्यों, क्या हुआ?
15: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
14: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
17: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
18: हाँ. अच्छा
17: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
18: मिसेस सिंह.
19: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz. Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
20: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
21: Gundi khad dao, ya seedha andar aao.
22: Main laun apna A game.
20: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: कॉकटेल 2 का ये गाना आप सुन रहे थे, माशुका माशुका ये गाना है। वैसे आज एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ, लेकिन अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड।
1: ये पर्सनल एक्सपीरियंस है।
0: यस, पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड टॉपिक्स। आई ओनली डू पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड टॉपिक्स। ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में मैंने कहीं तो भी रील वील में देखा था।
1: ओके।
0: इट इज एक्चुअली द संक कॉस्ट फैलेसी।
1: संक
0: कॉस्ट ट्रैप या संक कॉस्ट फैलेसी।
1: ओके।
0: इसका मतलब ये है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक सीरीज देखना शुरू किया, ठीक है। अब आपको वो सीरीज आपने देखा, पहला एपिसोड देखा, दूसरा एपिसोड देखा, तीसरा एपिसोड देखा, और फिर अभी आपको लग रहा है कि यार ये स्टोरी तो आगे बढ़ रही नहीं, कुछ मतलब मजा नहीं आ रहा है। एंड नाउ
1: थ्रिलिंग नहीं है इतना देखना।
0: हाँ, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू करते हो वॉच करना,
1: बिकॉज आपको देखना है, खत्म करना है
0: कि हाँ कि खत्म करना है कि भाई अभी मैंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर लिया है टाइम, सो नाउ आई नीड टू फिनिश इट।
1: या
0: तो इसके अराउंड आज मेरे को आपसे टॉपिक पे बात करना है।
1: ओके।
0: हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट, लाइक लाइक आई यू द वन जो अगर समझो कोई चीज आप देख रहे हो, आपने कुछ एक अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर लिया उस चीज में देखने में, डू यू स्टिल कंटिन्यू वॉचिंग इट, और आर यू लाइक कि नहीं भाई मजा नहीं आ रहा है चेंज कर देता हूँ,
1: या फिर आप उसको कंटिन्यू करते हो जस्ट बिकॉज आपको वो खत्म करनी है सीरीज?
0: हाँ, या
1: तो ऐसे, और ऐसी कौन सी सीरीज थी,
0: ऐसी कौन सी थी, हम इनसे बात करते हैं। हाय, आपका स्वागत है।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: कैसे आप लोग?
0: एकदम मस्त। बताइए, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है?
2: देखो पास्ट में तो बहुत बार हुआ होगा जो अब मुझे याद नहीं है, पर रिसेंटली दो बार ऐसा हुआ। एक वो पेड्रो, और वो कौन सी थी,
0: पेड्रो पास्कल, वो नहीं अच्छी लगी आपको?
2: मैंने सुना था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, फिर मुझे ऐसा रहा था कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, इंटरेस्टिंग नहीं लगी मुझे।
0: हाँ, मेरे को भी लगा कि एंड में थोड़ा खींच लिया वो लोग ने।
1: ओके।
0: थोड़ा खींचा एंड में। हाँ, हाँ,
2: मैंने आपको बताया ही था, हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि इतना हाई था उसका, पर है नहीं वैसे।
0: हाँ, ऐसे है नहीं।
2: दूसरा अभी मुझे रिसेंटली हुआ, फ्राइडे को कि सैटरडे को, जब मैंने वो लगाया मुसाफिर कैफे।
0: ओ, वो भी ऐसी है क्या?
2: मैंने सिर्फ इसलिए लगाया कि विक्रांत मैसी का था, पर वो मुझे मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर लिसनर्स कि उनको कैसी लगी, पर मैंने हार्डली दो एपिसोड देखे, मैंने कहा और देखूंगी टाइम वेस्ट होएगा, ना मजा आ रहा है ना दुख बन रही है। हाँ, तो ऐसा हुआ।
0: तो आपने कंटिन्यू किया देखना कि आपने छोड़ दिया?
2: नहीं, मैंने दो ही एपिसोड देखे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि यू आर नॉट इन योर होल माइंड टू वॉच, है ना, एज मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी हो सकता है शायद, मैंने दोबारा भी ट्राई किया, नहीं बना मेरा वो सिंक देखने का। जैसे वो एक और आई है ना, वो कौन सा विद्यालय,
0: विद्यालय
2: प्राइम पे आई है, प्राइम पे आई है,
0: चिकित्सालय, वो जो कुछ तो भी ऐसा है ना।
2: नहीं, अभी आई है, के मेनन की, स्कूल के ऊपर है।
0: अच्छा, ओके, नहीं पता।
2: वो पहले जब मैंने देखना शुरू करी थी तो मैं भी आई वाज स्लीपी, तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, पर फिर मुसाफिर कैसे मुझे बोरिंग लगी थी, मैंने दोबारा वो विद्यालय वाली मूवी देखी, वेब सीरीज देखी, तो वो बाद में मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने फिर पूरी देखी।
0: अच्छा, वो
1: कई कई सीरीज को पिक होने में भी टाइम लगता है ना, एक दो एपिसोड्स के बाद।
0: और काफी बार मेरे को लग रहा है, काफी बार वो हम लोग का टू स्क्रीन का भी पंगा हो जाता है ना, कि अगर सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं साइड बाय साइड तो ध्यान ही नहीं लगता है वो मेन स्क्रीन पे देखने का, और फिर उसमें भी काफी बार रह जाता है।
2: नहीं, मैं नॉर्मली टू स्क्रीन नहीं चलाती।
0: अच्छा, आप एक ही स्क्रीन पे संतुष्ट है? कुछ तो भी था ना, वो भी ब्राउन ने क्या था,
1: नहीं पता मुझे,
0: करिश्मा कपूर की एक सीरीज आई है शायद से कोई, वो भी नहीं पसंद आई आपको?
2: नहीं, मजा नहीं आया,
0: मजा नहीं आया। थैंक यू परविंदर, थैंक यू,
1: थैंक यू परविंदर।
2: जैसे मैं मिर्जापुर लेवल की वो व्यूअर।
0: हाँ हाँ हाँ, तो उसकी मूवी आएगी ना अभी, वो देखना अभी।
2: आई है,
0: ठीक है,
2: मिर्जापुर और पताल लोक टाइप्स ना।
0: अच्छा, ठीक है,
1: सही है,
0: थैंक यू, थैंक यू। तो या अभी
1: मैंने ऐसे वो ड्रैग की थी मूवी, पति पत्नी और दो।
0: हाँ, पति पत्नी, और सेम हुआ मेरे साथ भी,
1: जस्ट बिकॉज मेरे को वो फिनिश करनी है, तो मैंने ऐसा फॉरवर्ड कर करके वो मूवी थोड़ी
0: फॉरवर्ड कर करके देखते हो, फिर
1: बोरिंग थी मूवी यार, बहुत ही बकवास थी।
0: हाँ मतलब ठीक है वो मूवी यार, इट्स नॉट मतलब
1: इतना भी कोई जबरदस्ती की कॉमेडी घुसाई हुई थी उसमें।
0: ऑनेस्टली मतलब मेरे घर पे हमेशा वो होता है ना कि मतलब मेरी वाइफ को इंग्लिश देखना पसंद आता है, मेरे को हिंदी देखना पसंद होता है।
1: तुमने ये पिक की?
0: और नहीं नहीं मैंने नहीं पिक की, प्रॉब्लम है वो बहुत दयावान बन रही थी, बोल रही थी नहीं आज हिंदी देखते हैं, और उसने लगाई पति, मैंने बोला क्यों ये क्यों, कुछ और देख लेंगे ना यार, ये क्यों, नहीं नहीं ये देखते हैं। तो मैं तो पहले से मेरा मूड ये था कि यार ये क्या ही है मूवी, एनीवे वो चली।
1: मुझे इसमें फॉर अ चेंज आयुष्मान खुराना की एक्टिंग नहीं अच्छी लगी,
0: मेरे को वो अच्छी लगी हां एक्चुअली में। दादी की शादी क्या दादी,
1: अच्छा वो नहीं मैंने देखी,
0: कपिल शर्मा वाली, ओके नॉट बैड, इट्स अ नाइस मूवी, उसमें न्यूजीलैंड का भी जिक्र हो रहा है,
1: ओके
0: तो इट इज नॉट बैड, न्यूजीलैंड का नाम लिया है भाई मूवी में
1: तो अच्छा लगता है क्या। हमें कितनी खुशी होती है, न्यूजीलैंड छोटा सा देश है, कहीं पे भी मेंशन हो जाते हैं तो हम ऐसा वो हो जाते हैं कि आए
0: वहां पे, जो हमारे बारे में बात हुई है ना, एक्ट्रेस है वो बोलती मैं न्यूजीलैंड जाऊंगी, न्यूजीलैंड मैं बोल रहा हूं यहां पे आके क्या करेगी, मेरी भी बोलती यहां पे आके क्या करेगी। लिसनर को बोल खुद ही डायरेक्ट कर वेब सीरीज, अरे यार ये तुम लोग ना
1: कोई बात ही गाइस, एनीवे सो
0: अरे हम जनता है यार, हमारा तो हक बनता है ना क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट थोड़ी है कि क्रिटिसाइज नहीं कर सकते।

0: से PMI स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल गाना लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे बता दे हम इम्पोर्टेंट चीजें
1: या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके यहाँ पे पहुंच रहे हैं इस पार्क अरेना में 25th अगस्त को। अगर आपको टिकट खरीदनी है जल्दी से खरीद लीजिएगा hum.rover.nz पे जाके, बिकॉज लेस देन अ मंथ रह चुका है इस इवेंट को। तो स्पार्क अरेना में 25th अगस्त की इवनिंग को 7 PM ऑनवर्ड ये जो शो है ये शुरू हो जाएगा। वन नाइट वन सुपरस्टार और एक एपिक शो यहाँ पे आपके लिए होने वाला है। बट अगर आप यहाँ पे टिकट जीतना चाहते हैं, अपना लक आजमाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, KA space एक सिंपल सा सवाल का जवाब आपको देना है।
0: हाँ, सिंपल सा सवाल सैंडी पूछेगी।
1: हाँ, सवाल ये है कि करण औजला यहाँ पे करण औजला यहाँ पर किस साल में आए थे, लास्ट प्रीवियसली किस साल में आए थे,
0: इससे पहले कब आए थे
1: शो करने के लिए। सो वॉज इट 2025, 2024, 2023 या 2022? चार ऑप्शन,
0: चार ऑप्शन दे रहे हो आप।
1: 22, 23, 24, 25 चारों सालों
0: या
1: में
0: फिर
1: से,
0: मेरे पास एक आइडिया है, एक और ऑप्शन में देता हूँ, या नन ऑफ द अबाव,
1: या नन ऑफ द अबाव। सो करण औजला यहाँ पे इन चारों सालों में से एक में तो आए थे रुजबे।
0: अच्छा।
1: क्या लगता है आपको? KA इस कीवर्ड के साथ लिख के भेज डालिए 5599 पर, एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है।
0: ये जो आंसर आ रहा है ये है क्या आंसर सही? मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूँ खुद भी, मुझे तो लग रहा है अभी तक सही आंसर नहीं आया है कि आया है।
1: आया है,
0: आ गया सही आंसर।
1: हाँ, सही आंसर आया।
0: अच्छा, ओके। तो 2022, 2023, 2024, 2025।
1: सो रीसेंट करण औजला किस साल में आए थे ये आपको बताना। इससे पहले अभी तो 2026 में आने वाले हैं, और इससे पहले रीसेंट करण औजला किस साल में आए थे आपको वो बताना है।
0: पहली बार जब आए थे वो नहीं बताना है,
1: वो नहीं आपको बताना है, रिसेंटली किस साल में आए थे,
0: लेटेस्ट कब आए थे।
1: या
0: बताइए फटाफट के एक कीवर्ड के साथ,
1: शो करने के लिए, टूर करने के लिए।
0: या

0: Well, एक सवाल है हमारे पास आपके लिए, और वो सवाल ये है कि ये जो गाना आपने अभी सुना, ये आपको क्या लगता है ये कौन से मूवी का गाना है? फटाफट अभी कॉल करके बताइए, आपको क्या लगता है ये कौन से मूवी का गाना है?
1: Well, इसके अराउंड बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो रही है, बहुत सारा ऐसा न्यूज सुनने को मिल रहा है, दिस लाइक quite a stories and post about it.
0: लेकिन आपको क्या लगता है ये गाना कौन से मूवी का, like what is
1: क्या फील देता है आपको ये?
0: First movie का नाम कौन से आपके ज़हन में आता है? By listening to the song, the feel of the song. And yes, we got the right message. यहाँ पे एक message आया, उन्होंने कहा है सही आ रहा.
1: 100%.
0: And that is exactly what Sandy also had the feeling. मेरे को भी same feeling था कि यार ये तो सैयारा का गाना लग रहा है यार, ये सैयारा का गाना है क्या? But actually, It is not Sayyara ka gana.
1: It is Awarapan 2.
0: It's Awarapan 2 ka gana.
1: So this is composed by Mithun, by the way. Lekin ye jo uncanny, ye jo hai resemblance of the both songs, it's nothing new. Iske surrounding bahut saari abhi controversy bhi ho rahi hai. So kafi logon ne ye jo similarities notice ki. And after that, Amal Malik ne post bhi kiya about Tanish Bakshi, jinhone Sayyara ki composition ki thi. उनको ऐसा कॉपी की काफ़ी गाने उन्होंने चुराए हैं, कॉपी किए हैं, एंड ओरिजिनल्स को कभी उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया है. एंड नाउ बिकॉज तनिष बख्शी को रॉयल्टीज उनके सैयारा गाने के लिए अभी तक नहीं मिली है फ्रॉम द मेकर्स, तो वहाँ से ये जो डिबेट है और भी हीटेड हो गई बिटवीन अमाल मलिक एंड तनिष बख्शी.
0: मेरे को एक समझ में नहीं आता अमाल मलिक का दूसरों के फटों में क्यों ये टांग डालता है,
1: खुद का गाना नहीं है फिर भी
0: कहां ना, खुद का कुछ लेना देना नहीं, काहे को फालतू में.
1: फिर भी फुल उसके ऊपर, अब तो उसने इतनी ऐसी ऐसी एक्विजिशंस रुस्बे उसके ऊपर लगा दी है ना, कि उसने एक तो गाना चुराया सैयारा, एंड दो वो गाना खैर पहले आ गया. अब क्या है कि उसके बाद जो गाना आएगा लोग कंपेयर करेंगे ओरिजिनल के साथ, बिकॉज लोगों के लिए जो सुना है पहले वो ओरिजिनल है,
0: वो ओरिजिनल है,
1: जो बाद में आया है वो लोगों के लिए सेकंड है. बट रियलिटी में क्या होता है ये किसी को नहीं पता है. बट देन अगेन ही ऑल्सो मैंशनड, उन्होंने एक्चुअली में मी टू का एलिगेशन भी लगाया माल मल ने तनिष बख्शी के ऊपर, बिकॉज ही सेड कि कुछ फीमेल सिंगर्स के साथ जो उन्होंने मिसट्रीट किया था, हाउ सम फीमेल सिंगर्स जो है, वन ऑफ द सिंगर उसने कोर्ट में जाने की कोशिश भी की थी, बट देन उसको साइलेंट कर दिया गया था. तो ये सब कुछ एक्चुअली में उसने एक्चुअली में स्टोरीज में सब लिखा तनिष बख्शी को टैग करके वहाँ पे.
0: ये यहाँ पे बहुत बढ़िया मैसेज आया है, अमाल मलिक राखी सावंत की कॉपी है.
1: Yeah, but anyway,
0: it's going to be an interesting thing. But yeah, Awarapan 2 आने वाली है बहुत जल्द, और हम बहुत excited हैं Awarapan 2 के लिए. आप भी अगर excited हैं, और
1: I'm quite excited about the movie, yeah.
0: And if you're keen, yeah, you know, let's plan a movie date together. Like, you know, हम सब साथ में movie देखने जाते हैं. मेरे को लग रहा है बहुत मजा आएगा.
1: कब होगी release? 14th
0: August को.
1: Oh wow.
0: So let's plan it.
1: Nice day.
0: Let's plan it together, yeah. 14th August ko I really
1: because
0: want to go.
1: Because dono countries ko pasand hai ye movie.
0: Haan, 100%, yeah. And abhi to Gen Z's ne India aur Pakistan ko saath bhi lekar aaye abhi.
1: Arey, wahan ke Gen Z jo hai, ye unko FOMO ho raha tha ki wo un Gen Z's ke paas kyun nahi hai is samay par. So there were quite reels about that as well. But anyway, getting back to the movie, 14th August ko ye movie release hone wali hai. Agar aapko bhi hamare saath ye movie dekhne jaani hai, to yahan pe likh ke bhejo 5599 par.
0: Yeah, let's plan it. Let's do something. Yeah. प्लान्स ही कर रहे हैं हम लोग, प्लान्स ही बना रहे. तुम लोग यार किसी में हमारा साथ ही नहीं दे रहे. चलो मूवी तो देखने चली सकते हैं हम लोग साथ में. लेट्स वॉच अ मूवी टुगेदर. Awarapan 2.
2: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी, ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस. स्लीप इजी फॉर लेस एट बेड्स आर अस मनुगो एंड पुकेकोई. स्लीपी हेड स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली $7.99 ऑन सेल नाउ. थ्रोबैक.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: You're listening to the Drive Show. Good evening. 5:03. क्या हालचाल है आपके?
5: A very very good evening to you. Yes. हालचाल बढ़िया है रुजबे. आज हम प्ले करने वाले हैं कैरेक्टर गेस.
4: कितनी एक्साइटेड हो आप कैरेक्टर गेस को लेकर यार.
5: आज
4: इतना कभी आप एक्साइटेड नहीं रहते हो.
5: आज रुजबे की टर्न है. सो रुजबे आज एक कैरेक्टर के बारे में सोचने वाला है. दिस कैरेक्टर कैन बी एनी बॉलीवुड स्टार, इट कैन बी एनी पॉलिटिशियन, इट कैन बी एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी हो सकता है. हम जिसको जानते हैं उसके बारे में रुजबे यहाँ पे कुछ हिंट देने वाला है. 5 हिंट वो देगा हमें कि आपको गेस करना ये कौन है, और 5 सवाल हमारे पास होंगे जिसका जवाब वो हाँ या ना में देगा. इस तरह से हम पहुंचेंगे अपने आंसर के ऊपर. यू नॉट रेडी येट?
4: आई एम नॉट रेडी येट. यार मेरे को भी अभी बैठ के ढूंढना पड़ेगा कि आज किस
5: गिव यू सम टाइम
4: किस सेलिब्रिटी के बारे में सोचूं मैं,
5: या किस, या किस कैरेक्टर के बारे में सोचूं. कोई भी हो सकता है, समवन यू नो गाइस, मतलब इस कंट्री से भी कोई हो सकता है, वो जिसको आप जानते हो, कोई पब्लिक फिगर वो भी हो सकते हैं, कोई anyone, 100% पब्लिक फिगर,
4: ऐसे ही मतलब जो नोन में है, मतलब हर कोई जानता है जिसको.
5: सो ऐसे किसी के बारे में हम सोचते हैं. मैं ये भी नहीं कह सकती कि अगर आप चाहते हो रुजबे को ऐसा कोई हिंट देना कि इसके बारे में सोचो, वो भी आप यहाँ पे मत लिख के भेजो क्योंकि मैं पढ़ लूंगी.
4: और प्रॉब्लम ये भी होगा कि जितने आप यहाँ पे भेजोगे उतना मेरा और नैरो डाउन हो जाएगा कि अरे अब इसके बारे में भी नहीं बोल सकता हूँ. सो इट्स गोना बी अ टफ वन. बट सोचता हूँ मैं और लेकर आता हूँ कुछ हिंट आपके लिए. आप भी सोचिएगा कि मैं किसके बारे में सोचने वाला हूँ.
5: थोड़ी देर में यहाँ पे आप कॉल कर पाएंगे 0800 00 हम पर.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. भूत के बारे में गाना आप सुन रहे थे, भूत बंगले का गाना. और अभी टाइम आ गया है कि हम आपके साथ यहाँ पे खेलेंगे. Character
1: guess. सोच लिया तुमने?
0: हाँ, मैंने सोच लिया character guess.
1: क्या बात है?
0: Yeah, सोच
1: लिया. Let's start the game. So उसमें hint देने वाला है एक करेक्टर के बारे में जिसने उसके बारे में सोच के रखा है, जिसके बारे में उसने सोच के रखा है. एंड देन वी गोना गेस इन 5 क्वेश्चंस. 0800 हम इज अ नंबर जहां पे आपको कॉल करना है. सो रुज़बे, पहला हिंट तुम्हारी ओर से. ओह माय गॉड,
0: दिस इज गोना बी अ वेरी टफ वन यार.
1: टेक आउट अ नोट पैड ताकि मैं हिंट भूल जाते ना, नोट कर लूं.
0: अच्छा, ये काफी टफ रहने वाला है यार, मेरे को लग रहा है. मेरे लिए, मेरे खुद के लिए.
1: ओके
0: ओके, तो पहला हिंट दूं क्या? तो पहला हिंट है, मेरे पास अपना खुद का 2700 एकर का प्राइवेट अम्यूजमेंट पार्क था जिसमें फेरिस व्हील, रोलर कोस्टर और एक जू भी था.
1: मेरे पास खुद का 2700
0: एकर का
1: कबूर है, क्या है ये?
0: अम्यूजमेंट पार्क था.
1: अम्यूजमेंट पार्क था ये. ये कौन है जिसके पास अम्यूजमेंट पार्क था और जिसमें क्या था?
0: जिसमें मतलब वही, मतलब अम्यूजमेंट पार्क में क्या क्या होता है? रोलर कोस्टर
1: वगैरह,
0: थोड़ा फेरिस व्हील जो होता है ना, वो जाइंट व्हील बोलते हैं हम लोग. और जू भी था उधर.
1: जू भी था, तो इसके पास 2700 एकड़ का अम्यूजमेंट पार्क था जिसमें राइड्स, जू वगैरह ये सब था. ये राइड्स एंड जू थे, मतलब जू जरूरी नहीं ना अम्यूजमेंट पार्क में हो.
0: हाँ, मतलब हाँ,
1: राइड्स एंड जू लिखती हूँ ताकि ये मेरे पास पॉइंट है. ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट हिंट गाइज. दिस पर्सन, तो कितने, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके जहन में आते हैं व्हेन यू थिंक अबाउट कि दिस पर्सन जो है इसके पास एक इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क था जिसमें राइड, जू ये सब थे. मुझे क्यों पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग, पता है किस चीज़ की आई अभी अभी? आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट लाइक जुमांजी टाइप ऑफ मूवी.
0: अच्छा, ओके.
1: जिसमें, बट दैट्स अ मूवी राइट, इट्स नॉट अ करेक्टर. सो मे बी जुरासिक पार्क भी हो सकता है ये, बट उसमें राइड्स तो नहीं है. जू ही जू है उसमें.
0: अच्छा,
1: ऐसी चीजें भी हो सकती है. बट ही इज टॉकिंग अबाउट अ करेक्टर. ये जो पर्सन है इसके पास इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क था जिसमें राइड्स एंड जू भी थी.
0: फोन लेना है?
1: हाँ हाँ, ऑफ कोर्स फोन लेना है यार.
0: हाय, स्वागत है आपका.
2: स्वागत है जी. आई कुड थिंक ऑफ टू नेम्स, माइकल जैक्सन और पाब्लो.
0: अच्छा,
1: माइकल जैक्सन एंड पाब्लो. सो माइकल जैक्सन के पास ये था,
2: उसके पास अम्यूजमेंट पार्क था, उसके पास जू भी था फॉर देयर ओन किड्स, और एक पाब्लो था जिसने अपनी बेटी के लिए बनाया था जू.

0: So no, okay. Is this person related to entertainment industry?
1: Entertainment industry बोल रहे हो?
0: Yeah.
1: ठीक है. Entertainment industry, yes.
0: Hi hi, music ही पूछ नहीं होता.
1: Okay.
0: Okay, me entertainment industry से है. इसका मतलब Pablo नहीं है. Pablo is out of the picture now.
1: Ronald ने भी एक भेजा है.
0: Ronald ने भेजा है Roy Roger. Who's Roy Roger?
1: No idea.
0: मेरे को भी नहीं पता है Roy Roger कौन है.
1: Anyway,
0: कॉल करके बताओ ना Roger, उसके बारे में थोड़ा और बताओ.
1: Roger नहीं, Ronald है वो.
0: Ronald
1: ने बोला.
0: Sorry Ronald. अब please कॉल करके यहाँ पे बताओ 0800 हम पर यहाँ पे कॉल एंड थोड़ा और उसके बारे में बताओ. लेकिन अभी रुस्बे ने बोला नो आइडिया, तो इसका मतलब ये नहीं है. उसने बोला मुझे भी नहीं पता उसने बोला.
1: Maybe that is, yeah. Maybe that is a trick. That is a trick.
0: No, no,
1: question.
0: No, Rusbe, you already said it.
1: Hi.
0: No idea.
1: Hi.
2: Hello.
1: जी.
0: जी, इसकी बातों को ध्यान से पकड़ना. क्या नाम है आपका?
2: My name is Nilesh. How are you?
0: बढ़िया बढ़िया.
1: बोलिए Nilesh.
2: एक question से लिया मुझे पूछ सकते हैं, is this person still alive or dead?
0: Good question. आपको कौन लग रहा है?
2: If he's no more than it has to be Michael Jackson.
0: Michael Jackson. अच्छा, Walt Disney भी तो हो सकता है.
2: But Michael Jackson के पास exact 2.7 acres का park था.
0: क्या बात कर रहे हो? ओके, इवन वॉल्ट डिज्नी के पास कितना, आपको नहीं पता है उसके पास कितना था? क्योंकि सी डिज्नी वर्ल्ड है ना, डिज्नी वर्ल्ड है उसके पास, लेकिन जू नहीं है ना वॉल्ट डिज्नी के पास.
2: जू नहीं है. हाँ.
0: जू नहीं है उसके पास. या ओके, चलो माइकल जैक्सन के रिलेटेड सवाल पूछते. अच्छा, माइकल मूवी इसी साल में आई है ना अभी.
2: हाँ जी. हाँ.
0: तो यही सवाल पूछते हैं. ओके रुस्बे,
1: पूछो ना.
0: Our next question is, जिस पर्सन के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या इसके ऊपर, इसके नाम के ऊपर मूवी इसी साल में आई है?
1: इसी साल में
0: 2026 में.
1: जी.
0: माइकल जैक्सन नहीं है.
1: मैं बोला ना, मैंने हक दिया यार, मैंने पहले हिंट में हक दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है.
0: Is this person Michael Jackson?
1: Yeah, yeah, yeah. कितना फ्लॉप हुआ यार ये. नेक्स्ट टाइम भी मेरे को ही करना पड़ेगा, अभी मेरे को लग रहा है.
0: Oh God. नेक्स्ट टाइम के मेरे को लगता है एक और टर्न लेनी पड़ेगी तुम्हें.
1: क्यों ये क्यों बोला आपने कि एग्जैक्ट 2.7 यार, मैंने ही गलत.
0: क्यों नहीं
2: वही पे आपका पकड़ा गया ना रिजल्ट, 2.7 एकड़ आपने एग्जैक्ट बोला ना. वो नहीं बोलना था,
1: मैं गलती कर दी.
0: एग्जैक्टली. तुमने इतना बड़ा हिंट तुमने पहले क्यों दे दिया? मतलब तुम्हें ये थोड़ा घुमाना था ना.
1: वही मेरे को खुद को रियलाइज नहीं हुआ. लेकिन
0: मतलब माइकल जैक्सन की कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज है, कितनी न्यूज है. पिक एनीथिंग एल्स रुस्बे.
1: आई नो आई लॉस्ट टच गाइज, माय बैड. ओके, थैंक यू निलेश, थैंक्स सो मच.
2: थैंक यू.
1: Yeah, I made a boo-boo.
0: Jyotika ne bola Michael Jackson. Satish ka message aaya.
1: Michael Jackson. Aur bhi bahut easy ho gaya yaar ye, maine bahut easy. Main actually aur bhi hint the.
0: Do you want to play another one thodi der mein?
1: Acha, main ek aur karu kya?
0: Ye to bahut hi jaldi khatam ho gaya yaar.
1: Bahut jaldi khatam ho gaya. Chalo, aaj mere ko lagta hai
0: let's give you another chance.
1: Okay, giving you one more chance to redeem myself.
0: Yeah.
1: Okay, I'll be back.
3: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe.
5: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
3: Accurate traffic.
6: Century Batteries, New Zealand's trusted battery. Clear overnight for Auckland, a low of 4 on the northern. It's heavy northbound from Spaghetti Junction to Northcote Road. Heavy from the city to Te Atatū on the northwestern. The southern, pretty slow, southbound from Newmarket to Sylvia Park and heading north from Sylvia Park to just past Green Lane. And the southwestern's busy from Massey Road to Onehunga and the other direction from Puhunui to the southern.
7: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
8: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here. Now I'm here. Back here now. Here I am. Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
9: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
10: Dash! किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीज

0: से अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
4: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
5: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
6: Power Drive at 5.
7: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
8: Kundi khadao. Ya seedha andar aao.
9: Main laun apna A game.
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. वैसे आज का character guess बहुत जल्दी से guess हो गया. And अब मैं और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ character guess में. मेरा confidence zero हो गया है.
1: It's
0: so
1: okay.
0: I'm going to take a break for a week and then next week I will bring back another character guess.
1: Another character guess. वैसे news आई है कि Auckland Council ना consider कर रहे हैं रुजवे कि they gonna remove the local food grading and food safety rules.
0: Oh no.
1: Because national regulations already है ना. तो वो क्या हो रहा है कि duplicate ही हो रही है. सो ऑकलैंड के जो रेगुलेशंस रहेंगी वो
0: ऑकलैंड का निकाल रहे
1: सिर्फ नेशनल का रहेगा.
0: सही है ना, वो तो बेटर है.
1: या उन्होंने बोला कि अगर ये अप्रूव होता है तो रेस्टोरेंट कैफेज टेक अवेज अदर फूड बिजनेसेस वुड नो लॉन्गर नीड टू कम्प्लाई विद सेपरेट ऑकलैंड काउंसिल बाय लॉ. सो अभी उनको ये दो करने पड़ते हैं. सो उन्होंने बोला कि दिस कुड रिड्यूस कॉस्ट एंड एडमिन बर्डन फॉर बिजनेसेस. सो वाइल ओपोनेंट्स वरी कि इससे जो लोकल ओवरसाइट है वो रिड्यूस हो सकता है जिससे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है ये लेस विजिबल होंगे टू कस्टमर्स. काफ़ी लोगों का ये भी कहना है देयर कैन बी अ चांसेस ऑफ अ ओवरसाइट. सो वुड यू फील कंफर्टेबल ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट जहाँ पे लोकल फूड इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे,
0: सिर्फ नेशनल है वहाँ पे.
1: What is your take on this? Like, is it, do you think, or as a business
0: actually,
1: player,
0: actually, जो hospitality में है ना, वो इसके बारे में थोड़ा और बोल पाएंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा idea ही नहीं है चीज़ के बारे में कि क्या implications है और क्या फर्क पड़ रहा है. But अगर आप hospitality में हो और अगर आपको पता है इसके बारे में और details कि कैसे आपको impact कर रहा है ये चीज़, तो आप यहाँ पे कॉल करके जरूर शेयर कर सकते हो हमारे साथ. 800-004-866 इज द नंबर.
1: एंड ऑल्सो एज अ कस्टमर जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप कितनी सेफ्टी सर्टिफिकेट्स सेफ्टी रेगुलेशंस के सर्टिफिकेट्स देखते हो.
0: अरे अभी रिसेंटली मतलब रिसेंटली नहीं अभी टाइम हो गया, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर कैफे था एक एरिया में, मैं मेंशन नहीं करने वाला, लेकिन बहुत पॉपुलर था और वो सडनली बंद हो गया क्योंकि उसका जो फूड रेटिंग था वो सर्टिफिकेट वो ई आ गया था उनको तो वो बंद करना पड़ा. एंड इट वाज अ शॉकर यार, क्योंकि वहां पे लंबी लंबी लाइनें रहती थी उसके वो कैफे पे वीकेंड पे. एटलीस्ट
1: तुम क्या हर जगह जाके चेक करते हो?
0: नहीं,
1: नजर पड़ गई तो पड़ गई, सामने होते वैसे हमेशा सर्टिफिकेट लगे.
0: हाँ, फूड ग्रेड है ना वो जो है.
1: मेरे को लगता है कि हम तभी चेक करते हैं व्हेन वी हैव सम इशू, उसके बाद शायद से हम चेक करते हैं कि अच्छा क्या है इनका. तो मे बी उस केस में काफी लोग चेक करते होंगे. बट या कितनी बार आप चेक करते हो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं. एंड अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो स्पेशली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, तो व्हाट डज दिस मीन फॉर यू कि ऑकलैंड काउंसिल का ये जो वो रिमूव कर रहे हैं सिर्फ नेशनल गाइडलाइंस रहने वाली है.
0: हाँ या हाउ डज दैट अफेक्ट यू पॉजिटिवली नेगेटिवली और डजंट मैटर, प्लीज बताइए हमें. 800-004-866 इस नंबर पे कॉल करके. थोड़ी देर में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो मुझे लग रहा है काफ़ी पेरेंट्स विल बी इंटरेस्टेड ऑन, क्योंकि इसके अराउंड अभी न्यूज़ आ रही है फिर से. एंड दिस इज़ अबाउट सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16 ईयर ओल्ड्स. इसके बारे में बात करने वाले हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आपका इसके ऊपर क्या टेक है. तो नंबर आप याद रखिएगा 800-004-866. थोड़ी देर में इसके ऊपर बात करेंगे.

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum. Hum. Accurate traffic.
7: New limited edition sweet sriracha chicken parma.
8: Clear overnight for Auckland, a low of 4 degrees. On the northern, it's heavy heading north from Spaghetti Junction to Northcote Road. From the city to Silverdale, an hour. On the northwest into Massey, 48 minutes. It's heavy to Te Atatū. On the southern, an hour to Drury. At the moment, it's heavy southbound Newmarket to Sylvia Park and north from Sylvia Park to just before Green Lane. Southwest and busy Massey Road to Onehunga.
7: Lips will tingle. Enjoy the sweet sriracha chicken parma at Peter Pit, egged and bowled.
9: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
0: Good news, tradies. This Saturday, Micah 10 Mega Botany IA for a free sausage, supplier demos on site or giveaways. Range, convenience aur aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Micah 10 Mega Botany.
10: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
11: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
12: Reliance Ventilation System.
13: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
12: Moisture और ventilation का problem लगता है
13: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है
12: Oh, that's not good हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं
14: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111 Reliance Ventilation Systems solving ventilation problems for over 18
9: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है तो इसका जवाब है टाकानिनी ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू 7 साल की वारंटी के साथ एसयूवी हाइब्रिड्स फोर व्हील ड्राइव्स परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है विजिट टाकानिनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साल्ट रोड टाकानिनी ट्रेड-इन्स और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई Takanini Auto Group, 170 Great South Road, Takanini.
0: Are you ready to go home? The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
15: Power Drive at 5.
16: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
17: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे एक टॉपिक जिसके ऊपर काफी टाइम से काफी बातें हो रही है अब इसके ऊपर बात प्रोग्रेस हो रही है कुछ जगहों से लेकिन काफी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इन द पॉलिटिकल पार्टीज तो अभी नेशनल कह रही है कि सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ये इसके बारे में ये कैबिनेट से बात मतलब ये पिच करने वाले कैबिनेट को
18: बट उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए
17: और बाकी जो ऑपोजिशन लीडर्स है ये कह रहे हैं कि ये बहुत एक सिली मूव रहेगा ये करना मैं पेरेंट्स से जानना चाहता हूँ यार व्हाट इज पेरेंट्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स का टेक रहेगा इस चीज के ऊपर मोर इम्पोर्टेंटली?
18: सोशल मीडिया बैन क्लेरिफाई कर दे, इट्स नॉट फोन बैन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, इट्स सोशल मीडिया बैन ओनली. फॉर एग्जांपल टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, these kind of applications.
17: Australia mein already implemented hai. Australia mein under 16 ko not, they are not allowed to be on social media.
18: In fact, isme YouTube bhi aayega.
17: That's right. Yeah. Okay. So we have a parent here. Hi.
18: Fine line. Yeah.
3: Hi. कैसे हैं आप लोग?
17: बहुत ही बढ़िया. आप कैसे हो?
3: बस मैं ठीक हूँ सैंडी. Amazing show on Saturday.
18: Thank you so much. मैंने बड़ा अच्छा perform किया ना.
17: क्या गाया ना सैंडी ने?
3: नहीं मैंने तो सैंडी को enjoy किया. Even Rosie ने.
18: Thank you so much. Thank you so much.
3: And courtesy हम था तो फिर वो तो anyways सैंडी को ही thank करता है इसके लिए.
17: क्या बात है.
18: सही है.
17: सैंडी इज हम. हम इज सैंडी. हाँ सॉरी बताइए.
18: सॉरी नाउ लेट्स गेट बैक.
3: नहीं मैं तो अग्री करती हूँ कि बैन होना चाहिए. मैंने अभी तक दिया नहीं है रोशनी को, मेगा को, दोनों को.
17: तो रोशनी और मेगा का क्या टेक है इसके ऊपर? लेकिन उनको चाहिए, उनको चाहिए सोशल मीडिया कि उनको
3: भी? दे आर हैप्पी विद इट. आई एम हैप्पी.
17: यू डोंट वांट इंस्टाग्राम? यू थिंक इट्स वेरी फेक? Yep, that's right. Yeah.
18: Actually, ma'am. Yeah, it's a good one, yeah. Roshni, yeah. Proud
17: so much,
18: of you.
17: Thank you so much for sharing. Thank you, Sapna. Aapka bhi swagat hai. Hi.
5: Hi, how are you, boss?
17: Very good. How are you?
18: Aap kaise hai?
5: Bilkul theek.
17: Kya bolte ho fir? Social media ban hona chahiye bachcho ke liye ki nahi?
5: Bilkul kar do ban.
17: बिल्कुल.
5: मैं आपको बताऊं जितना आजकल के टीनेजर्स फोन पे लगे रहते हैं ना कॉन्स्टेंटली हो ही जाना चाहिए. मैं तो कहती हूँ मेरा बेटा अभी 12 साल का है और मुझे तो ये चलता है कि एक बारी वो उसको आदत लग गई तो क्या होगा. अभी वो YouTube पे जैसे देखता है, वो उसको फुटबॉल का शौक है तो वो फुटबॉल से रिलेटेड देखता है, 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड देखता है. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो YouTube देखे उन चीजों के लिए.
18: ओके.
5: लेकिन जहाँ TikTok की बात आ गई, इंस्टा की बात आ गई, मैं तो चाहूंगी कि बच्चों को अगर फोन दो तो उसमें डेट ऑफ बर्थ डलवाओ बच्चों का, वो लूट ही ना करने.
17: बट वो तो गलत भी लिख सकते हैं ना. अभी हमने बचपन में जब ऑर्कुट चालू किया था, हमारे टाइम पे तो ऑर्कुट था, तो हमने गलत डेट ऑफ बर्थ ही लिखी थी वहाँ पे.
5: नहीं डेट ऑफ बर्थ गलत तो लिखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कई पेरेंट्स को भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना. अब मेरी बेटी के पास फोन है क्योंकि वो बस से स्कूल जाता है, पैदल भी जाता है कभी, जैसे बस से गया फ्रेंड्स के साथ या पैदल स्कूल जाता है तो उसको फोन लेके देना पड़ता है. फोन लेके दिया हमने, लेकिन उसके अंदर कंट्रोल्ड है सारा कुछ. जैसे यूट्यूब का अंडर ओवर 14 या ऐसा कुछ भी वीडियो नहीं चलेगा, या वो कुछ डाउनलोड नहीं कर सकता जब तक मैं एज अ पेरेंट परमिशन ना दूं.
18: तो आपने मतलब ऐसा
5: करने के लिए वो तो
18: कंट्रोल फीचर रखे हैं.
5: हाँ जी हाँ जी, पेरेंटल लॉक लगाया हुआ है. कुछ ऐसी एप्स हैं जो वो एक्सेस ही नहीं कर सकता, उसपे भी लॉक है, ऐप लॉक है.
17: ओके.
5: तो वो तो वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बनती है ना. ऐसा थोड़ा ना है कि फोन दे दिया मेरा काम खत्म, करो जो करना
18: है. 100%.
17: तो फिर अगर पेरेंट्स की अगर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर ये कैबिनेट में लेके जाके बैन वैन क्यों करवाना है? वो तो फिर पेरेंट्स के ऊपर ही छोड़ देंगे ना कि भाई सब अपने अपने बच्चों को संभालो, ऐसा टाइप मतलब.
5: लेकिन आप देखो कि कितनी भी वीडियोस आजकल की जो आती हैं वो टीनेजर्स की ही है. उसमें कोई ऐसी एक काम की वीडियो है जो आपको, अगर आपने 10 रील्स को देखा उसमें से एक वीडियो काम की होगी, बाकी 9 है वही बेकार होगी.
18: ओके.
5: कोई सच नहीं, कोई पैन नहीं, कोई सीखना नहीं. पैन ही लगा दो इससे अच्छा कि कोई ना डाले ना देखे.
17: राइट.
5: काम ही खत्म. जिसको दिखाना है वो अपनी रिस्क पे अपने बच्चों को दिखाओ.
18: और आपको लगता है कि ये 16 ईयर पे ही होना चाहिए या इस एज ब्रैकेट को थोड़ा कम करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मे बी 14 ईयर या समथिंग लाइक दैट.
5: एनीथिंग ओवर 15 16 आई बिलीव इज ओके, बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है कि आई मीन एट लीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माय चाइल्ड कि आई एम एबल टू कंट्रोल व्हाट ही सीज. ऑन अ टीनेजर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ कंट्रोल. यू कैन नॉट पुट अ कंट्रोल. जितना अभी कंट्रोल आप ये चीज से कर सकते हो. I've seen it is around the age block of 14-15.
18: Yeah.
5: तो आप कर ही नहीं सकते कंट्रोल.
18: हाँ, मुझे लगता है 16 मेरे को लगता है कि इज लाइक यू आर टचिंग देयर, कि 16 पे थोड़ा बगावती हो जाते हैं ना, रेबल हो जाते
5: हैं. बिल्कुल रेबेलियस. हम कितने थे
17: या तो हमारे पास तो थी नहीं इतनी फैसिलिटीज,
18: फिर भी थे.
17: कहाँ पे है ना,
5: फिर भी थे. नहीं थी फिर भी थे.
18: वही ना,
5: ये बात तो है.
17: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. मुझे लगता है ना देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड द बिगर प्रॉब्लम इज कि ये जो सोशल मीडिया पे जब आप अकाउंट खोलते हो, देयर हैज टू बी सम प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग, मतलब केवाईसी होना चाहिए. हाँ, या तो कोई, हाँ
18: एक्चुअली पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का अगर आप स्कैन कर रहे हो तो इट शुड बी इनेबल यू टू मूव फॉरवर्ड,
17: क्योंकि अपना पूरा लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड सोशल मीडिया. क्योंकि अभी काफी वेबसाइट्स पे भी अगर आपको,
18: आई थिंक इवन पासपोर्ट को भी छोड़ के ना रुजबे, मेरे को लगता है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बिकॉज इफ यू आर एबल टू ड्राइव राइट नाउ यू आर एबल टू रन द सोशल मीडिया. If you are able to run a car, you are able to run a social media.
17: Right.
18: Something like that actually में होना चाहिए.
17: There has to be something around KYC, क्योंकि अगर एक बार KYC होने लग गया ना accounts पे, तो बहुत सारे
18: बैंक वाला ऐसे ही बात करता है.
17: नहीं, क्योंकि
18: KYC,
17: क्योंकि बहुत सारे problems solve हो जाएंगे ना. अभी देखो जैसे बहुत सारे anonymous वो troll accounts होते हैं, जो troll करते हैं, फालतू comments करते हैं, फालतू ये करते हैं, वो सारा बंद हो जाएगा ना.
18: सब बंद हो जाएगा, exactly.
17: तो आई थिंक दैट शुड बी मोर फोकस में, कि आप फेसबुक और ये जो भी सोशल मीडिया है,
18: ऑथेंटिसिटी विल बी देयर.
17: लेकिन आप इमेजिन करो अगर उनके पास सारा डेटा आ गया पूरी वर्ल्ड का, क्योंकि सोशल मीडिया में कौन है, फेसबुक है और टिकटॉक है. बाकी सब तो फेसबुक ही ओन कर रहा है ना, मेटा ही ओन कर रहा है मोस्टली. तो उनके पास हमारे सबके इमेजिन अगर आईडीज और वो सब चले गए, तो भाई वो लोग तो कंट्रोल में आ गए ना.
18: TikTok is banned in few countries as well.
17: That is right, yeah. So Meta ही है सबके
18: इसी रीजन से for the data.
17: इमेजिन करो मेटा के पास हमारा सबका डेटा आ गया, तो भाई अभी तो हम लोग हमारी वाट लग गई है. मैं जिस चीज के बारे में सोचता हूँ उसकी एड मेरे को दिखना शुरू हो जाता है, मन पड़ रहा है मेरा.
18: जब तुम एक रील देखते हो तुम उसको अगर 20 सेकंड से ज्यादा देख लेते हो तो तुम्हें सिमिलर रील्स दिखाई देंगी.
17: या नो वंडर मेरा फीड खराब हो गया अभी.

0: नादानिया का गाना आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे गरबा सीजन इज हियर और ये है फाइनल वीक, क्योंकि इसी सैटरडे को होने वाला है गरबा विद राज गढ़वी। राज गढ़वी लाइव आ रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए महात्मा गांधी सेंटर में ऑन दिस सैटरडे 1st of August, और बहुत ही कम टिकट्स बाकी है तो फटाफट आप इसके टिकट्स बुक कर लीजिए। eventtickets.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे। सो गो इन एंड बाय योर टिकट्स सून। महात्मा गांधी सेंटर पे वैसे भी काफी टिकट्स अभी सोल्ड हो चुके हैं।
1: या डोर सेल भी बाय द वे वहां पे रहने वाली है, बट इट विल बी बेटर कि आप अगर पहले से टिकट बुक कर ले। हम कोशिश करेंगे राज गढ़वी के साथ बात करने के लिए व्हेन ही विल बी इन द सुपर सिटी। फ्राइडे को कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आए और उनसे हम और भी बातें करें। वैसे मैं पढ़ रही थी रुजबे कि अगर तुम्हें ना अपनी लाइफ अभी बोरिंग लग रही है ना,
0: ऐसा मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो?
1: अरे तुम्हें नहीं, मैं ऐसा लिसनर्स को एड्रेस कर रही हूँ। मैं अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में ज्यादा हैपनिंग नहीं है, यू कैन एक्सप्लोर वन ऑफ दीज थिंग्स। विजिट अ पार्ट ऑफ योर ओन सिटी यू हैव नेवर बीन टू। यू आर अ टूरिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट होम। सो मे बी जाके बाद में वापस आओ घर पे। सेकेंड वन इन्होंने लिखा है, फाइंड अ रूफ टॉप और मे बी अगर हम ऑकलैंड में है तो कोई ऐसी हाइट, एंड वॉच द सनसेट, नो फोटोज जस्ट आईज। अनदर वन इज एक्सप्लोर अ लोकल मार्केट, यू ऑलवेज ड्राइव पास।
0: राइट,
1: सो आपने कभी ऐसा ड्राइव पास किया ना कि यार ये जगह पे एक दिन जाना है, ये जगह अच्छी लग रही
0: मैं
1: है।
0: एक और चीज बोलू, क्या कर सकते हो आप? जस्ट गेट इन टू द कार एंड ड्राइव अराउंड विदाउट मैप्स।
1: Oh yeah, that will be amazing. Just follow the signs.
0: Just follow the signs. मैंने ये फ्राइडे को किया था ये सैंडी। मैं गया था वेस्ट में पीछे की तरफ और I was amazed यार, वो पीछे का पूरा ऐसा connected है।
1: Actually मैं ऑकलैंड की ये खास बात है रुजबे, अगर तुम साइंस को फॉलो करते हो, एक्सेप्ट इफ यू आर इन ईस्ट।
0: क्यों ईस्ट में नहीं है?
1: ईस्ट में थोड़ा खो जाते हो, ईस्ट में इतने सारे साइंस नहीं है। तो बाकी सब जगह पे इतने सारे साइंस है कि गोल गोल घूम के ना तुम कहीं ना कहीं से अपने डेस्टिनेशन पे निकल जाओगे।
0: या कहीं तो निकल जाओगे,
1: जाओगे जहाँ से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ये ब्यूटी है वैसे।
0: When was the last time you tried this? When was the last time you traveled without Google Maps? This is the question. 5599 पे आप इसका आंसर भेजिए।
1: When was the last time without Google Maps आपने यहाँ पे ट्रैवल किया है?

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: छह बज चुके हैं. ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है. आज ट्रेंड मेकर्स में हम एक नहीं, दो नहीं,
4: तीन सेलिब्रेशंस करने वाले हैं.
3: जी, तीन सेलिब्रिटीज आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम तीनों को शाउट आउट देने वाले हैं आज. सैंडी, गुड इवनिंग यार, हाउ आर यू फीलिंग?
4: आई एम फीलिंग ग्रेट रुज़बे, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. एंड टू स्टार्ट ऑफ, हम सेलिब्रेट करने वाले हैं धनुष को.
3: धनुष का बर्थडे. धनुष, इनको अगर आप नहीं जानते, इन्होंने कुछ ऐसे कमाल मूवीज किए बॉलीवुड में. एक मूवी
4: साउथ इंडियन सिनेमा
3: ने तो बहुत बढ़िया किया है उन्होंने. बट रांझना उनकी एक मूवी ऐसी रही है जो बहुत ज़्यादा पसंद की है लोगों ने. एंड उसके बाद फिर सेम क्रिएटर्स ने वो कृति सनन के साथ कौन सी अभी लेटेस्ट मूवी बनाई थी, दो पत्ती है वो,
4: हाँ, लेकिन उसमें धनुष नहीं है.
3: नहीं, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ. अरे यार, कल ही हमने बात की थी इसके बारे में, धनुष के साथ कृति सनन की मूवी, बहुत ही बढ़िया मूवी.
4: तेरे इश्क में.
3: यस यस, तो ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज धनुष ने किए हैं. और उन्होंने सिर्फ मूवीज नहीं किए, वो गाना भी गाए उन्होंने.
4: यस, गाने भी गाए उन्होंने. एंड जिसके साथ हम शुरुआत भी करने वाले हैं, पर तुम्हें पता है इनका रियल नेम है वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा.
3: ओ यस, वेंकटेश प्रभु. हाँ.
4: सो ही अडॉप्टेड द स्टेज नेम धनुष because he was inspired by the code name Dhanush. इनका कमल हसन की मूवी थी एक.
3: और ये कमल हसन या रजनीकांत किसी के तो भी रिलेटेड है ना? नहीं, ये कमल हसन के
4: रिलेटेड
3: है,
4: ये
3: क्योंकि श्रुति हसन के पति है ना ये शायद.
4: मैं वही चेक कर रही हूं.
3: नहीं,
4: ये श्रुति हसन का पति नहीं है.
3: नहीं, ये नहीं है श्रुति हसन. नहीं, बट ये कुछ तो रिलेटेड है.
4: इट्स नॉट रिलेटेड टू कमल हसन.
3: कमल हसन नहीं, रजनीकांत फिर.
4: सो Yeah, I don't know.
3: अरे यार, किसी के साथ तो रिलेशन था यार सैंडी, यार ऐसे कैसे आप भूल जाते हो यार ये सारी चीजें.
4: He was married to ऐश्वर्या रजनीकांत, जिससे वो रजनीकांत उसके ससुर थे.
3: बट फिर बाद में अभी
4: उनका सेपरेशन हो गया इन 2022.
3: हाँ, राइट. सो बट एनीवे, धनुष एक्चुअली में एक्सीडेंटल एक्टर है. वो कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे. इनफैक्ट एज अ टीनेजर ही वाज पैशनेट अबाउट कल्नरी आर्ट्स and wanted to study hotel management to become a chef.
4: Oh wow.
3: लेकिन उनके फैमिली ने सिवियर फाइनेंशियल हार्डशिप्स फेस किए और उनके जो पिता है डायरेक्टर कस्तूरी राजा, उन्होंने प्रेशर किया कि भाई तू एक्टिंग कर ले. 16 साल की उम्र में ही एक्टिंग करने के लिए प्रेशर किया, ताकि
4: मतलब ये पेरेंट्स थे जो एक्टिंग के लिए उनको प्रेशर कर रहे थे. इमेजिन करो, उल्टा. बट ये जो अभी हम गाना सुनने वाले हैं रुज़बे, ये तो वायरल सेंसेशन हो गया था. 6 मिनट में इस गाने को लिखा गया था. पहली रिकॉर्डिंग इसकी हुई 35 मिनट्स में. पहला इंडियन म्यूजिक वीडियो ये गाने का बना टू क्रॉस 100 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब.
3: अरे, वी लव दिस सॉन्ग. इतना बढ़िया गाना था ये कि हमारा ड्राइव शो का प्रोमो एक बार इस गाने के
4: इसके ऊपर था. एंड इनफैक्ट यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, फ्लैश मॉब भी हुई थी इस गाने के ऊपर.
3: इस गाने के ऊपर, दैट्स राइट. तो एंजॉय कीजिए धनुष और अनिरुद्ध रविचंद्र की आवाज में ये सुपरहिट गाना.
5: यो बॉयज, I am singing song, soup song, flop song.

0: ट्रेंडमेकर्स में आज तीन एक्टर्स को हम शाउट आउट दे रहे हैं जिनका बर्थडे आज है। पहले तो है धनुष। धनुष के बारे में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई और उनके कुछ गाने भी आपको सुनाए। कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम हिज मूवी दैट आई थिंक यू नो पुट हिज मार्क ऑन बॉलीवुड,
1: या रंजना मूवी।
0: रंजना मूवी का ये गाना बहुत ही बढ़िया ये गाना है। बट आपको पता है इनके बारे में कि एक्टिंग तो ये करते ही है बहुत कमाल, लेकिन इन्होंने ये एक्चुअली में एक लिरिसिस्ट भी है और एक वर्सटाइल म्यूजिशियन भी है।
1: ओह वाओ।
0: इन्होंने काफ़ी गाने लिखे हैं और उन्होंने डजन्स ऑफ गाने गाए भी है जो बहुत बड़े हिट रहे हैं अक्रॉस तमिल एंड तेलुगु सिनेमा।
1: नाइस। एंड इवन हॉलीवुड में इन्होंने काम किया भी। नेटफ्लिक्स में मूवी है द ग्रे मैन। सो ग्रे मैन में आपने देखा होगा रियान गॉसलिंग के साथ इन्होंने, क्रिस एवंस है उसमें, उनके साथ धनुष ने काम किया है। उसमें असैसिन का रोल किया है धनुष ने।
0: ओह वाओ, नेगेटिव कैरेक्टर,
1: नेगेटिव कैरेक्टर, ग्रे मैन।
0: वेल, ये था धनुष के बारे में। ये एक बहुत ही बड़े लॉर्ड शिवा के डिवोटी भी है और यूजुअली इनके जो म्यूजिक चॉइसेस है उसमें ये काफी बार रिफ्लेक्ट भी होता है।
1: यू नो PETA पेटा, जो कि एनिमल्स के लिए उनके अवेयरनेस के लिए जाना जाता है हमेशा,
0: उनके
1: प्रोटेक्शन के लिए। धनुष वाज वोटेड पेटाज इंडियाज हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी।
0: ओह वाओ,
1: या सो ही इज अ वेजिटेरियन।
0: ओह नाइस। वेल, और भी बातें करेंगे हम। हमारे जो आज दूसरे दो सेलिब्रिटीज हैं उनका जिनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है उनके बारे में भी बातें करेंगे। बट आप अभी के लिए सुनिए धनुष की मूवी का ये बढ़िया सा गाना।

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
2: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4-NZPMI।
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz. TradeStaff,
7: TradeStaff. Industrial.

0: sleepyhead sleepy easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और ट्रेंड मेकर्स में हमारे जो सेकंड सेलिब्रिटी है जिनको आज हम शाउट आउट दे रहे हैं वो और जो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज
2: 90s की एक्ट्रेस है ये
1: जी इनका नाम है आयशा झुलका
2: या सो आयशा झुलका 90s में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी है एंड काफ़ी लोग जो है इनको उस समय पर पसंद करते थे लेकिन इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया है रुस्बे 1983 में कैसे कैसे लोग कैसे कैसे लोग
1: वाओ
2: इस मूवी में
1: एक्चुअली में ये आयशा वॉज बॉर्न इन टू अ मिलिट्री फैमिली उनके जो पिता थे वो इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और इनको कभी भी बॉलीवुड स्टारडम ऐसा चेज नहीं किया था इन्होंने लेकिन फिर वो जीती थी मिस दिल्ली का टाइटल उनके टीन्स में और उसके बाद उनको काफ़ी मॉडलिंग ऑफर्स भी आए एंड देन शी गॉट इनटू सिनेमा और उनका ब्रेक थ्रू हुआ कुर्बान मूवी के साथ 1991 में ये जो रिलीज हुई थी
2: और जो मूवी का हम गाना सुने
1: सलमान खान
2: अपोजिट सलमान खान और ये जो गाना हम सुनने वाले हैं वैसे इस गाने में ये फेस बन गई थी ऑफ टीनेज रोमांस एंड इनोसेंस एज वेल यू नो ये जो मूवी है जो जीता वही सिकंदर इसके क्लाइमेक्स में इनको फोरहेड की इंजरी हुई थी बट शी कंटिन्यूड द शूटिंग लेकिन इसने रेड कैप पहन ली थी वहां पे अपना फोरहेड छुपाने के लिए
1: सपोर्ट
2: करने के लिए एंड तो ताकि इसकी इंजरी भी दिखाई ना दे
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि जेंजीज इन द हाउस अगर आप सुन रहे हैं या जेन अल्फा जो जीता वही सिकंदर आपने जरूर देखनी चाहिए
2: वेरी नाइस मूवी सो दिस इज वन ऑफ द मस्ट वॉच मूवी ऑफ 90s
1: और ये ऐसा गाना है जिसने एक्चुअली में फराह खान को ब्रेक दिया था
2: ओह यस
1: तो एंजॉय कीजिए ऑन हम राइट नाउ सेलिब्रेटिंग आयशा झुलका दिस इज हर ट्रैक

0: आयशा झुलका के बारे में बातें कर रहे हैं हम और उनके गाने भी आपको सुना रहे हैं. काफी हिट गाने उन्होंने दिए हैं.
1: एंड शी इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्ट्रेस जो मेन स्ट्रीम मूवी से एक समय के लिए चले गई थी. देन शी रिटर्न विद सेलेक्टिव रोल्स लाइक सोचा ना था, उमराओ जान. तो उसने ब्रेक लिया था बॉलीवुड से.
0: जी इनको काफी बार द खिलाड़ी फैक्टर भी कहते थे ना, क्योंकि खिलाड़ी मूवीज में ये भी थी अक्षय कुमार के साथ साथ. ओरिजिनल खिलाड़ी मूवी में भी आयशा झुलका वाज देयर.
1: शी इज मैरिड टू अ बिजनेसमैन एंड हैज स्पोकन पब्लिकली अबाउट नॉट हैविंग चिल्ड्रन. लाइक उन्होंने उनके हस्बैंड समीर वाशी इन्होंने इस चीज़ के बारे में डिसाइड किया था. बट या कभी स्टार्डम के वो इतना वो नहीं रही थी, फैन नहीं रही थी कि मेरे को स्टार्डम चाहिए. एंड दैट वाज अ रीज़न कि उन्होंने अपनी लाइफ में ब्रेक भी ली.
0: एक और कॉमन चीज़ इनके और धनुष के बीच में एक कॉमन चीज़ ये है कि ये भी एनिमल वेलफेयर की एडवोकेट रही है.
1: ओह वाओ.
0: वो ये भी बहुत पैशनेट है अबाउट एनिमल राइट्स और उन्होंने उनकी लाइफ पोस्ट एक्टिंग डेडिकेट की है टूवर्ड्स रेस्क्यू एफर्ट्स, एनिमल शेल्टर्स एंड एडवोकेसी फॉर स्ट्रेज. तो इनकी ही मूवी का ये गाना आपके लिए.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Matatin Mega Botany Trade.
3: Clear overnight for Auckland light sour easters and a low of 4 degrees. On the northern from the city to Silverdale taking 41 minutes. The northwestern half an hour to Massey. It's slow from Newton Road to Rosebank. The southern to Manukau just 33 minutes. Drury 43, but it's heavy between Sylvia Park and Green Lane in both directions. Southwestern busy from Massey Road to Mangere Bridge and Puhinui to the southern.
2: Matatin Mega Botany Trade Event Saturday. Stock up on great deals and meet the suppliers.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
5: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
6: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
5: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
6: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
7: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahape station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhinui in just 32 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
8: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it, and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
9: Get 70% off selected stock at Spa World's clearance centre sales event this Thursday to Sunday.
10: There's thousands off display models, scratch and dent, and end of line spa pools, swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
9: This Thursday to Sunday from 9 a.m. at Spa World's clearance centre, 9 Sylvia Park Road.
11: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
12: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
13: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
14: 104.2 FM or city ke andar agar aap hai to 87.7 FM pe bhi aap hume sun sakte hai. And Roha app ke zariye to aap rahengi hamare saath connected from anywhere in the world. आज ट्रेंड मेकर्स में तीन सेलिब्रिटीज को हमने शाउट आउट दिया है एंड दिस फाइनल सेलिब्रिटी इज नन अदर देन
15: सो फर्स्ट वन इज धनुष सेकंड वाज आयशा झुलका एंड नाउ इज दुलकर सलमान
14: इनको आपने काफी साउथ इंडियन मूवीज में तो देखा ही है बट हिंदी मूवीज भी काफी इन्होंने की है
15: हिंदी मूवीज में डेब्यू इनका कारवां मूवी में हुआ था जिसमें इरफान खान थे इस मूवी में एंड देन ही आफ्टर द डेब्यू ही डिड अनदर मूवी ज़ोया फैक्टर मूवी भी इनकी रिसेंटली आई थी
14: राइट
15: बट दुलकर सलमान जो है वैसे ममूटी जो है मलयालम एक्टर हैं इनके बेटे हैं ये सो ही हैज़ डन क्वाइट अ वर्क इन मलयालम सिनेमा तमिल तेलुगु एंड देन हिंदी सिनेमा में इनकी एंट्री हुई
14: जी सो ये एक्चुअली में मूवीज़ के बाहर ये बहुत बड़े ऑटोमोबाइल के एंथुजियास्ट हैं इनके पास एक एक्सटेंसिव कलेक्शन है ऑफ रेयर विंटेज एंड स्पोर्ट्स कार्स और ये ऑफन उनके रीबिल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं खुद से हाँ खुद से ये सब करते हैं तो काफ़ी बड़े शौक हैं इनको और इन्होंने पैन इंडिया ये पायनियर रहे हैं वन ऑफ द रेयर एक्टर्स जिन्होंने खुद के लिए डब किया है इन ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस ही एक्ट्स इन तो जैसे फॉर एग्जांपल मलयालम तमिल तेलुगू और हिंदी
15: 2022 में इन्होंने सारे इन चारों लैंग्वेजेस में सेम ईयर में मूवी की है
14: और डब भी खुद ही करते हैं वो
15: डब भी खुद की है
14: बात है यार लाइक रियली क्वाइट
15: इट्स अ रियर अचीवमेंट
14: या एनीवे आई थिंक काफी अमेजिंग टैलेंट है और उनका उनके गाने हम आपको सुनाने वाले हैं आज
15: और इन्होंने वैसे केरला स्टेट अवार्ड भी जीता है फॉर एक्टिंग परफॉर्मेंस इनकी चार्ली मूवी में जिसकी वजह से इनको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट एक्टर वेल इसी नोट पे आपको हम टाटा बाय बाय कहते हैं आपसे जल्दी मुलाकात होगी रिमेंबर हमारे पॉडकास्ट भी सुनते रहिएगा बिकॉज पॉडकास्ट से अनफिल्टर जब पॉडकास्ट आप सुनते हैं तो डिफरेंट एपिसोड्स आपको वहाँ पे मिलते हैं जस्ट सर्च फॉर अस अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुस्बे स्पॉटिफाई रोवा पे जाके एंड लिसन टू द एपिसोड्स
14: जी वहाँ पे काफ़ी सारे अमेजिंग एपिसोड्स हैं जिनको आप वहाँ पे सुन सकते हैं और इसके साथ साथ आपको हम क्विकली याद दिला दें कि हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक ईस्टर में
15: Easter 2027
14: और उस टाइम पे अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है इस जर्नी पे जहाँ पे आपको भी मजे करने हैं और यू वांट टू बी अवे फ्रॉम द डल वेदर ड्यूरिंग द लॉन्ग वीकेंड्स जो यूजुअली हम एक्सपीरियंस करते हैं ईस्टर के टाइम पे तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा आप ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे एंड यू विल गेट अ फॉर्म उस पे आप अपना बस
15: एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट
14: भर दीजिए एंड वी विल गेट इन टच विद यू कॉस्ट ऑफ द पैकेज इज 7995 बट दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग 4 to 5 star होटल्स प्लस 3 bar का खाना प्लस बहुत सारे अंदर एक्टिविटीज़ है और अलग अलग चीज़ें हैं तो सब कुछ इंक्लूडेड है हमारे साथ ज़रूर दीजिएगा इसमें और लेट्स हैव फन टुगेदर
15: या सो इसी नोट पे अब आपको हम बाय बाय कहते हैं टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ अब आपसे कल मुलाकात होने वाली है
14: बाय

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हैप्पी आवर ऑन हम

0: हैप्पी आवर ऑन हम।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognized qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
3: SIT Online. Learn without limits.
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
8: Here you go.
9: Thank you.
10: I reckon we should do some advertising.
9: Great. I like doing advertising.
10: I love doing advertising.
9: What about?
10: Thomason Does Advertising.
9: And what should it say?
10: Thomason Does Advertising.
9: Nice. I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
10: Nah, keep it simple, I reckon.
11: Thomason Does Advertising. Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
12: टाटा नैनो ऑटो ग्रुप में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स और एसयूवीज ब्रांड न्यू सिर्फ 29,990 से। लीप मोटर, डोंगफेंग और बाइक के लेटेस्ट हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स। ट्रेड-इन्स वेलकम। फाइनेंस भी अवेलेबल है। विजिट टाटा नैनो सुपरसाइट। पेट्रोल और डीजल के क्रेजी प्राइसेस को बोलिए गुडबाय और नई या क्वालिटी यूज्ड ईवी या हाइब्रिड घर ले जाइए। और हाँ, ये ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रेड कर लेंगे बस आपके मदर इन लॉ के अलावा। टाटा नैनो ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साउथ रोड, टाटा नैनो। फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया apply.

हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि और ये है नाइट कैफे खास आपके लिए। ट्यूसडे का सफर है और ऐसे में 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, इसी तरह से सुनते रहें। और एक और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जबकि ऐसे ही तालियां और सीटियां बजा सकते हैं खुद के लिए, क्योंकि बाली एंड बैंकॉक गेटवे इज हियर। जी हाँ, बाली और बैंकॉक का जो गेटवे है ये आपके लिए बस मार्च 2027 में रहेगा, जहाँ पर सेंडी और रुजवे आपको लेकर जाएंगे एक दौरे पर। आप टूर कर सकते हैं बैंकॉक का भी, बाली का भी एक ही ट्रिप में। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेक्स्ट करें ड्राइव और भेजे 5599 पर अपना मैसेज। यहां से आपको पूरा का पूरा टूर इन्फॉर्मेशन प्राइसेस मिल जाएगा, ताकि आप अभी से ही प्लान कर सकते हैं एंड लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं एक ऐसे अमेजिंग ट्रिप इन मार्च 2027, जहां पर अमेजिंग कंपनी सेंडी और रुजबे साथ में रहेंगे।

0: Night Cafe on Hum. Branchy Group Tree Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Marine Prastut Kareche Raj Gadvi live in Auckland. તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર રાજ ઘડવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજ ઘડવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
1: Farmers birthday sale for Farmers Club members is now on, with up to 40% off women's and men's clothing, women's lingerie and men's underwear. At least 30% off kids' clothing and super deals on beauty. Farmers birthday celebration is now on. Conditions and exclusions apply.
2: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the chiropractic HD Radiate bed, now half price. Queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Medical and Poke Kohe. Celebrating 36 years of great sales.
3: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
4: Hum. Night Cafe on Hum.
6: हम पर मैं हूं अभी और 104.2 FM और साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत है. अगर जो अभी ही आपने ट्यून इन किया है गरबा नाइट विद राज गढ़वी, इसके बारे में आपको बताते आ रहे हैं. लाइव इन ओकलैंड इनका परफॉर्मेंस रहेगा सैटरडे 1st ऑफ अगस्त को, जबकि महात्मा गांधी सेंटर पर आप जाकर इंजॉय कर सकते हैं, गरबा खेल सकते हैं और साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि राज गढ़वी को लेकर आ रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांची ग्रुप. और यहाँ जाकर आपके पास में मौका रहेगा सैटरडे 1st अगस्त को, इनको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. टिकट्स के लिए eventstickets.co.nz जा सकते हैं और स्वप्निल को 022-439-4736 पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन.

हम पर नाइट कैफे का सफर जारी है और मैं हूं अभी आपके साथ में. अब की बार के लिए करण ओजला के जितने भी फैंस हैं, आपको एक मौका देते हैं उनके पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टिकट्स जीतने के लिए. और आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको ये जवाब देना होगा कि अगर जो आपको डबल पास चाहिए तब कि करण ओजला का जो डेब्यू एल्बम था इसका कौन नाम था, क्या नाम था इसका, यही आपको हमको लिखकर भेजना है, आपको बताना है. तो अपने जवाब जब आप लिख रहे हो सबसे पहले टेक्स्ट शुरू करें लेटर्स के ए के साथ में, के ए पहले लिखे फिर जवाब लिखे कि करण ओजला का जो डेब्यू एल्बम है इसका क्या नाम था, और फिर इसे सेंड कीजिए 5599 पर. जबकि इनका जो कॉन्सर्ट है स्पार्क अरीना में ट्यूसडे 25 अगस्त को रहेगा, तो ये सभी कुछ देखने का मौका आपके पास में रहेगा. और इन्फॉर्मेशन के लिए हम rova.nz या फिर livenation.co.nz भी आप जा सकते हैं. एंड यस, डू नॉट मिस द चांस टू सी करण ओजला लाइव परफॉर्मिंग एट स्पार्क अरीना ऑन द 25th ऑफ अगस्त.

0: You're listening to Avineet.
1: नाइट कैफे में मैं हूँ अभी आपके साथ में जस्ट आफ्टर 9 और ऐसे में 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. तो यहाँ से 3 मोर आवर्स टू गो आपका साथ देते रहेंगे. अगर जो आप काम कर रहे हैं और हम के साथ में अपना जो टाइम है इसे बिता रहे हैं तो वेलकम टू द शो और इसी तरह से आपका साथ देते रहेंगे. ये वादा रहा 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. और हाँ, मोर इम्पोर्टेंटली आपने अगर जो अभी तक हमें हम फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हम 104.2 FM का जो फेसबुक पेज है यहाँ पर जाके हमें फॉलो करिए ताकि जितने भी कॉम्पिटिशन से साथ में जो अपडेट्स है ये आपके हाथ में रहे, यानी कि ईजिली एक्सेसिबल रहे आपके लिए.

नाइट कैफे में अबकी बार शामिल करने जा रहे हैं कुणाल गांजावाला को। और ये गाना बजाने से पहले कुछ गाने के पीछे की स्टोरी आपको बता दूं। जबकि फिल्म मेडा से ये गाना है और जबकि अनु मलिक ने कुणाल गांजावाला को बुलाया ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए, उस समय दिवाली ही चल रही थी या दिवाली से एक दिन पहले का दिन था। और कुणाल गांजावाला ने शुरू शुरू में ये कह दिया क्यों ना इसे दिवाली के बाद करें, तो अनु मलिक ने जवाब दिया कि नहीं, गाना चाहिए अभी, और जबकि मैं तुम्हें ब्रेक दे रहा हूँ तो दिवाली पर ब्रेक मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो कुणाल गांजावाला थोड़ा हेजिटेट करते हुए गए, और जबकि वहाँ जाकर इन्होंने गाने के लिरिक्स सुने या पढ़े तो इनको ये मुश्किल हुई। और कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैंने ऊपर वाले से कहा मैंने ब्रेक मांगा था, लेकिन ऐसा ब्रेक नहीं, क्योंकि जो लिरिक्स थे ये इनके होश उड़ा चुके थे। और वहाँ पर काफ़ी हिम्मत करके फिर उन्होंने वन टेक में ये गाना गाया है। और जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे मुकेश भट्ट, तो उन्होंने आकर बाद में जब देखा कि कुणाल गांजावाला रिकॉर्ड कर रहे हैं एक नए अननोन सिंगर एट दैट पॉइंट, तो उन्होंने कहा कि किसी फेमस सिंगर को क्यों नहीं लिया। फिर अनु मलिक ने काफ़ी उनको समझाया कि नहीं, ही इज़ राइट फॉर द सॉन्ग, और इसी तरह से फिर उनको रिटेन किया गया। और जब गाना रिलीज़ हुई तो कहीं ना कहीं मार्केट में एकदम ट्रेंड करने लगा, फेमस सॉन्ग हो चुका था, लोग पसंद करने लगे थे, और कुणाल गांजावाला बिकेम द सिंगर दैट ही इज़ टुडे। तो ये सभी कुछ शेयर किया कुणाल गांजावाला ने, जबकि रिकॉर्ड करने समय इनको काफ़ी अटपटा लग रहा था, जबकि लिरिक्स ही कुछ ऐसे थे। तो चलो वो गाना आपको सुनवाता हूँ। आप

0: Cafe on Hum.
1: हम पर नाइट कैफे लेकर मैं हूं अभी आपके साथ में. न्यूजीलैंड पुलिस ने अभी जल्द ही एक रिक्वेस्ट किया है जनरल पब्लिक से कि जब आप एक नए आइटम को सोशल मीडिया से खरीद रहे हो तो थोड़ा सतर्क रहें और थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि एक नया ट्रेंड सामने आया है जहां पर स्टोलन आइटम्स को सेल किया जा रहा है ऑन सोशल मीडिया. तो पुलिस ने एक हिंट दिया है और एक टिप दिया है कि कैसे आप केयरफुल रह सकते हैं. सबसे पहले आप उस सोशल मीडिया प्रोफाइल को, जो सेला का प्रोफाइल है, उसे वेरीफाई कीजिए. क्या ये एक बिल्कुल नया प्रोफाइल है या फिर एक ऐसी प्रोफाइल है जो बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि उसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो जब ऐसे प्रोफाइल को आप कॉन्टेक्ट करते हो या फिर करना चाहते हो कॉन्टेक्ट, तो बिल्कुल केयरफुल रहे, क्योंकि मोस्ट केसेस में ऐसे प्रोफाइल्स बिल्कुल फेक होते हैं और जो आइटम्स होती है लिस्टेड, ये स्टोलन होने के ज़्यादा चांसेस है. तो ऐसा करके आप वेरीफाई कर सकते हैं.

यह नाइट कैफे ऑन हम, मैं हूं अभी आपके साथ में और 10 बजने वाले हैं और 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। सुनते रहिए हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
1: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Japan has issued a tsunami warning after a 7.1 magnitude earthquake struck the southern main island of Kyushu. The quake has knocked out power to thousands of homes and stopped rail services. There is no tsunami threat here. Biosecurity Minister Andrew Hoggard says new bird flu regulations will help farmers manage the disease, protect livelihoods, and secure domestic food supply. And France's President Macron has promised to commit every available resource to fight these raging wildfires he's described as the country's most severe crisis since the Second World War. In sport, the Commonwealth Games this evening and the Para Bowls, the mixed pairs has just missed out on the bronze medal, losing in a tiebreaker to Wales. Lewis Clairbert, the 400 metres individual medley, he won gold in this event 4 years ago. The final tomorrow morning. And tomorrow morning also includes the Silver Ferns playing Uganda and Erica Fairweather in the final of the 800 metres free. For the Warriors, Chance Nicole Klokstad comes in at fullback against the Titans for the injured Taina Tuopiki.
0: Sports News,
1: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Night Cafe.
11: Yo.
1: You're listening to Avineet.
12: हम पर मैं अभी लेकर आया हूँ नाइट कैफे खास आपके लिए, और 10 बज चुके हैं, ऐसे में हमारा और आपके साथ रहेगा टिल 12, और कुछ शायरी भी है इस आवा पर, इसके लिए भी आप साथ देते रहिएगा, और कुछ ऐसे नगमे भी है जो आपके दिल के तारों को छेड़ दे, और म्यूजिकल मेलोडियस नंबर्स लेकर आए हैं इस आवा पर भी। 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, बस सुनते रहिए।

हम पर यह है नाइट कैफे, और आपको बता दे जो दिल की आवाज है, हर रात तेरी जिक्र होती है, दिल में तेरी ही फिक्र होती है, चांद भी गवाह है इस बात की, मेरी हर ख्वाब तुम पे खत्म होती है।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Media Works complaints. How can I help?
2: My kids won't shut up.
1: I'm not sure that's our problem.
2: They keep reciting lines from one of your radio ads.
1: Aw, cute.
2: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
3: What do you want, son?
4: I want me some of that real southern chicken.
2: 28 times.
1: So where are you now?
2: Eating chicken.
5: Advertise with
6: Media Works.
5: New Zealand listens to us.
7: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One. Plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEERA. North Henvale Advisory Limited. Trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best. Hamari good brands nahi hai.
9: Night Cafe.
11: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और कम्युनिटी न्यूज में श्री राम मंदिर जो कि सिचुएटेड है 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में अखंड रामायण पाठ को लेकर आ रही है, आयोजित करने जा रही है सैटरडे 1 अगस्त को, साथ में संडे 2 अगस्त को आपके पास में मौका है। सुबह 7 पर रोड पूजा के साथ में आरंभ होगी और इसके साथ 8:45 AM पर रामायण पाठ शुरू होगी और ये जो अखंड पाठ है संडे सुबह 10 तक जारी रहेगी। उसके बाद में हवन और आरती रहेगी, महाप्रसाद सेव किया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। इन्फॉर्मेशन के लिए 09836464647 पर आप कॉल कर सकते हैं।

0: Coffee on Hum.
1: Yo, suta sa chora.
0: You're listening to Avineet.
2: हम पर देखते देखते हम फाइनल आवा में पहुंच गए हैं, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और इसी तरह से इस आवा पर भी मेलोडियस नंबर्स बिल्कुल लाइनअप किए गए हैं आपके लिए। इसका मजा लेते रहिए और हमारा साथ देते रहिए।

हम पर आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखते हैं, इसीलिए आपके चॉइसेस को ध्यान में रखकर रोवा पर आपके लिए हम म्यूजिक स्टेशंस को रखा गया है। यहाँ पर आपको 60s या 70s के भी गाने मिलेंगे जो हिट हिट नगमे हैं हम रिवाइंड के नीचे, साथ में 80s के गाने भी आप हम 80s जुक बॉक्स में जाकर सुन सकते हैं। फिजी भजन आप सुनना पसंद करते हैं तो 24/7 बिल्कुल फ्री फिजी भजन आपके लिए इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर है, जहाँ पर फिजी के आर्टिस्ट के आवाज़ों में आप भजनों को जाकर सुन सकते हैं। इसके अलावा पंजाबी पंपिंग हिट्स, ये सभी कुछ चढ़ती कला पर स्टोर किया गया है। रोवा पर आप जाइए एंड जस्ट विद क्लिक ऑफ अ बटन आप पंजाबी हिट्स सुन सकते हैं। इसके साथ में फिजी कीर्तन संग्रह, जो भक्ति रस कीर्तन है, फिजी के प्रमुख कलाकारों की आवाज़ में है, यहाँ पर स्टोर किया गया है, इसे भी आप सुन सकते हैं। राहत फतेह अली खान, इनकी अपनी अलग की फैन फॉलोइंग है, तो आपकी पसंद के लिए यहाँ पर इनके गाए हुए सूफी और कव्वालियों को रखा गया है। ये सभी कुछ आप जाकर रोवा पर हम म्यूजिक स्टेशंस के नीचे चेकआउट कर सकते हैं।

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Coffee on Hum.
1: बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा, जबकि 12 तक हमने वादा किया है आपके साथ में सफ़र करने के लिए। तो इसी तरह से 12 तक आपके साथ में रहेंगे, जमे रहेंगे और इन बचे हुए मिनटों में और भी गाने आपको सुनवाते रहेंगे। ये सभी कुछ हमारे साथ में है। रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं या फिर 104.2 FM पर आप हमें सुन रहे हैं। आपको बता दें जो हमारे मैजिक नंबर्स है 5599 साथ में 0800 004 866, जिससे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। रात 8 से आपने हमें कंपनी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तो जाने का वक्त हुआ है, लेकिन ये वादा किए जा रहे हैं कल एक बार फिर आपके साथ में हो जाएंगे, लेकर आएंगे एक बार फिर से रात 8 से नाइट कैफ़े, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन अभी के लिए आपसे रुख्सत ले रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। एंड वी शैल मीट अगेन टुमारो नाइट। टेक केयर, बाय।

rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

0: Night Flight on Hum.
1: Beat. Banjo.

Night Flight on

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Yeah. Now.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AsureOne, we work with you to make sure every detail is captured up front. Even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AsureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AsureOne, is licensed financial advice provider.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: Night Fly.

0: लाइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: नीड मोर हैंड्स ऑन डेक? EarnLearn कैन हेल्प। Taking on an apprentice can help grow your team, get more done, and build the skills your business actually needs. EarnLearn delivers apprenticeship training across electrical, gas fitting, plumbing, and drain laying, with flexible training options and nationwide support to keep your apprentice progressing. Get more hands on the tools with EarnLearn. Visit earnlearn.ac.nz or call 0800 Earn It today.
7: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Medical and Pokekohe, celebrating 36 years of great sleep.
8: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
3: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: The beat of Bollywood.
7: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
6: Night flight.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे.
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में.
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Subject criteria, fees, T's and C's apply.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's lending and credit criteria apply.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
4: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating. And now, FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
5: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
6: Join the Tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
6: join the Tribe!
7: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
8: Time check.
9: Good morning, it's Samantik Chibitri here.
8: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Alarm bells are ringing about child safety in online gaming platforms. Digital security company Norton surveyed parents and spokesperson Dean Williams says chat-enabled games are a red flag.
11: 49% had chatted to a stranger and 17% say their child has been encouraged to leave the game and continue conversation on a different platform.
10: Tauranga's MP is disappointed with the lack of rates relief for those affected by the ongoing closure of Adams Avenue. The street near Mount Maunganui is shut over landslides and Sam Offendale is worried for local businesses.
12: I'm concerned that you might see some of those businesses folding up. The council's made their decision around rates relief, but we don't want to see those businesses closing.
10: Emergency services are scrambling to find survivors after a mall collapsed in a massive earthquake in Japan. Several people are dead and more than a dozen are missing after the 6.8 shake. Chief Cabinet Minister Minoru Kihara is asking the public not to panic, translated on CNN.
13: Residents in areas that experienced the strongest shaking are urged to remain calm.
10: A New Zealand police officer working in Queensland has spoken from hospital after being shot during a violent siege. Jordan May was hit in the leg when responding to a domestic incident with his fellow officers, dragging him to safety. In sport, New Zealand won its first medal from outside the swimming pool at the Commonwealth Games in Glasgow. Cam McTaggart securing silver in the 88kg weightlifting on Sky Sport.
14: 15 years of really hard work. All those close to me really know the blood, sweat and tears that went into it.
10: Getting underway now are the Silver Ferns against Uganda, and swimming star Lewis Clairbert, who won New Zealand's only gold so far, has qualified fastest for the 400 metres individual medley final at 6:47 a.m.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: Super City Auckland में आज के मौसम के लिए कहा जा रहा है इट्स गोइंग टू बी अ फाइन डे विद लाइट विंड्स थ्रू आउट द डे हम एक्सपीरियंस करेंगे सनराइज अगले घंटे 7:22 AM पर होगा आज का सनसेट 5:34 PM पर रहेगा और मौसम तो एकदम साफ और सुहाना रहने वाला है हाई ऑफ 14 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर आज 7 डिग्रीज तक रहेगा
8: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
15: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: Breakfast Catch-Up. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Puri ki puri gang ke logo. Kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
9: Hello, Kira. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं पूजा, as promised, आ गई हूँ आप सभी का साथ देने के लिए. अभी से लेकर ठीक दिन में 10 बजे तक आज हमारा और आपका साथ बना रहेगा. ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा 104.2 FM पर एंड रोवर ऐप पर आप सुन सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM के बीच. बाय द वे, ब्रेकफास्ट कैचअप से हर सुबह की शुरुआत होती है एंड ब्रेकफास्ट कैचअप इज द आवाज जहां पर हम कैचअप करते हैं बहुत सी चीज़ों के साथ. वी कैचअप विद ईच अदर दैट हाउ आवर मॉर्निंग हैज स्टार्टेड या फिर कल का दिन जो है ये कैसा था. एंड ऑफकोर्स वी कैचअप विद ऑल द न्यूज़ अपडेट्स, क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में खबरों के मामले में, न्यूजीलैंड में वी डू दैट, व्हाट्स हैपनिंग इन Bollywood, because of course we love Bollywood and most of us will we love Bollywood, not everyone, but हाँ अच्छा लगता है ना जब अपने अपने favorite celebrities के बारे में भी कुछ ना कुछ updates जो है ये आपको मिलते रहे. फिर दुनिया में यार इतनी सारी चीजें होती हैं, कुछ shocking, कुछ entertaining, कुछ surprising, कुछ बहुत ही interesting, तो ये सब कुछ तो रहता ही है. शुरुआत तो हर घंटे जैसे कि आपको पता है सनी साइड अप स्टोरी के साथ, एक पॉजिटिव खबर जो आपकी सुबह को भी हैप्पी बना दे. आपके लिए बस थोड़ी देर में हम जरूर लेकर आएंगे, बस इसके लिए हमारे साथ रहेगा. उम्मीद है कि आज आप भी हैप्पी हैप्पी अपने वेंसडे मॉर्निंग को शुरू कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं आज की सुबह को अपनी लाइफ में.

0: सनी साइड अप।
1: आज की सनी साइड अप स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसके मतलब जिससे जुड़े ज्यादा डिटेल्स तो खैर अभी तक रिवील नहीं हुए हैं, बट दिस इज समथिंग दैट हैज बीन फ्लोटिंग अप ऑन द इंटरनेट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई केम अक्रॉस इट एंड आई थॉट लाइक कि यार इतना खूबसूरत है ये कहानी, दो इट्स अ बिट सैड एट द सेम टाइम, लेकिन खूबसूरत और पॉजिटिव तो ज़रूर है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना जिसके बारे में आपसे बातें जो है ये किया जाए। अपेरेंटली एक हैंड रिटन नोट जो है ये सामने आया विच हैज़ बिन शेयर ऑनलाइन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट नोट इज़ कि एक पत्नी है जिन्होंने ये नोट जो है ऑनलाइन शेयर किया और ये जो टचिंग स्टोरी है इट हैज़ बिन सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया क्लेमिंग कि ये जो पत्नी है इन्होंने ये ओल्ड हैंड रिटन नोट शेयर किया था जो उनके हस्बैंड की ओर से था बिफोर अल्जाइमर्स जैसी बीमारी की वजह से उनकी अबिलिटी टू रिमेम्बर एंड टू कम्युनिकेट ये उनसे छिन गई। और ये कहानी तब सामने आई जब आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंटरनेट एंड आई केम अक्रॉस दिस नोट, हैंड रिटन नोट, उसका एक फोटो। आई रेड द नोट और उस नोट पे लिखा हुआ था PS आई फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई विल नेवर फॉरगेट हाउ वंडरफुल यू आर, लव जोसेफ, ये लिखा हुआ था। एंड द हैंड राइटिंग सीम लाइक कि जो शख्स ये नोट लिख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे इसको लिखने के लिए। व्हेन आई रेड दिस नोट एंड आई फेल्ट लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल एंड देन आई ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या, विच इज़ टू व्हाट द बेस्ट आई कुड कम अक्रॉस वाज़ कि दिस इज व्हाट द स्टोरी इज, कि एक पत्नी ने अपने पति के द्वारा लिखी ये हैंड रिटन नोट की एक फोटो इंटरनेट पर डाली जहाँ पर शी स्पोक अबाउट द फैक्ट कि जब उनके हस्बैंड को अल्जाइमर्स नहीं था तो उन्होंने ये एक छोटा सा नोट, प्यारा सा नोट अपनी पत्नी के लिए लिखा था। You know, at times this is what happens. We forget to live in the moment. We forget to cherish the people in our lives in the moment. जब वो हमारी लाइफ में होते हैं, जब वो हमारे साथ होते हैं, और फिर जब उनकी याद आती है, जब उनको हम वैल्यू करना शुरू करते हैं, तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। इसीलिए उस पल का या सही पल का इंतजार कर कर ना बैठे, अपनी लाइफ में हर एक पल को सही पल बनाइए जो आपके लाइफ में है, ज़रूरी है, यू नो, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको आप वो प्यार दर्शाइए, वो प्यार दिखाइए, जैसे कि इस कहानी में इस हस्बैंड ने अपनी बीवी को बताया कि दुनिया की सारी चीज़ें मैं भूल जाऊं, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि तुम कितनी वंडरफुल हो।
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
5: Winger Motors mana raha

0: लीजिए चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम रेंज कम फ्यूल बिना फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किए विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन मानुको और पोकेकोई या winger.co.nz ऑफर 31 जुलाई तक टीज एंड सीज अप्लाई
1: फेस इट यू आर गुड इन ग्रुप्स सो व्हाई नॉट टर्न योर सुपर पावर इनटू गेटिंग अ ग्रुप ऑफ ब्लड बडीज टुगेदर फ्रेंड्स फैनों वर्कमेट्स बुक अ टाइम टू डोनेट एट nzblood.co.nz गिव ब्लड गिव प्लाज्मा सेव लाइव्स
2: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.

0: grants me.
1: Wow. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: Global Headlines.
4: आज ग्लोबल हेडलाइंस में सबसे पहले फ्रांस से खबर आ रही है, जहां पर दे आर बैटलिंग द वर्स्ट वाइल्ड फायर्स इन डेकेड्स, जिसे रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि इस मैसिव वाइल्ड फायर की वजह से फ्रांस और स्पेन में मोर देन 320,000 लोगों को अपने घरों को इवैक्यूएट करना पड़ा एक आग में, जो कि अब क्लोज टू फ्रेंच सिटी बोर्डेक्स मेरे ख्याल से यहां पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से वहां के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने ये भी कहा है कि ये इस कंट्री के इतिहास में सबसे सीरियस वाइल्ड फायर क्राइसिस माना जा रहा है since World War II. अन्य खबरों में तेल के दामों में यानी कि ऑयल प्राइसेस में गिरावट जो है ये उम्मीद की जा रही कि होगी, एंड देयर इज होप्स, क्योंकि ऑयल प्राइसेस हैव फॉलन शार्पली आफ्टर न्यू यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने अपना जो भी सिचुएशन उनके बीच चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है, उसे रोकने का या फिलहाल पोज करने के बारे में सोचा है फॉर अ सेकंड स्ट्रेट नाइट, और इसकी वजह से उम्मीदें बढ़ रही हैं कि द टॉक्स को रिड्यूस टेंशंस, और इसकी वजह से वाइडर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये शायद रुक जाए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों को सिचुएशन का सामना एज फार एज ऑयल प्राइसेस गोइंग अप इज कंसर्न ये ना करना पड़े. ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने रूल किया है दैट पॉलिटिशियन पॉलिन हैंसन जो है, इन्होंने रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया था अगेंस्ट सेनेटर महरीन फारूकी आफ्टर टेलिंग हर टू गो बैक टू पाकिस्तान. एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात सामने आई थी, जहां पर कोर्ट ने उनको डिसमिस किया है, हैंसन, पॉलिन हैंसन के अपील को डिसमिस किया है, एंड दे हैव अपहेल्ड द अर्लियर रूलिंग. इसके साथ साथ अन्य खबरों में ये बात भी सामने आ रही है कि फॉर्मर यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने कहा है कि इंडिया वॉज लेस विलिंग टू कोऑपरेट ऑन द रिटर्न ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स बिकॉज यूके ने डिले किया था इन द एक्सट्रेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव बिजनेसमैन नीरव मोदी. भारत की खबरों में तमिलनाडु में एक मेजर लैंड कॉम्पेंसेशन डिसीजन जो है ये फिलहाल सामने आया है. इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तमिलनाडु के गवर्नमेंट को टू आइदर रिटर्न नियरली 1000 एकर्स ऑफ लैंड टू इट्स ओनर्स, या फिर उन्हें कॉम्पेंसेशन पे करे एट करंट मार्केट रेट्स, जिसकी वजह से मेजर फाइनेंशियल चैलेंज फॉर द स्टेट ये खड़ा हो सकता है. फिजी की खबरों में कहा गया एक फॉर्मर टीचर है ताइलेवू से, जिन्हें सेंटेंस किया गया है टू 14 ईयर्स एंड 6 मंथ्स इन प्रिजन, जबकि ये बात पता चली है दैट ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मल्टीपल रेप एंड सेक्सुअल असोल्ट चार्जेस, जिसमें टीनेज बॉयज जो है ये शामिल थे. ही मस्ट सर्व एट लीस्ट 11 ईयर्स एंड 9 मंथ्स इससे पहले वो पैरोल के लिए एलिजिबल हो सके. खेलकूद के खबरों में साइकिलिस्टा तादेज पोगाकर हैज वॉन द 5th Tour de France title, और इसकी वजह से अब उनका रिकॉर्ड जो है ये इक्वल हो चुका है फॉर द मोस्ट विक्ट्रीज इन द फेमस रेस. और अन्य खबरों में फॉर्मूला 1 के ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने क्लेम किया है विक्ट्री एट द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, एडिंग अनदर विन टू हिज ग्रोइंग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स दिस सीजन.
3: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

बॉलीवुड के अपडेट्स, जहां पर क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड में, टॉकिंग अबाउट द सेम, आपके लिए डिटेल्स हम लेकर आते रहते हैं। आज लेट्स टॉक अबाउट अ मूवी जिसकी कई सारी फ्रेंचाइजेस जो है ये अभी तक आपने देखी है, एंड अनदर इंस्टॉलमेंट वाज इन वोक इन टॉक्स। बट क्या हुआ उसका, उससे बताने से पहले 2004 में एक ऐसी मूवी आई जिसमें लोगों के बीच में बाइक का क्रेज और जॉन अब्राहम के लिए लव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। धूम इज द मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज दैट्स द ईयर अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, रिमी सेन, ईशा देओल एंड जॉन अब्राहम फीचर्ड इन द फिल्म धूम, where John Abraham ने जो विलन है उसका किरदार प्ले किया था। Then came 2006, जहां पर all the cast remained the same apart from Bipasha Basu and Aishwarya Rai जो आए थे इसमें ऑन बोर्ड जुड़े कास्ट के साथ, माइनस ईशा देओल, एंड द विलन वॉज प्लेड बाई नन अदर देन ऋतिक रोशन, और ये भी काफी अच्छी चली, लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। Then Dhoom 3 जो है ये आई 2000

0: 13 में विद द बिट चेंजेस इन द कास्ट जिसमें अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा तो थे ही बट जॉइन बाय कैटरीना कैफ एंड जैकी श्रॉफ अलोंग विद आमिर खान जिन्होंने इसमें जो विलन है इसका किरदार प्ले किया. कुछ लोग थोड़े नाराज भी थे बिकॉज अपेरेंटली इस फिल्म की कहानी वाज सेट टू बी अ बिट इंस्पायर्ड आई वुड से और ये हॉलीवुड की एक फिल्म से थोड़ा इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने इस फिल्म की कहानी जो है ये हिंदी में अडेप्ट कर तैयार की थी. बट ऑन द अदर हैंड टॉकिंग अबाउट धूम 4 कहा जा रहा था कि आदित्य चोपड़ा जो कि YRF के हेड है ये तैयारी कर रहे थे धूम 4 की और ही वाज ऑल सेट टू प्रोड्यूस द मूवी एज वेल. और इसके लिए ओरिजिनली इस फिल्म में अयान मुखर्जी को रैपिन किया गया था एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म लेकिन आफ्टर वो टू YRF रिपोर्टेडली डिसाइडेड कि वो अयान के साथ एज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म काम नहीं करेंगे जिसके बाद चलकर द एक्टर हु वाज सपोज टू प्ले द विलन इन धूम 4 नन अदर देन रणबीर कपूर He stayed attached to the project. वो अपडेट्स का इंतजार कर रहे थे और कॉन्स्टेंटली कुछ बातचीत जो है उनके बीच हुई विद YRF जिसके बाद चलकर कहा गया है he opted out of the project. He apparently wasn't happy with the script of the film. रणबीर ने कहा है कि ऑफकोर्स धूम एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है इनफैक्ट बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजेस है लेकिन वो फिर भी प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोरी एंड ही फेल्ट कि स्क्रिप्ट वॉज नॉट गुड इनफ. सो लेट्स सी कि अब ये जबकि ऑप्ट आउट हो चुके हैं धूम से या धूम 4 से तो अब इनमें किसको रैपिन किया जाएगा एज द विलन एंड हु विल कीप दैट एक्साइटिंग यू नो क्यूरियोसिटी कि धूम में या धूम के अगले फ्रेंचाइज में विलन कौन बनने वाले हैं बिकॉज आई थिंक मोर देन द यू नो मेन लीड्स ऑफ द मूवी कि कौन यू नो हीरो रहेगा उससे ज्यादा इंटरेस्टेड लोग इस बात को लेकर रहते हैं कि विलन कौन प्ले करने वाला है धूम के फ्रेंचाइज में. बट लेट्स सी क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं जो आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे ऑन हम. फिलहाल कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए थोड़ी देर बाद. ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. डोंट माइंड लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
1: Accurate traffic. Would you trade in your house? Final day today. Very chilly start. Got a high of 16 degrees. Fine one on roads and motorways so far. Northern, a quick drive in. 18 minutes. Constellation Drive to town. 36 in from Silverdale. Building at Silverdale and Albany. Quite slow through Milford. Northwestern, 22 minutes in from Massey. Building at Te Aritu and close to the CBD. Southern, slow Papakura to Manurewa. Building overall, 25 minutes. Manukau to the city.
2: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
3: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
4: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
5: सुनो, bills बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
6: हाँ, mortgage बनना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
7: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz. TradeStaff,
8: industrial employment solution. TradeStaff.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो. बोली बस मेरा फोकस है.
10: हाँ. अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
10: मिसेस सिंह
11: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
12: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
13: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
14: आसरा ले ले तू मजा.
15: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपके नाम करने से पहले हम लेकर आए हैं आज का हमारा सवाल. साथ आप भी हमारा दे रहे हैं. थैंक यू सो मच आप सभी के गुड मॉर्निंग के मैसेजेस जो आपने हमारे या गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो आपने हमारे पास भेजे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए, आपके मैसेजेस के लिए. बॉबी मान जी थैंक यू सो वेरी मच. और ऑफकोर्स मिस्टर माटा माटा आपका भी मैसेज आया है. विनीता जी आपने भी हमारे पास मैसेज किया था. थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए, आपके भी साथ के लिए. गुड मॉर्निंग आप सभी को. और चलिए बारी है आज के सबसे पहले सवाल की जो आपके लिए हम लेकर आए हैं. तो इसका जवाब आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं BF स्पेस अपना नाम लिखकर अपने आंसर के साथ और 5599. आपको आज आइडेंटिफाई करनी है एक मूवी. अगर बेसिक प्लॉट में इस मूवी का आपको बताऊं तो बेसिकली इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओनर है जिनको एक अमीर लड़की के साथ प्यार हो जाता है आफ्टर दे मीट ईच अदर बिकॉज ऑफ अ कार एक्सीडेंट. बेसिकली जो होता है एक एक्सीडेंट होता है इसकी वजह से. एंड व्हाट हैपेंस इज दे फॉल इन लव, दे गेट मैरिड एंड लेटर ऑन द गाय स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ द फिल्म ओवर थिंकिंग एवरीथिंग. जिसके बाद चलकर फिल्म में कुछ बदलाव होते हैं, चेंजेस होता है, पर होता क्या है वो तो फिल्म देखेंगे अब तभी पता चलेगा. लेकिन दिस इज लाइक द बेसिक प्लॉट ऑफ द मूवी. आपको गेस करना है विच फिल्म एम आई टॉकिंग अबाउट. इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस साल ये फिल्म आई थी उस साल बहुत चली थी. फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे और ऑफकोर्स खबरों में ये फिल्म बनी भी थी बिकॉज लीड में पहले जो हीरोइन थी ये कोई और थी. कुछ इंसिडेंट्स हुए, सिचुएशंस हुए जिसके बाद चलकर द लीड एक्ट्रेस चेंज्ड. एंड कहा जा रहा है कि आफ्टर दिस होल सिचुएशन ये जो दोनों एक्ट्रेसेस थी उनके बीच काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी. बट आफ्टर दिस होल साइनिंग ऑफ दिस मूवी इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में भी थोड़ा डिफरेंस आ गया. बट कौन सी ये फिल्म है, लेट्स सी इफ यू कैन फिगर इट आउट. एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओनर है जिनकी मुलाकात एक बहुत ही अमीर लड़की के साथ होती है बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. और आफ्टर दैट दे फॉल इन लव, दे गेट मैरिड एंड देन द गाय स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज लाइफ overthinking and questioning everything. जिसके चलते फिल्म में कहानी में कुछ changes जो है ये आती है. If you think you got the answer, BF space answer your name 5599 पर हमारे पास भेजे और आपको हम सही जवाब बस थोड़ी देर बाद बताएंगे.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: BYD South Auckland now open.
3: Very cool again, but fine today. A high of 16. Southern motorway could be an incident around Takanini Manurewa area. We're quite heavy Papakura to Manurewa. Slow Manukau to Mount Wellington. 32 minutes in from Manukau, an hour from Drury. Northwestern 25 in from Massey. Slow at Te Aratu, the causeway and close to the city. Northern 22 from Constellation. Slow at Silverdale, Greville to Milford and Esmond.
2: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Manukau Supersite on Great South Road.
4: Mike here from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. For as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
5: Show us your crack.
6: Ah, Novus!
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
10: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: Throwback.
13: तो थोड़ी देर पहले आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था फॉर यू टू आइडेंटिफाई द मूवी ऑन द ब्रेकफास्ट विद विजय एंड पूजा, और हमने आपको छोटी सी कहानी जो है ये सुनाई थी इस फिल्म की, विच इज़ बेसिकली द प्लॉट ऑफ द मूवी, एंड आस्क कि आप आइडेंटिफाई करें इस फिल्म को. तो कई लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स भेजे. राकेश जी हैं, हीना हैं, गुरप्रीत है, अमित है, आप सब ने इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली राजा हिंदुस्तानी जो है ये कहा है, बट दैट इज़ नॉट द आंसर वी आर लुकिंग फॉर. सो कुछ सही जवाब ज़रूर आए. करण है, अनु है, साथ में दीपक है, आपके मैसेजेस आए हैं, आपने करेक्टली मूवी पहचानी है. एंड द मूवी दैट आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, जिसके लिए मैंने आपको जो कहा था कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द मूवी, एक ट्रांसपोर्ट ओनर है जिनकी मुलाकात एक एक्सीडेंट की वजह से एक बहुत ही अमीर लड़की के साथ होती है. दे फॉल इन लव, दे गेट मैरिड, एंड देन द गाय कुछ यू नो ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत से क्वेश्चन करने लगते हैं अपनी लाइफ के बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में. एंड दैट्स हाउ दी स्टोरी अनफोल्ड्स. फिर मैंने क्लू के तौर पर यह भी कहा था कि जिस साल ये फिल्म आई थी बहुत चली थी, फिल्म के गाने बहुत चले थे, जो लीड एक्ट्रेस इस फिल्म में है उनकी बजाय दे वॉज सम अदर एक्ट्रेस, बट ड्यू टू सम इशूज दैट हैड हैपेंड एंड उसके चलते इस एक्ट्रेस को उनके साथ रिप्लेस किया गया. एंड अपेरेंटली पर्सनली वो दोनों काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप शेयर करती थी, बट आफ्टर दिस मूवी साइनिंग दे बोथ हैव हैड अ बिट ऑफ खटास इन देयर रिलेशनशिप एज वेल, विच वॉज अपेरेंटली रिपोर्टेड एट दैट टाइम. सो द करेक्ट आंसर वुड बी चलते चलते. 2003 में ये फिल्म आई थी. फिल्म के गाने जो है ये जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव ने किए थे. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. चाहे आप सुनो ना ये गाना हो, तौबा तुम्हारे ये इशारे, एंड इनफैक्ट चलते चलते का जो टाइटल ट्रैक है वो भी बहुत खूबसूरत. तो बहुत से खूबसूरत गाने जो ये इस फिल्म में रहे हैं. और ऐसे में टॉकिंग अबाउट द एक्ट्रेस हु वाज अपेरेंटली सपोज टू डू द मूवी वाज ऐश्वर्या राय बच्चन. उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, पर कहा जा रहा है कि कुछ पर्सनली कुछ इशूज़ चल रहे थे एट दैट टाइम, जिसके चलते शाहरुख खान ने उनको इस फिल्म से रिकमेंड किया था कि वो इस फिल्म को ना करें, जिसके बाद चल के रानी मुखर्जी वॉज रेप्ड इन द पिक्चर, शी साइन द मूवी, शी डिड द मूवी, और उसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई, बट अपेरेंटली रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय के फ्रेंडशिप में एक दरार भी आई थी. नेवरदलेस दैट वाज द करेक्ट आंसर, और इस फिल्म का ये गाना चलिए इस बार आपके लिए इस थ्रोबैक में हम शामिल कर रहे हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: रिमेम्बर, आज का मौसम साफ और सुहाना बताया जा रहा है। हल्की हल्की हवाओं का साथ तो दिन भर बना रहेगा, लेकिन जब मौसम खूबसूरत हो तो मूड भी एकदम बन जाता है। आज ऐसे ही मौसम का आप मजा उठाइए। सनराइज इसी घंटे 7:22 AM पर रहेगा, आज का सनसेट 5:34 PM पर। हाई ऑफ 14 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है, बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर 7 डिग्रीज रहने वाला है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम The Fortune and Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Tubo jao, papio. Tubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो कैसा बीतेगा आज का दिन आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप्स. चलिए जल्दी जल्दी ये जान लेते हैं इन योर राशि वाइब्स. सबसे पहले मेष यानी एरीस, आपके लिए कहा जा रहा है कि आज का दिन आपके लिए कोई बड़ा काम करने का प्लान आप बनाएंगे. यूड बी वेरी हैप्पी टुडे. और साथ में आपके लिए कहा जा रहा है कि किस्मत भी साथ दे रही है, सफलता जरूर मिलेगी, बस आर्ग्यूमेंट से आज आपको बचे रहना है. विशनी टोरस, बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए ट्राई एंड कंट्रोल देम इफ यू डोंट वांट फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सके. फैमिली में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं इनको लेकर चिंता बनी रहेगी. काम में शायद आज मन भी ना लगे इस वजह से. मीन यानी पाइसेस, कुछ नए एक्सपीरियंसेस आज हो सकते हैं. नौकरी के मामले में यूड गेट सम एडेड एडवांटेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द सेम टाइम. रुके काम भी आज पूरे होंगे, इतने दिनों से यू वर ट्राइंग टू गेट इट डन एंड फाइनली इट विल हैपन, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे. करके ने कैंसर, बिजनेस है आपका तो आज काफी फायदा मिलेगा, काम पूरा होने से खुश तो रहेंगे ही. साथ ही साथ आपके लिए ये भी बताया गया है कि किस्मत आपके साथ है, इसीलिए जो फैसला आपने पहले लिया था एंड यू एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड रिजल्ट, फाइनली यू विल सी दैट हैपनिंग फॉर यू टुडे. सिंह यानी कि लियो, आज आपके लिए कहा गया है कि किसी भी तरह का रिस्क ना ले, स्पेशली इफ मनी इज इन्वॉल्व्ड एनीवेयर. आपको बहुत सोचना पड़ेगा आज. नौकरी में चैन की सांस लेंगे, हैप्पी तो है ही आप, बस कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका नुकसान चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, आज उनको हारता देख कुछ ज्यादा ही हैप्पी रहेंगे. कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए कहा गया है बिजनेस ठीक चलेगा, रिस्क उठाने की हिम्मत और समझ दोनों आज आप में आएगी. गाड़ी चलाते समय, मशीनरी का इस्तेमाल करते समय एकदम केयरफुल रहें. तुला यानी कि लिब्रा, अगर आज शादी नहीं हुई आपकी तो विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे. यूड बी वेरी हैप्पी टुडे टू गेट दोज यू नो मैरिज प्रपोजल्स, और इसमें हो सकता है आपका भविष्य जो है अच्छा सवर जाए. नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा, बेसिकली आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और कोई बड़ा काम करने का प्लान आज आप बना सकते हैं. वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ फैसले ले रहे हैं आप. प्रॉपर्टी मार्केट में शायद आप इन्वेस्ट करने के बारे में या एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं. देन टुडे इज अ वेरी गुड डे. बस अपने ओर से जो भी जरूरी कार्यवाही है, रिसर्च है, आप कर लीजिएगा एंड देन गेट इन्वॉल्व. साथ ही साथ आज बताया गया है किस्मत आपके साथ है, सफलता जरूर हासिल करेंगे. नौकरी में भी यूड सी योर सेल्फ गेटिंग प्रोग्रेस. धनु यानी सेजिटेरियस, आज आपके लिए कहा गया है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर काफी मामलों में सफलता हासिल करेंगे. ट्रिप भी आपके लिए एंटरटेनिंग रहेगा, और परिवार में कुछ शुभ काम होगा जिसमें आप भाग लेंगे, और सभी आपको बहुत अटेंशन और प्यार आज देने वाले हैं. मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि लेन देन में केयरफुल हो जाए. अननोन लोगों पर भाई विश्वास तो क्या, अधिक विश्वास तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वास भी क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए जिनको नहीं जानते हैं ज्यादा भरोसा मत कीजिए आज के इस दिन. आज आपके लिए कहा गया है विवाद को बढ़ावा ना दे, क्योंकि यही वो दिन है जहां पर ऐसी कुछ यू नो चीजें कर शायद अपनों के साथ रिश्ते आप खराब कर सकते हैं. कुंभ यानी अक्यूरियस, आपके लिए कहा गया है यूड बी हैप्पी टुडे. आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, बट यूड बी एबल टू मैनेज देम आने वाले दिनों में. मेहनत का अच्छा रिजल्ट आज आप हासिल करेंगे. फाइनली मीन यानी पाइसेस, कुछ नए दोस्त बनेंगे जिनकी जरूरत शायद लाइफ के इस मोमेंट पर आपको थी. अच्छी खबर भी मिलेगी एंड यूड बी वेरी हैप्पी टुडे टू हैव रिसीव्ड दैट मैसेज. सो ये थे आज के आपकी राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा, कमाल का और बढ़िया गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ आज के इस दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से. कमिंग अप वेरी शॉर्टली आज का सेलिब्रिटी अलार्म. भाई कल तो जो रिजल्ट था सेलिब्रिटी अलार्म के मामले में, माय गॉड, आज वो भी डिस्कस करेंगे बाय द वे आपके साथ.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
4: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Farmers' birthday sale for Farmers Club members is now on. Up to 50% off kitchen and dining, 50% off beds by Sleepyhead, and up to 50% off furniture and small appliances. Farmers' birthday celebration is now on. Conditions and exclusions apply.
3: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
4: पेट्रोल पंप देखते ही टेंशन हो जाती है अब टाइम है उसके पास से मुस्कुराते हुए निकलने का टाटा नैनो ऑटो ग्रुप ईवी और हाइब्रिड सुपर साइट में ब्रांड न्यू ईवीज और हाइब्रिड्स सिर्फ 29,990 से 7 साल की वारंटी के साथ अवार्ड विनिंग लीप मोटर बाइक एसयूवीज एंड द फेमस डोंगफेंग रेंज ट्रेड-इन्स वेलकम फाइनेंस भी अवेलेबल है फ्यूल पर पैसे बचाइए ग्रेट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाटा नैनो फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
5: Smile.

0: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77-HEERA नॉर्थ एंड वेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Celebrity Alarm. Hit it.
3: यू नो कल के सेलिब्रिटी अलार्म के बारे में जब हम आपसे बातें कर रहे थे मैंने तो कहा था इतना इंटरेस्टिंग हुआ कल का सेलिब्रिटी अलार्म दैट नो वन कुड गेट इट राइट अपार्ट फ्रॉम दिस वन पर्सन ओनली जिनका नाम था नेहा लोगों ने कोशिश तो की लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स भेजे थे यार एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ कम पीपल कुड थॉट दैट दैट वॉइस वॉज ऑफ विराट कोहलीज बट नेवरदलेस नेहा यू गॉट इट राइट इट वॉज रीटा ओरा जिन्हें न्यूजीलैंड की बहू हम कह सकते हैं बिकॉज शी इज मैरिड टू टाइका वाइटीटी जो कि एक बहुत ही जाने माने फिल्म मेकअप स्टोरी राइटर एक्टर हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड नाउ आज का सेलिब्रिटी अलार्म जिसके लिए आई एम ऑल रेडी एंड आई होप यू आर टू सबसे पहले चलिए आपको आवाज सुनाते हैं लेट्स सी इफ यू कैन फिगर इट आउट कि ये किसकी आवाज है
4: But I believe my friends are. Perhaps you know them. Franklin, Grant and Jackson.
3: तो चलिए क्या आपको पता है कि ये जो आवाज़ मैंने अभी आपको सुनाई है ये किसकी आवाज़ है अगर आपको पता है कि ये किसकी आवाज़ है तो आप जल्दी से हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं 5599 पर BF लिखना है सबसे पहले फिर अपना आंसर अपना नाम और सेंड कर देना है 5599 पर सो एक बार फिर आपको सुना रहे हैं आज की सेलिब्रिटी की आवाज़ इन सेलिब्रिटी अलार्म
4: But I believe my friends are. Perhaps you know them. Franklin, Grant and Jackson.
3: A very popular face, a very popular name और a very popular character जिसके basically एक dialogue हमने आपको सुनाया But let's see how many of you can figure it out. थोड़ी देर बाद आज के news headlines.
1: Hollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
6: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में सबसे पहले आपको हम याद दिला दें कि वेलिंगटन में बहुत से ऐसे होम ओनर्स हैं जिनको सेपरेट वाटर बिल्स जो है ये मिले हैं एज न्यू वाटर सर्विसेज प्रोवाइडर टियाकी वाई जो है इन्होंने अपना फर्स्ट इनवॉइस भेजना शुरू किया. रेसिडेंट्स अक्रॉस वेलिंगटन, पोरिरुआ, लोअर हट एंड अपर हट विल नाउ रिसीव अ सेपरेट क्वार्टरली बिल फॉर वाटर सर्विसेज अलोंग साइड देयर रेगुलर काउंसिल रेट्स. अन्य खबरों में कहा गया है कि लेबर पार्टी ने कहा है इट कांट बैक द गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड अंडर 16 सोशल मीडिया बैन येट, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं इट हैजंट बीन गिवन, आई मीन दे हैवंट बीन गिवन अ कॉपी ऑफ द बिल, और जहां पर वो अगर इसके बारे में वाइडर कॉकस के साथ डिस्कशन कर सकते उनके पास अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं है. लेबर पार्टी का कहना है कि इट नीड्स टू रिव्यू द लेजिस्लेशन बिफोर डिसाइडिंग कि क्या वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे या नहीं. खेलकूद के खबरों में ऑल ब्लैक्स ने नेम कर दिया है अपना स्क्वाड फॉर द अपकमिंग टूर ऑफ साउथ अफ्रीका विद 3 प्लेयर्स अर्निंग देयर फर्स्ट कॉल अप्स. वेटरन हुकर कोडी टेलर जो है ये कैप्टन करेंगे, जबकि द साइड रेगुलर स्किपर आदि सावेया जो है इज रेस्टेड फॉर चैलेंजिंग 2 टेस्ट सीरीज. तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
2: Get up and Gold Coast.
3: A high of 16, a really chilly start. Should be mainly fine today. Northwestern Motorway could be an incident going on at Te Aratu. We haven't got confirmation, but we're heavy upper harbour to there. Then it's fairly clear to Point Chev, heavy from there to the city, 38 minutes in from Massey. Southern 45, Manukau Town, we're slow from Papakura, lots of heavy spots. Northern 30 in from Constellation, heavy at Silverdale and on and off from Greville.
2: Trade the winter chill for Gold Coast sunshine with great low fares at jetstar.com.
4: Coffee? The usual?
5: How about the unusual?
6: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
7: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event tomorrow till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
8: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
7: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event. Tomorrow till Sunday from 9am at 9 Sylvia Park Road or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
12: Ready for a career you can build on? EarnLearn can help. Whether you're starting out, changing careers, or ready to trade screen time for tool time, an EarnLearn apprenticeship could be your next step. Earn while you train in electrical, plumbing, gas fitting, or drain laying. Build real skills on the job and get personalised support along the way. Get your career on the tools with EarnLearn. Visit earnlearn.ac.nz or call 0800 Earn It today.
0: The beat of Bollywood.
13: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Birthday greetings.
14: इसका बर्थडे भाई?
15: मेरा भी बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ.
14: Happy birthday to you.
16: आज है वेंसडे द 29th ऑफ जुलाई अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करने का दिन फाइनली आ ही गया बिकॉज टुडे इज योर हैप्पी बर्थडे या फिर आपकी शादी की सालगिरह तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सबसे पहले अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अमेजिंग डॉटर आनिया सेलिब्रेटिंग अ थर्ड या टेंथ बर्थडे टुडे माफ कीजिएगा वी आर सो प्राउड ऑफ यू लॉट्स ऑफ लव मम एंड डैड आरव एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स पापाकुरा में इनकी ओर से हैप्पी बर्थडे टू माई हस्बैंड संजय थैंक यू फॉर बींग द रॉक ऑफ आर फैमिली विशिंग योर वंडरफुल ईयर अहेड Lots of love from your wife, Penal, and aapke jo bachche hain, unki aur se bhi dheer sara pyaar, ab tak hum pahuncha rahe hain. A very happy birthday to my lovely wife, Nikita. Thank you for filling our home with love and happiness every day. Love always from Harsh. Happy, happy birthday, guys. Janamdin ki bahut sahi shubhkamnaye aap sabhi ko. Jahan kahin bhi aap apna birthday celebrate kar rahe hain, aaj ke is khas din, hamari hum team ki aur se aap sabhi ko janamdin ki bahut sari shubhkamnaye. And if you have birthdays coming up, to yaad rahe on the day, aap hamare paas 5599 par to message kar hi sakte hain birthday ya anniversary ke liye. और अगर आप चाहें तो एडवांस में ईमेल कर सकते हैं buzz@hamfm.com पर buzz@hamfm.com पर बट रिमेंबर टू राइट द डेट और द डे जब बर्थडे या फिर एनिवर्सरी हो ताकि उस दिन हम आपके लिए जरूर लेकर आ सके हमारी बर्थडे ग्रीटिंग्स सेगमेंट में बट फॉर नाउ ऑल ऑफ यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन 29th ऑफ जुलाई हैप्पी बर्थडे

0: A very beautiful, beautiful straight from the heart. आपके नाम आज सुबह सुबह हमने शामिल किया. उम्मीद है you've enjoyed it. वैसे अगले घंटे द रश आवर आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे. और आज रश आवर के सफर में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, जिसके लिए आई होप कि आप सब तैयार हैं. बाय द वे, आज है वेंसडे द 29th of July. क्या आपको पता है कि रेड नोज डे इसी फ्राइडे 31st of July को मार्क किया जा रहा है. अगर आपको जानना है कि रेड नोज डे क्या है तो हमारे साथ ही बने रहिएगा. बस थोड़ी देर बाद डिटेल्स इससे जुड़े हम आपके साथ शेयर करेंगे. ऑन द अदर हैंड, लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू कि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी. आपको मिलेगा मौका टू एंजॉय द गरबा वाइब विद नन अदर देन राज गढ़वी. गरबा नाइट विद राज गढ़वी ये होने जा रहा है सैटरडे 1st of August को. इसी सैटरडे ये होने जा रहा है, मतलब आज वेंसडे है, टुमारो इज थर्सडे एंड देन फ्राइडे एंड देन फाइनली ऑन सैटरडे महात्मा गांधी सेंटर पर ये रहेगा. एंड द टिकट्स आर गोइंग लाइक क्रेजी. आई एम नॉट श्योर कि अभी कितने टिकट्स बाकी हैं, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर लक ऑन eventstickets.co.nz. रिमेंबर eventstickets.co.nz विजिट करते हुए ये स्वप्निल शाह से 022-439-4736 पर आप बातें कर सकते हैं एंड ग्रैब योर टिकट्स, बिकॉज लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट्स न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस साल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड गरबा सेलिब्रेशन, जहां पर द सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव ऑन स्टेज आपके लिए एक वाइब्रेंट एनर्जी लेकर आने वाले हैं एंड यू विल गेट टू डांस द नाइट अवे विद योर लव्ड वंस. सो याद रहे, आपको विजिट करना है eventstickets.co.nz, जहां से आप अपने लिए टिकट्स ग्रैब कर सकते हैं.
1: Mornings made better.
2: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
4: हम एक्यूरेट ट्रैफिक,
5: न्यू टेस्टी राइस बार्स एंड बाइट्स.
6: A high of 16, a really chilly start, should be mainly fine today. Northwestern motorway, could be an incident going on at Te Ngāruru. We haven't got confirmation, but we're heavy upper harbour to there. Then it's fairly clear to Point Chev, heavy from there to the city, 38 minutes in from Massey. Southern 45, Manukau to town, we're slow from Papakura, lots of heavy spots. Northern 30 in from Constellation, heavy at Silverdale and on and off from Greville.
5: New Tasty Rise low-carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking.
7: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here! Now I'm here!
8: Now I'm here!
7: Back here now!
8: Here I am!
7: Super birthday deals! On now at Pack and Save! Now I'm back here!
9: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Pizza ovens $129, pressure cookers $89, stand mixers $59, smart Wi-Fi indoor cameras $29. Save hundreds on beautiful home improvement products. Only at Trade Depot in Onehunga or shop online.
5: TradeDepot.co.nz.
10: Grab a new generation Samsung foldable phone from Spark with a huge deal. Upgrade now and save at least $1,200 on the all-new Samsung Galaxy Z Fold 8 or Galaxy Z Fold 8 Ultra over 24 or 36 months interest-free on eligible Spark plans with any trade-in. Plus, you'll save the trade-in amount of your phone on top. Get amazing savings on the all-new Samsung foldable phones at Spark. Minimum $99 deposit, trade-in and store only. T's and C's apply.
11: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.

द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने आज हमारे साथ सेलिब्रिटी अलार्म में हिस्सा लिया, कुछ सही तो कुछ गलत आंसर जरूर आए। बट आज की सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म वॉज नन अदर देन जिम कैरी। जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने आंसर भेजे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेज के लिए। आयशा है, हर्ष है, क्रिश है, मीरा है, नेहा है, प्री, थैंक यू सो मच आपका भी मैसेज हमें मिला है। विकास, आपका भी मैसेज आया है, थैंक यू। जिम कैरी वॉज द करेक्ट आंसर एंड ही इज द सेलिब्रिटी। आप सब तो नहीं पहचान पाए पर एक दो लोगों ने सही सही जवाब हमारे पास जरूर भेजा, तो इसका मतलब ये कि कल सेलिब्रिटी अलार्म में एक नई आवाज, एक और सेलिब्रिटी की ये हमें आपके लिए लानी होगी। फिलहाल हमने इस घंटे का था ना रेड नोज डे के बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट रेड नोज डे, 31st of July को रेड नोज डे जो है ये मार्क किया जाता है। What is Red Nose Day if you may ask me? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Red Nose Day जो है basically ये एक ऐसा दिन है जहाँ पर लोग एक साथ एकजुट होते हैं, इन न्यूजीलैंड पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बातें करें। सो इट इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड इट इज़ समवट जहाँ पर बिगेस्ट एनुअल फंड रेजर डे मार्क किया जाता है इस दिन फॉर क्यूअर किड्स। क्यूअर किड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंड्स इकट्ठा करते हैं बच्चों के हेल्थ रिसर्च के लिए अक्रॉस न्यूजीलैंड। ओवर द ईयर्स दोज डोनेशंस जो लोगों ने किए हैं, इट हैज़ हेल्प्ड रिसर्चर्स मेक लाइफ चेंजिंग ब्रेक थ्रूज, जिसकी वजह से बेटर ट्रीटमेंट्स, अर्लियर डायग्नोसिस और इम्प्रूव्ड केयर जो है ये बच्चों तक पहुँचाया गया है हु हैव बीन लिविंग विद सीरियस इलनेसेस। रेड नोज डे जो है ये बहुत ज़रूरी है एंड इट्स समथिंग फन and important for thousands of Kiwi children at the same time. कुछ ज़रूरी आंकड़े जो है ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं यहाँ न्यूजीलैंड में बच्चों के हेल्थ को लेकर। जैसे कि एवरी ईयर 40,000 चिल्ड्रन आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद इलनेस दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। अराउंड 500 न्यूजीलैंड फैमिलीज एक्सपीरियंस करते हैं हार्ट ब्रेक ऑफ स्टिल बर्थ ईच ईयर इन न्यूजीलैंड और अप्रॉक्सीमेटली 150 चिल्ड्रन आर डायग्नोज्ड विद कैंसर एनुअली। One in every three children's hospital admissions is क्योंकि respiratory illness का सामना जो है बच्चे करते हैं यहाँ पे। One in five young people report experiencing serious psychological distress और 188 children जो है इन्हें hospitalize किया जाता है every year with rheumatic fever and heart related diseases as well. Every red nose purchase या donation जो होता है it actually helps fund research जो बच्चों को एक healthier future दे सकता है। So if you see someone wearing a little red nose this Friday red nose day पर आपको याद रहेगा it's not just about having fun, it's all about helping Kiwi kids for a chance to live healthier and happier life. अगर आपको इसका एक हिस्सा बनना है, डोनेशन करना है, डिटेल्स चाहिए कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्य लोगों तक डिटेल्स जो है ये दे सकते हैं, तो आप rednoseday.co.nz विजिट कर सकते हैं। रिमेंबर rednoseday.co.nz और रेड नोज डे के बारे में और डिटेल्स हासिल करते हुए अपना योगदान दे सकते हैं विच इज़ हैपनिंग दिस फ्राइडे 31st of July।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के बारे में कहा जा रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ फाइन डे विद ब्यूटीफुल वेदर टुडे, और ठंडी ठंडी हवाओं का साथ तो रहेगा भाई सुबह से लेकर शाम तक, पर याद रहे रात्रि को भी काफी ठंडी रहेगी. नॉट एज कोल्ड एज द पास्ट फ्यू डेज हैव बीन, बिकॉज ओवरनाइट टेम्परेचर 7 डिग्रीज रहेगा. हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड है आज, या 14 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर. याद रहे सनसेट आज का 5:34 PM पर होगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: Trend Patrol on the Breakfast Show with Vijay and Pooja. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. So talking about what is trending in New Zealand, मैंने Google Trends जो ये चेक किया कि सबसे ज़्यादा टॉपिक क्या कुछ है जो यहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यार ट्रेंड कर रही हैं. इंटरेस्टिंगली कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है इसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ गूगल पर देखा गया है. हॉस्पिटल वार्ड हैज बिन क्वाइट ट्रेंडिंग ऑन गूगल इन न्यूजीलैंड एज फार एज दैट इज कंसर्न. कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टेबल ये बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं राइट नाउ. बट देयर इज वन नेम विच हैज बिन ट्रेंडिंग द मोस्ट ऑन गूगल इन न्यूजीलैंड पर्टिकुलरली पिछले 24 आवर्स में, एंड द नेम आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन जो कैमलिन जोन्स जो है ये एक वेल्श जिमनिस्ट है जिन्होंने अपना इमीडिएट रिटायरमेंट अनाउंस किया आफ्टर कम्पीटिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स हैपनिंग एट ग्लासगो, और इनकी उम्र सिर्फ 26 ईयर्स बताई जा रही है. ही फिनिश्ड 6th इन द जिमनास्टिक्स टीम कॉम्पिटिशन जिसमें अपनी टीममेट्स के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और स्ट्रेट आफ्टर दैट ही अनाउंस्ड कि जो कॉम्पिटिशन है ये इनके प्रोफेशनल जिमनास्ट करियर का आखिरी कॉम्पिटिशन था जिसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे थे. इन्होंने कहा, इट्स एक्चुअली माई लास्ट एवर कॉम्पिटिशन, सो इट वॉज माई लास्ट टाइम पुटिंग अप माई हैंड इन फ्रंट ऑफ द जजेस. It's been something special. It's been really emotional. I wanted to go in with a smile. I wanted to end with a smile. And that's what I have done. So, I am happy. ये इन्होंने कहा है. So, this particular name has been trending quite a lot as far as Google Trends are concerned in New Zealand. और क्या कुछ trend कर रहा है New Zealand में आपके लिए, ऐसे और भी trending topics Trend Patrol में on The Breakfast Show हम जरूर लेकर आते रहेंगे.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है तो इसका जवाब है टाकानिनी ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट। ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू 7 साल की वारंटी के साथ एसयूवी हाइब्रिड्स फोर व्हील ड्राइव्स परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है। विजिट टाकानिनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साल्टो टाकानिनी। ट्रेड इन और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल। फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। टाकानिनी ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साल्टो टाकानिनी।
2: Here for easy dinners, game-watching snacks, and last-minute ingredients. When you need it now, get it delivered to your door. Just download and order on the Foursquare Now app. Foursquare, what'll it be today? Select stores only.
3: Good news, tradies. This Saturday, Mitre 10 Mega Botany aaiye for a free sausage, supplier demos on site or giveaways, range, convenience aur aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
8: हाँ, मॉर्गेज बनना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए लेकर आ रहे हैं. Only on Hum playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM या Rova app पर अगर आप हमें सुन रहे हैं. This is the Rush Hour. बारी तो है What's your take की, जो थोड़ी देर बाद हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, मतलब आज का टॉपिक. But before that, let me remind you कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद इस घंटे के Rush Hour के सफर में एक बहुत ही खास मेहमान. और ये कुछ बहुत जरूरी जानकारी आपके लिए लेकर आने वाले हैं. तो क्या है ये डिटेल्स, क्या जानकारियां लेकर आएंगे, कुछ काम की बातें आपसे करने वाले हैं और कौन है ये जानने के लिए हमारे साथ ही आपको रहना है. बट गेटिंग बैक टू आज का हमारा टॉपिक, विच इज बेसिकली हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक. तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड में बहुत से लोग फ्रीजिंग नाइट जो है ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं. वेल, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जो मेट सर्विस ने जारी की है, कहा गया है कि न्यूजीलैंडर्स आर बीइंग टोल्ड कि वो तैयार रहे अनदर फ्रीजिंग नाइट के लिए. और ऐसे में वो वॉर्न कर रहे हैं कि मच ऑफ द कंट्री विल वेक अप टू अनदर वाइड स्प्रेड फ्रॉस्ट बिफोर वेदर जो है लेटर दिस वीक चेंज होता है. होपफुली बाय थर्सडे फ्राइडे, तो यानी कि कल या परसों तक तो प्रिडिक्शन हो रही है कि थोड़ा तो टेम्परेचर में सुधार देखा जाएगा. लेकिन टॉकिंग अबाउट द कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स ऑफ द ईयर जो फेस किया गया है इन न्यूजीलैंड, इट वॉज डिलीवर्ड ऑन मंडे. सम ऑफ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स जो रिकॉर्ड किए गए थे वॉज टोपो, जहां पर द टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू -5.6 डिग्रीज. क्राइस्टचर्च में -4.7 डिग्रीज. मास्टरटन में -4.4 डिग्रीज. रोटोरुआ में -3.9 डिग्रीज और हैमिल्टन में -2.8 डिग्रीज. लेक पुकाकी में द टेम्परेचर रीच्ड अराउंड -8 डिग्रीज. सो दिस वॉज ऑन मंडे आई एम टॉकिंग अबाउट. वैसे कहा जा रहा है कि वेदर फ्रंट विल मूव इन टू न्यूजीलैंड आई थिंक ऑन थर्सडे, जिसकी वजह से बारिश होगी, तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, पॉसिबल हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं इन पार्ट्स ऑफ साउथ आइलैंड बिफोर स्प्रेडिंग टू नॉर्थ. लेकिन कूलर साउथ वेस्टलीज जो है ये फॉलो करेंगे विद स्नो पॉसिबल ऑन स्की फील्ड्स एंड अल्पाइन पासेस. और लेट इन द वीकेंड होपफुली थोड़ा साफ मौसम जो है ये हो. बट आज का ये यू नो टॉपिक हमारा ये है कि यार इतनी ज़्यादा ठंडी सुबह सुबह जब फील होती है ना तो हालत ख़राब हो जाती है. आई मस्ट से मेरे को तो सुबह उठने का भी दिल नहीं करता. आई बी वेरी ऑनेस्ट, कंबल से बाहर निकलने का दिल नहीं करता. डोंट फील लाइक स्विचिंग ऑफ माई हीटर बिकॉज इट्स सो कोल्ड. लेकिन आज का हमारा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जिसके आंसर्स आप व्हाट्सएप टेक में हमारे पास मैसेज कर सकते हैं 5599 पर. आपको बताना है व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू अर्ली इन द मॉर्निंग इस सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में. ठीक है, आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू अर्ली इन द मॉर्निंग इस कोल्ड वेदर के दौरान. अपने आंसर्स 5599 पर हमारे पास आप सेंड कर दीजिए और देखेंगे आप में से कितने लोग क्या कुछ कह रहे हैं सर्दी के इस मौसम के बारे में.
9: Bollywood's most wanted.
11: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
13: मैं लाऊं अपना A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: emotion hai, drama hai, tragedy hai.
1: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। नाउ जैसे कि इस घंटे की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज आपकी बातचीत हम कराने वाले एक खास मेहमान के साथ, और इनके साथ आपको भी बातचीत करने का, इनके साथ मुलाकात करने का मौका मिलेगा। समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे इन टच विद, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे फायदे की बातें जो है ये लेकर आने वाले हैं। आज से हमारे साथ एवरी सेकेंड ट्यूजडे को, यानी कि फोर्टनाइटली ट्यूजडेज को हमारे साथ जुड़ेंगे इन द ब्रेकफास्ट शो। तो बिफोर आई वेलकम ये शख्सियत जो हमारे साथ आज ब्रेकफास्ट शो के सफर में जुड़ने वाले हैं, आप सभी को मैं बता दूं, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नन अदर देन NZPMI से पॉल। अ वेरी गुड मॉर्निंग पॉल, कैसे हो आप?
2: Good morning, Pooja, and thank you very much. And thank you for inviting me here. Appreciate that.
1: Thank you so much for taking our time and talking to all of us. सबसे पहले तो Paul, since this is our first conversation we are having on Hum on the Breakfast Show, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जुबानी लोगों को बता दें कि कौन है Paul और क्या है NZPMI.
2: Sure. So.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Accurate traffic.
1: Love that chicken from Popeyes.
2: High of 16. Fine today. A really chilly start into the city. Northwestern motorway, 40 minutes Massey to town. We've had a breakdown impacting the middle lane around Pātiki. Quite slow from Massey, heavy a lot of the way. Southern, 45 minutes Manukau to town. Slow from Manurewa. We're heavy from Otahu. Southwestern, heavy northbound through Whitty. Northern, 32 Constellation to the CBD. Heavy at Silverdale and most of the way from Greville.
1: Three crispy drumsticks and regular fries for just $9.90 at Popeyes Chicken this week.
3: It's Woolworths Half Price Week. Get Makona Coffee Sachets 20-pack for just $7.39 each. And Paseo 4-Ply Ultra Soft Toilet Tissue 6-pack for just $4.90. 1 week only, while stocks last. T's and exclusions apply.
4: At Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74. Or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
5: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
6: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
5: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
6: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the USA and Canada. Like Honolulu from $515 one way. LA and San Fran from $725. Or Vancouver from $999. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
10: The Rush Hour on The Breakfast Show with Vijay and Pooja. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, so quickly giving you a shout out. सिड है, साथ में हीना है, अनीता जी हैं, और इसके अलावा रोहन, आपका भी मैसेज हमें मिला है. थैंक यू सो मच आपके भी साथ के लिए, आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आपने जो सेंड किया है और हमें आज सुबह सुबह अपनी कंपनी दी है उसके लिए थैंक यू. थैंक यू सो वेरी मच. बाय द वे, रिमाइंडिंग यू ऑल कि आज वेंसडे है और आज Powerball is $4 million if you want to try your luck. Last week तो भैया Saturday को क्या मजे हुए दो लोगों के, 20.1 million ये दो लोगों ने जीता. And if you want to try your luck for tonight, you can definitely do that. And on the other hand, let me also remind you, reports जो है ये सामने आई हैं और एक large sinkhole जो है ये open up हुआ on a street in St. Mary's Bay. और ये जो सिंकहोल है भाई, इससे रिलेटेड यू नो वीडियो भी इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट आप अगर जाकर सर्च करोगे, बट आई कांट बिलीव कि यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी आज भी हम ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. आई रिमेंबर देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पर यू नो ये एक सिंकहोल जो है ये कुछ साल पहले ही ओपन अप हुआ था सिटी में ही कहीं पर, और उसे वापस से यू नो भरने में, उसको रिपेयर करने में इतना ज़्यादा टाइम जो ये लगा था, बहुत सारा ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन भी हुआ था इस एरिया में. बट लेट्स सी कब तक ये वाला जो है ये सॉर्ट आउट होता है. फिलहाल रश आवर का मजा उठाते रहे, थ्रोबैक का मजा उठाइए. इनफैक्ट अगले घंटे आपके लिए व्हाट्स गोइंग ऑन लेकर हम आपके साथ बस थोड़ी देर में जुड़ेंगे.

0: accurate traffic.
1: Wardrobes Direct, great value wardrobes.
2: Super cool morning, fine today with a high of 16 degrees into the city. Northwestern motorway breakdown's been impacting an area around Pātiki block in the middle lane. It has been quite heavy through there. We're taking about 38 minutes Massey to town. Slow from Massey with a lot of heavy spots. Southern at 45 minutes Manukau to the CBD. We're slow from Manurewa, heavy a lot of the way from Otahuhu. Northern 30 from Constellation, heavy from there.
1: Wardrobes and sliding doors for all budgets. Visit Wardrobes Direct, Mount Wellington and Silverdale showrooms.
3: Please use your imagination for the following ad.
4: If I won Powerball, the first person I'd tell would be... and would surprise all our friends by...
3: Imagine winning $4 million this Wednesday. Play in store or online.
5: Find more ways to save this business month at Warehouse Stationery. Grab hot deals on office essentials or a great value bundle. And earn bonus biz rewards points on the brands you love. Shop great deals for your business and save big today.
6: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
7: No way. We in trouble?
6: Nah, it's BP Plus.
7: What is that?
6: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus... we get free coffees.
8: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
9: Dakanini Auto Group may electric or hybrid cars or SUVs. Brand new. Sirf 29,996. Leap Motor, Dongfeng or bike ke latest hybrid or EV models. Trade-ins welcome. Finance bhi available hai. Visit Dakanini Supersite. Petrol or diesel ke crazy prices ko boliye goodbye. Aur nahi ya quality used EV ya hybrid ghar le jaiye. Aur haan, ye almost sab kuch trade kar lenge. Bas, aapki mother-in-law ke ilawa. Dakanini Auto Group. 170 Great South Road, Dakanini. Fees, C's, D's and credit criteria apply.
10: Whites separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
11: Hum. Time check.
12: A very good morning. It's 7:09 baj rahe hain hamare studios mein.
11: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A funeral will be held today for the infant found dead on the side of the road in Blenheim. The baby's body was discovered on May 19th, with police still holding concerns for the welfare of its mother. Detective Sergeant Hillgrove says they are working diligently to identify any family members through forensics. One person's been seriously injured in a four-vehicle crash in Horowhenua. It happened on State Highway 57 near Potts Road. Motorists are advised to avoid the area or delay travel. Japan's Prime Minister says the risk of landslide and building collapses remains high following a massive earthquake. People are still unaccounted for across two sites, a mall and a paper factory. Sana E Takaichi is urging people to stay vigilant, translated via Reuters.
14: Over the next week or so, please remain alert for the possibility of earthquakes with a maximum seismic intensity of 7.
13: The uniqueness of Auckland's newly dubbed Western Springs Bowl is being celebrated. Construction of a semi-permanent stage and two hospitality spaces should be completed in October. Venue partner Campbell Smith says the new name signals a step into the future.
15: To be identified as a permanent concert space is important, and I think that's a change from, you know, how we've used it over the years.
13: In sport, the women's 100 metres final at the Commonwealth Games in Glasgow on Sky Sport.
16: And they're away safely, clean start. Marnie Lansico going well out of the blocks, as is Zoe Hobbs, as expected. Into the second half of the race now, barely anything to choose between the athletes. It's so close on the line. I think it was Zoe Hobbs.
13: New Zealand's Zoe Hobbs has won gold in a personal best time of 10.93 seconds. Lewis Clairbert's won gold as well in the 400 metres individual medley, and silver for Erica Fairweather in the 800 metres freestyle, and silver for Lauren Bruce in the hammer throw takes New Zealand tally to 13 medals.
11: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari good brands bhi hai.
11: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: बहुत सारे अपडेट्स रिपोर्ट्स आ रहे हैं दैट आने वाले कुछ दिनों में जो हमने ठंडी का मौसम एक्सपीरियंस किया है भाई ऐसा आज भी रहेगा लेटर दिस वीक एंड नेक्स्ट होपफुली बाय टुमारो कहा जा रहा है क्योंकि चेंजेस रहेंगे मौसम में एंड अ बिट यू नो लेस कोल्ड जो है इन द मॉर्निंग एटलीस्ट हम एक्सपीरियंस करेंगे राइट नाउ याद दिला दे आज तो फाइन वेदर रहेगा विद लाइट विंड्स थ्रू आउट द डे सनसेट 5:34 PM पर होगा ओवरनाइट टेम्परेचर 7 डिग्रीज तक है और आज हाई 14 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर
11: Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
18: What's going on? Kya bakte ho?
19: Are kehna kya chahte ho?
12: आज का क्या बकते हो स्टोरी इज इंटरेस्टिंग अ बिट वियर्ड आई वुड से नॉट वियर्ड वियर्ड लाइक थोड़ा ऐसे जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि ओ वाओ आल्सो दिस कैन हैपन और फैशनेबल एट द सेम टाइम अगर आपके पास कभी भी ऐसा एक पेयर ऑफ जीन्स रहा दैट हैड फिट यू परफेक्टली लेकिन एक महीने बाद आपको लगा कि यार इट्स टू टाइट इट डजंट फिट मी नाउ तो आप अकेले नहीं हैं weight changes, bloating, hormones, pregnancies, yahan tak ki menopause, these are certain things that causes our bodies to change over time. Aur iski wajah se the problems that we face with our clothes, they don't change with us, right? To aksar log kya karte hain ki apna naya wardrobe jo hai ise update karte rehte hain apne size ke hisab se. Every time unka jo size fluctuate hota hai bada ya chota, to wo apne liye naya wardrobe taiyar karte hain. And that's not only expensive, lekin ye aapke liye fashion waste bhi zarur क्रिएट करता है लाइक कपड़ों की बर्बादी विच वी ऑल नो कि या न्यूजीलैंड में ये वैसे भी कितना ज़्यादा हो रहा है नाउ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ फैशन ब्रांड्स जो है एक एडजस्टेबल क्लोदिंग आउटफिट डिज़ाइन कर रहे हैं एज समथिंग जो आपके बॉडी चेंजेस के साथ साथ आपके बॉडी से अडेप्ट करेगा इंस्टेड ऑफ ऑब्वियस इलास्टिक वेस्ट पैंट्स ये गारमेंट्स जो है दे यूज हिडन जिपर्स पॉपर्स रिमूवेबल पैनल्स और डिस्क्रीट स्क्रैच सेक्शंस जो अलाउ करते हैं आपको कपड़ों को टू एक्सपेंड या फिर श्रिंक वाइल लुकिंग स्टाइलिश एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें द फीमेल आर्किटाइप्स शामिल हैं संजा स्टोरीज शामिल हैं एवर बाय एक्स ये कुछ ऐसी लीडिंग ट्रेंड्स हैं जो टाइमलेस प्राइस पीसेस क्रिएट कर रहे हैं दैट कैन बी वर्न थ्रू वेट चेंजेस प्रेगनेंसी एंड एवरीबॉडी या एवरीडे बॉडी फ्लक्चुएशंस के साथ साथ सपोर्टर्स से कि एडजस्टेबल क्लोदिंग अक्सर बहुत से बेनिफिट्स लेकर आता है जैसे आपके पैसे बचते हैं बाय रिड्यूसिंग द नीड टू बाय न्यू क्लोथ्स आपकी हेल्प होती है टू रिड्यूस टेक्सटाइल वेस्ट एंड इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो और इससे आपको इंकरेजमेंट भी मिलता है फॉर अ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचुरल बॉडी चेंजेस और आप फोकस करते हैं क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग फैशन इंस्टेड ऑफ फास्ट फैशन तो मैनी ऑफ दीज ब्रांड्स ऑल्सो यूज रिसाइकल या फिर डेड स्टॉक फैब्रिक्स ताकि वो ऐसे क्लोदिंग एथिकली प्रोड्यूस कर सकें जिससे सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और इसका की पार्ट मिशन इज बेसिकली कि इस बात का ख्याल रखें कि यू नो फैशन वर्ल्ड में जो कपड़ों की बर्बादी टेक्सटाइल वेस्टेज हो रहा है इसे कंट्रोल किया जा सके सो द फैशन एक्सपर्ट्स बिलीव दिस कुड बी द फ्यूचर ऑफ क्लोदिंग क्रिएटिंग वार्डरोब्स जो आपको परफेक्टली फिट करे थ्रू आउट डिफरेंट चेंजेस ऑफ लाइफ रादर देन एक्सपेक्टिंग कि लोग जो है सेम कपड़ों में फिट हो फॉरएवर हमारा शरीर बदल रहा है लेकिन कपड़े जो है वही हम पहनेंगे एंड इजंट इट इंटरेस्टिंग आई मीन आई नो क्या बकते हो बेसिकली बिकॉज आई एम सो शुक कि अब कपड़ों को भी ऐसे ही बनाया जाए जो आपके बदलते बॉडी टाइप के साथ एडजस्ट करें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी सो दिस इज द स्टोरी फॉर टुडे लेटर दिस आवर व्हाट्सएप ऑकलैंड में आपके लिए लेकर आने वाले कम्युनिटी से जुड़ी कुछ खबरें जो आपके नाम हम करेंगे जिसके लिए हमारे साथ ही बने रहेगा

0: going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: चलिए आज व्हाट्सएप ऑकलैंड में आपके लिए क्या कुछ अपडेट्स हम लेकर आए हैं अबाउट इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस इन आवर कम्युनिटी, जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं और कैसे इनमें आप भाग ले सकते हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की जो मासिक रामायण कथा है, ये इसी फ्राइडे 31st of July को 7:15 PM से होगा। IRST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी, इसके लिए आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप IRST के जो ट्रस्टी हैं इन्हें कॉल कर सकते हैं, रवीन कुमार को 0226705271 पर। दूसरी ओर श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, यहां पर अखंड रामायण पाठ होने को है सैटरडे 1st से लेकर संडे 2nd of August तक। सैटरडे 1st को यहां पर सुबह 7 बजे से रोड पूजा के साथ प्रोग्राम शुरू होगा और संडे 2nd of August को 10:30 AM पर हवन और आरती के साथ समाप्त। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप जरूर बातें कर सकते हैं 8364647 पर कॉल करते हुए और खुद को रजिस्टर भी करा सकते हैं। साथ ही साथ न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो बहुत ही खूबसूरत डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस श्री राम लीला, ये 8th of August को होने को है एंड ऑल द टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। इससे जुड़े डिटेल्स आप तक हम जरूर लेकर आएंगे। मेगा उत्सव जो कि होने जा रहा है 8th of August को 4:30 PM to 8:30 PM माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल पर, जहां पर एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री और इसका हिस्सा बन सकते, क्योंकि इंडिया में मॉनसून फेस्टिवल मनाया जाता है तो यहां पर आपको मिल रहा है मौका अपनी कम्युनिटी के साथ शामिल होकर इस बहुत ही लाइवली कम्युनिटी इवेंट का हिस्सा बनने का, इस फेस्टिव मॉनसून फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। और यहां पर बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस के साथ, जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन डांस एंड म्यूजिक, ये सब आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ में ऑथेंटिक इंडियन फूड खाने पीने के स्टॉल से ये भी आप ट्राई आउट कर सकेंगे। और बच्चों के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड किड्स कोना रहेगा तो बच्चों को भी यहाँ पर भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे भाग लेने के लिए, इसमें हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे गेम्स एंड एक्टिविटीज़ जो है ये भी होंगे और शॉपिंग एक्सपीरियंस करने का मौका भी आपको बेशक मिलेगा एट मेघ उत्सव जो कि आपके लिए होने जा रहा है। तो रिमेंबर 4:30 PM to 8:30 PM माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल पर 8th of August को, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। नाउ इसके अलावा न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन भी अपना 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट करने वाले हैं 22nd and 23rd of August को एट बकिनहेड स्काउट्स हॉल, जहां पर पहुंचकर आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ऑल प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट। रजिस्ट्रेशन के लिए या डिटेल्स के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं या फिर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज मोगा को 0210908 पर कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स हासिल करने के लिए। एंड फाइनली आपको मिल रहा है मौका चिन्मया मिशन की ओर से आप भाग ले सके भगवत गीता डिकोडेड मास्टर क्लासेस में। एक बहुत ही खूबसूरत समय है जहां पर यू कैन डिस्कवर कि कैसे टाइमलेस डायलॉग से मॉडर्न पाथवे टुवर्ड्स राइट लिविंग, फोकस और इनर पीस आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपको भगवत गीता जो है ये ट्रेन्ड वेदांत टीचर BR ईशान चैतन्य द्वारा सिखाया जाएगा, विच इज बेस्ड ऑन द कमेंट्री ऑफ पूज्य स्वामी चिन्मयानंदा। और ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है विच इज़ परफेक्ट फॉर एनीवन जो स्पिरिचुअल जर्नी अपना जो है ये शुरू करना चाहते हैं, ऐसे और भी मजबूत करना चाहते हैं। फ्राइडे 7th of August को ये रहेगा 7:30 PM to 9 PM न्यू लेन कम्युनिटी सेंटर पर मेन हॉल और 45 टोटारा एवेन्यू न्यू लेन में। एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री लेकिन रजिस्ट्रेशन करने होंगे आपको, जिसके लिए आप विजिट कर सकते हैं chinmaya.org.nz और खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिनके डिटेल्स अन्य लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे पास ईमेल कर सकते हैं आप भी इन्हें buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, देखो मैं आ गए।
0: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज ही मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप तो
5: आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No rest. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ. बोली, बस मेरा फोकस है.
9: हाँ. अच्छा
8: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
9: मिसेस सिंह.
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130 50 और विजिट focuskitchens.co.nz.
11: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Tūtaki. All Together Auckland.
12: Get 70% off selected stock at Spa World's Clearance Centre sales event this Thursday to Sunday.
13: There's thousands off display models, scratch and dent, and end-of-line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first-come basis.
12: This Thursday to Sunday from 9 a.m. at Spa World's Clearance Centre, 9 Sylvia Park Road.
14: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra, and Kumkumati oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
15: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
16: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
17: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
18: Yeah.
17: Hum.
18: Teri bees hai faadu. Meri highs ke liye.
17: Hum. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: करण औजला आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड अपना बहुत ही कमाल का पीप ऑप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर. एंड एट द स्पार्क अरेना ऑन द 25th of August ये परफॉर्म करने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट इकी के साथ. एक अनफॉरगेटेबल नाइट जो आपके लिए है, जहां पर इनके हिट गानों का मजा, इनकी इनक्रेडिबल एनर्जी का मजा और कमाल के लाइव परफॉर्मेंस का मजा आप उठा सकते हैं. सो दिस इज योर चांस टू विटनेस वन ऑफ द बिगेस्ट

0: और फिर उसके बाद हमारा एक सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब जो है ये सेंड करना है हमारे पास 5599 पर। आपको पता है ना कि आजकल एक टर्म दिया जाता है किसी एक शख्स को जो एक सर्टेन ईयर से सर्टेन ईयर के बीच पैदा होते हैं, जैसे जेन अल्फा, जेन जी, मिलेनियल्स, बूमर्स, लाइक देयर आर सो मेनी सच टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अब आपको बता रहा है कि इस कैटेगरी के हिसाब से करण औजला जो है क्या है, क्या वो एक मिलेनियल है, क्या वो एक जेन जी है, क्या वो जेन अल्फा में फॉल होते हैं। लेट्स सी इफ यू कैन गेट इट राइट। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर्स हमारे पास भेजिए। करण औजला की पैदाइश जिस किसी साल में भी हुई है उस हिसाब से वो किस जनरेशन की कैटेगरी में फॉल होते हैं, मिलेनियल्स या फिर जेन जी। अपने आंसर्स हमारे पास के ए स्पेस या आंसर ये नेम लिखकर 5599 पर सेंड कर दीजिए। देखते हैं कि आप में से कितने लोग हमें सही जवाब दे पाते हैं।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

सिंपल से सवाल पूछा था हमने, अगर आपको भी जीतना है एक डबल पास टू गो एंड विटनेस नन अदर देन करण औजला इनके पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर के तहत जो कि स्पार्क एरिना में 25 अगस्त को होने वाला है, और इस पे इस आंसर ये नेम लिखकर आपको भेजना था कि करण औजला जिस किसी भी साल इनकी पैदाइश हुई है उस हिसाब से वो किस जनरेशन की कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो आपको बता दें करण औजला जो है इनके बारे में कि इनका जो बर्थ डेट है, इफ़ यू डोंट रियली नो, बट इफ़ यू आर अ फैन यू शुड नो, दैट्स अनदर थिंग ना, बट जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट नो, तो करण औजला की पैदाइश 18 जनवरी को हुई है इन द ईयर 1997, और इस हिसाब से 1997 में अगर किसी की भी पैदाइश होती है तो वो एक जेन जी है, मतलब जेनरेशनल जी। तो जितने लोगों ने जेन जी लिखकर भेजा, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू सो मच आपकी एंट्रीज के लिए, आपका नाम हम डेफिनेटली ड्रो में शामिल कर रहे हैं। बॉलीवुड में भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें यार होती रहती हैं दिन ब दिन, जिसके अपडेट्स आप तक हम लेकर आते रहते हैं, और आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो हमने आपके साथ बातें की थी ना अबाउट रणबीर कपूर हु इज़ ऑप्टेड आउट फ्रॉम धूम 4। ये धूम 4 जो है स्क्रिप्ट के चेंजेस को लेकर या स्क्रिप्ट को लेकर कह रहे हैं कि इनको इसका हिस्सा नहीं बनना है, बिकॉज इज नॉट हैप्पी विद द स्क्रिप्ट राइट नाउ। और दूसरी ओर भूमि पेडनेकर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ऋषभ शेट्टी की आने वाली फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज इसे ज्वाइन किया है, द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज एज क्वीन या वॉरियर क्वीन बेलावदी मलम्मा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड, तो इनका किरदार जो है ये प्ले करने वाली है भूमि पेडनेकर।

0: चाहे आप हम के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: कॉफी, द यूजुअल।
2: How about the unusual?
3: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
4: It's Double Points Week with Everyday Rewards. Boost, spend and scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas and Milk Run by Sunday 2nd of August to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
5: Branchy Group 3 Event New Zealand અને Aroha Autos સાથે મળીને પ્રસ્તુત કરે છે રાજગઢવી લાઈવ ઇન ઓકલેન્ડ. તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજગઢવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
6: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahape station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhinui in just 32 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
7: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: What's going on?
11: आज का डेली राउंडअप जो आपके लिए हम लेकर आए, इट्स अबाउट दिस वन पर्टिकुलर स्टोरी. जब ये सामने आई तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने बातें जो है कि की हैं. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ न्यूजिंग लीडिंग न्यूज़ चैनल्स ने इसे रिपोर्ट भी किया. बट इफ़ यू हैव मिस्ड दिस आउट देन दिस इज़ फॉर यू. ये आपको कंसर्न करता है इसलिए बिकॉज दिस इज़ अबाउट न्यूजीलैंड में हेल्थ सिस्टम जो है उसको लेकर क्या कुछ चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं. रिसेंटली एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताया गया है, हु वॉज हैविंग अ हार्ट अटैक एंड ही वेटेड फॉर 5 hours वेलिंगटन हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बिफोर रिसीविंग द टेस्ट कि ये कंफर्म कर सके कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है. 55-year-old मैन अराइव द हॉस्पिटल विद बर्निंग चेस्ट पेन, पेन जो उनके लेफ्ट शोल्डर में स्प्रेड हो रहा था, हाई ब्लड प्रेशर और एक फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स. डिस्पाइट दीज वार्निंग साइंस ही वॉज नॉट सीन बाय अ डॉक्टर विद इन द रिकमेंडेड टाइम फ्रेम जो होना चाहिए, विच इज राइट देयर राइट नाउ. इमरजेंसी एक ECG कैरी किया गया और इसमें पता चला कि मोर देन 4.5 hours लेटर कि ही वॉज कन्फर्म्ड ही वॉज हैविंग अ हार्ट अटैक एंड ही वॉज रश्ड टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट वेयर डॉक्टर्स ने एक स्टेंट इंसर्ट किया टू रीस्टोर ब्लड फ्लो टू हिज हार्ट. हेल्थ एंड डिसेबिलिटी कमिश्नर ने कहा है दैट दे हैव रूल्ड दैट न्यूजीलैंड फेल्ड टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड केयर, सेइंग कि ये शख्स जो थे, ये व्यक्ति जो थे, उनके सिम्टम्स, उनकी उम्र, उनकी एथनिसिटी, उनकी फैमिली हिस्ट्री should have immediately raised concerns about a possible heart attack. Ek investigation mein ye baat pata chali ki emergency department was operating at 200% capacity the night jab ye shakhs emergency department pahunche the of Wellington Hospital. Us dauran sirf 10 nurses shot, they were contributing to the delay of the treatment being provided to the people there. Health New Zealand ne apologize kiya hai to the patient and unhone kaha hai it has introduced extra training for emergency department staff ताकि वो बेटर रिकॉग्नाइज कर सके हार्ट अटैक सिम्टम्स को. इट इज ऑल्सो डेवलपिंग अ न्यू रिस्पॉन्स प्लान फॉर पीरियड्स व्हेन इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स क्रिटिकली ओवरलोडेड हैं और रिव्यू कर रहे हैं स्टाफिंग एंड ट्रियाज प्रोसीजर्स को भी. और इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है दैट द केसेस they serve as an important reminder that chest pain should never be ignored. Anyone जो experience कर रहा हो chest pain, specially अगर वो आपके arm, jaws या shoulder तक पहुँचते हैं, या you are being accompanied, I mean the symptoms are being accompanied by shortness of breath, sweating या nausea, you should seek emergency medical attention immediately. Early diagnosis और treatment से ही लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, ना कि delayed treatment जो इस मामले में इस शख्स को दी गई थी. But thank God कि ये शख्स जो है अभी जीवित है और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट मिली एंड फिर वो अपने घर जो है ये सही ट्रीटमेंट पाने के बाद पहुंचे. बट नॉट एवरीवन एंड्स अप टू बी एज लकी एज हिम. दो 5 hours लेटर इनके ट्रीटमेंट को शुरू किया गया था, विच वॉज नॉट अ वेरी गुड थिंग. सो न्यूजीलैंड के हेल्थ सिस्टम पर अभी फिलहाल काफी सवाल उठ रहे हैं.

थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए. आई बिन ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मेरी खांसी, मेरी आवाज़ ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे. एंड आई होप दैट आई हैव बिन एबल टू डू दैट सक्सेसफुली. आई नो प्रोग्राम में अभी ज़्यादा कुछ मैं आपके लिए ला रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं लेकर आऊँ. बट इफ़ यू गॉट एनी फीडबैक्स अबाउट एनी थिंग दैट वी आर डूइंग इन द शो राइट नाउ, एंड आप चाहेंगे कि हम थोड़ा डिफरेंट करें, थोड़ा ये करें, थोड़ा वो करें, देन डू लेट मी नो. आई लव टू लिसन आउट टू योर फीडबैक्स एंड मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस. बट टिल देन आई ऑल्सो लाइक टू से थैंक यू सो मच आप सभी के साथ और समय के लिए जो आपने मेरे नाम किया और आज मेरे साथ आप जुड़े द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा के सफर में. इसी तरह से अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. अब आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे. एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिला उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पिए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैक कान टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, वही एक टिप्पणी पे ना करू टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिरूं, कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिरूं, जो भी जलता है उसको फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड वॉम वेलकम. मैं कौशिक आपका साथ निभाने के लिए स्टूडियोज में आ चुकी हूँ और 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. वैसे जीवन यदि अच्छी तरह से जिया जाए तो ये काफ़ी लंबा है और इसे आप किस तरह से इसका उपयोग करते हैं, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. तो बस इसी नोट पर अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, आई नो दैट, लेकिन इस ठंड के मौसम में थोड़ी थोड़ी वार्म वार्म बातें करेंगे. अच्छा, लेकिन मेरे पास नीतीश शेरा जी आने वाले हैं थोड़ी देर में अशोर वन से, और कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर आप पूछ सकते हैं, मैं उनसे पूछूंगी. 5599 पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं. लेकिन जब हम ये बातें कर ही रहे हैं तो कशिश फूड्स को भी थैंक यू कहते चले जाते हैं, जहाँ कशिश फूड्स आपके लिए आ जाते हैं मंडे टू फ्राइडे ये मेला लेके. एंड जब ये मैं बात करती हूँ कि मेला लेके, यानी कि माई टाइम लेकर मेरे साथ कशिका के साथ 12 बजे तक. वेलकम.
1: बचाओ क्या,

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: जब मैं एक्सपर्ट अड्डा की बात करती हूँ तो मैंने नितेश हीरा का नाम जरूर लेना होता है, क्योंकि नितेश हीरा जो हैं एक ऐसे बंदे हैं जिनके पास वो सॉल्यूशंस होते हैं जब आपके पास कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एंड आई वेरी मच हैव हिम ऑनलाइन एंड आपका टेक्स्ट आया, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो इन्हें गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं नितेश जी?
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, बहुत ठंड हो गई है, ठंड है, बहुत ठंड है। अच्छा, मेरे पास एक टेक्स्ट आया है एंड दे सेड कुड यू प्लीज आस्क नितेश जी टू हेल्प मी आउट, एंड ही सेड गुड मॉर्निंग काशिका जी, माय क्वेश्चन इज दैट आई एम अ 45 ईयर ओल्ड डैड विद टू किड्स एंड आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट गेटिंग इंश्योरेंस, बट देयर आर सो मेनी इंश्योरेंस एड्स दीस डेज वेयर इट इज एडवर्टाइज दैट प्रीमियम्स आर चीप बट इन रियलिटी इंश्योरेंस इज सो एक्सपेंसिव, व्हाई? मेरा भी ये सवाल है, व्हाई?
2: एक्सेलेंट क्वेश्चन, आई थिंक ही इज राइट, और काफी सारे लोगों की वो कंफ्यूजन रहती है। कमिंग टू द क्वेश्चन इटसेल्फ फ्रॉम दिस जेंटलमैन, जो एड्स आप देखते हैं वेदर इट्स ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो एड्स जो है वो कैप्चर करने के लिए प्राइस बेस्ड सिर्फ अटेंशन, मीन्स जो इंश्योरेंस होती है वो आपकी एज के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट होती है इंश्योरेंस के प्राइसेस। तो जनरली जो कशिका जी जो एड्स आप देखते हैं वो सारी मिनिमम 30 इयर्स ओल्ड हेल्दी मेल नॉन स्मोकर इंसान के लिए वो एडवर्टाइज करे होते हैं, एंड दैट टू अ लो लेवल ऑफ लाइफ कवर और हेल्थ इंश्योरेंस और व्हाटएवर, क्योंकि लेवल कितना इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट विद अ 200,000 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फॉर अ 30 ईयर ओल्ड हेल्दी मेल will be completely different price for a 45-year-old male who's possibly a smoker or having health issues, will be totally different price. So, jo wo ads hoti hain, that is just to okay gather your interest. Now, coming to actually how to go about shopping about insurance. Insurance ka premium aaj ke time mein log sab koi price ke liye shop karte hain, lekin there is a way to level your premiums. Wo premiums ko aap stabilize kar sakte hain for a long term. But that requires understanding आपका गोल। ये अगर आपका गोल है कि लाइफ इंश्योरेंस को लॉन्ग टाइम तक चलाना है और बच्चे को ले पैसा छोड़ के जाना है एज अ इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, तो वो लेवल करना स्मार्ट थिंग हो सकती है। बट अगेन डिस्क्लेमर, ये पर्सनल एडवाइस नहीं है, जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है। गोल पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक कि आप इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म अफोर्डेबिलिटी प्रेफर करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं, ताकि आपका हर साल प्रीमियम बढ़े ना। काफी सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं अरे हमारा प्रीमियम बढ़ गया व्हेन वी आर टर्न 50, अब हमसे इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं होता। सो व्हेन यू आर शॉपिंग अबाउट इंश्योरेंस, मेक श्योर यू कंसल्ट अ एडवाइजर एंड एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल ऑप्शंस टू स्ट्रक्चर योर कवर प्रॉपरली,
1: राइट,
2: अकॉर्डिंग टू योर गोल।
1: ओके,
2: सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट टू दिस जेंटलमैन, दैट इफ दे वांट प्रॉपर एडवाइस ही कैन गिव अस अ कॉल एंड वी कैन गाइड हिम थ्रू।
1: एब्सोल्युटली, और बुक कीजिए अपॉइंटमेंट 30 मिनट का आप नितेश जी के साथ। एंड नितेश हीरा इज फ्रॉम अश्योर वन, जहाँ का एक्सपीरियंस अफोर्डेबिलिटी इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस फॉर यू इज देयर मिशन। एंड द मैजिक नंबर टू गिव अ कॉल वुड बी 0800-77 हीरा,
2: करेक्ट, 0800-77 हीरा।
1: देखो मुझे भी याद हो गया, एक साल हो रहा है ना ये नो आपके साथ बात करते करते। सो 0800-77 हीरा इज द मैजिक नंबर वे यू कैन गिव अ कॉल, जिन्होंने टेक्स्ट किया है। एंड assure1.co.nz की वेबसाइट पर भी जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे नितेश, एंड वी विल टॉक टू यू सून।
2: थैंक यू सो मच कशिका जी, हैव अ ग्रेट डे,
1: यू टू, बाय बाय।
0: My time with Kashika.
3: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं।
4: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
6: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off cabbage.
7: Ooh, yuck.
6: Joining a company with a pyramid-shaped structure. Ordering Happy Meals as an adult. Celebrating your anniversary in the food court. Selling your clean urine to competitive cyclists. DIYing, side hustling, catfishing, cold sharing, couch surfing, foraging, freeloading, or joining a thruple.
7: How's it? I'm Dennis.
6: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
10: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
11: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
12: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
11: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
12: पर डेवलपमेंट के पैसे
11: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI.
10: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
13: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
14: Office shout out.
1: So, आज का office shout out आप मुझे दे रहे हैं, and this is coming from LW Architecture, and you are based in North Shore. So, आप लोग, आपकी टीम जो है आर्किटेक्ट्स की और जो काम कर रहे हैं वो सब मुझे सुन रहे हैं. Big thank you to you, North Shore वालों. ठंड हो है ना बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं. जस्ट वॉर्म चाय, गरम गरम चाय या हॉट वाटर आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी. चलिए, ये बात तो अच्छी रही, लेकिन अच्छी बात एक और है. लुई क्लेबर्ट जो है ये बन गए सेकंड कॉमनवेल्थ के गोल्ड के विनर. 400 मीटर्स का इन्होंने ये मेडल हासिल किया है. और कीवी स्विमर जो है, जो लुई क्लेबर्ट है, ये कॉमनवेल्थ जो ग्लास्को में हो रहा है वहाँ पर विजेता रहे. एंड एरिका फेयरवेदर हैज़ कम्प्लीटेड हर कैंपेन विनर विद अनदर सिल्वर. सो क्लेबर्ट ने जो है बहुत ही कमाल का इन्होंने प्रदर्शन भी किया. एंड एक क्लॉक टाइम ऑफ 4:08.72 पे फाइनल में, विच इज़ जस्ट 0.02 seconds आउटसाइड द 27-year-old पर्सनल बेस्ट गेम रिकॉर्ड सेट 4 साल पहले, जो कि बर्मिंगहम में हुआ था. तो अभी कंग्रेचुलेशंस, और यही अपडेट्स आपके लिए हम लेकर डेफिनेटली आते रहते हैं. एंड एज आई स्पोक अबाउट एरिका फेयरवेदर, यस, इन्होंने भी एक फेदर अपने कैप में लगा लिया है. सो बिग कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस एज वेल. तो इसी तरह से जो हमारा एक ज़बरदस्त मेडल का जो टैली है, हम अब 8th पोजीशन पर आ गए हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के पास अब 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं. सो congratulations.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Jessica.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
2: Are you ready? Chatbusters.
3: Thoda to hall bana de.
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: I totally understand. हमारी ब्रांच कोई नहीं है. वैसे हम ऑकलैंड में है, लेकिन आप रोवा ऐप के जरिए हमें डेफिनेटली सुन सकते हैं. और जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं, हमें आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि हमारे रोवा के स्टेशन पर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं. जब आप हमें सुन रहे होते हैं, उस समय आपके लिए ऑप्शंस आ जाते हैं. जैसे कि हमारा, अगर आप नॉस्टैल्जिक होना चाहते हैं, 60s 70s के ट्रैक सुनना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए हमारा हम रिवाइंड होता है. फिर आप 80s के ट्रैक्स अगर सुनना चाहते हैं, तो हमारी जूक बॉक्स होता है. इसके अलावा अगर आप हमें अलग से सुनना चाहते हैं, जैसे फीजी भजन, फीजी कीर्तन संग्रह, तो उसकी 24/7 के ये भी आपको ट्रैक्स मिल जाते हैं. पंजाबी हिट्स अगर आप सुनना चाहते हैं, तो चढ़दी कला और साथ साथ राहत फतेह अली खान का एक कमाल का म्यूजिक स्टेशन आप डेफिनेटली सुन सकते हैं. अगर आप अभी सोच रहे होंगे ये तमा तमा गाना सुनने के बाद क्या हुआ, तो दरअसल आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं नन अदर देन संजय दत्त. संजय दत्त जी का बर्थडे है. एंड संजय दत्त वाकई एक बहुत ही काबिल एक्टर हैं, जो बहुत सारी वैरायटी देते हैं. और रॉकी फिल्म में इन्होंने काम भी किया था, एंड उसके बाद कई ऐसी फिल्मों में जिसमें ये नज़र आए थे. आप आई somehow लाइक द एक्टर डेफिनेटली. तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. डू यू रिमेंबर हिम इन दिस मूवी?

0: Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: वैसे अगर आप हमें सुन रहे हैं और आप हम किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो हम आपकी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकते हैं. buzz@mfm.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. ऑकलैंड रामायण संस्था का मासिक जो कथा है वो इसी शुक्रवार के दिन 7:15 होने वाली है. ARST कम्युनिटी सेंटर मांगरे आप पहुँच सकते हैं. इसके साथ साथ श्री राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ इसी सैटरडे से जो है वो शुरू होने वाला है 7:00 और फिर 8:45 से ये रामायण का पाठ शुरू होगा और संडे को 2 तारीख को रामायण का पाठ जो है वो अंत किया जाएगा और हवन और आरती का भी आयोजन किया गया है. इसी के साथ हमारे साथ साथ मेघ उत्सव जो है ये होने वाला है 2 से और ये पूरे के पूरी कम्युनिटी को इनवाइट करना चाहते हैं. एक ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपके लिए कल्चरल परफॉर्मेंसेस, खाने पीने के स्टॉल, कुछ किड्स कॉर्नर हैं, गेम्स एक्टिविटीज़ हैं, शॉपिंग करने का आइडिया बहुत ज़बरदस्त है. माउंट एल्बर्ट वॉर मेमोरियल हॉल 4:30 to 8:30 आप पहुंच सकते हैं और ये एक बिल्कुल फ्री इवेंट है. इसी के साथ साथ आप डिस्कवर कर सकते हैं एक टाइमलेस डायलॉग जो आपके एक मॉडर्न पाथ में राइट लिविंग फोकस ऑन इनर पीस दिखा सकता है. चिन्मय मिशन आपको भगवत गीता डिकोडेड मास्टर क्लास के लिए इनवाइट करना चाहते हैं जिसे ट्रेन आपको करने के लिए वेदांत टीचर ब्रदर ईशान चैतन्य जो हैं ये करने वाले हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द कमेंट्री ऑफ पूज्य स्वामी चिन्मयानंद. और ये एक इंटरैक्टिव सेशन जो है अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को डीपन करना चाहते हैं जर्नी को 7 अगस्त के दिन 7:30 to 8:00 न्यू लेन कम्युनिटी सेंटर टोटारा एव न्यू लेन में हो जाएगी. ये एंट्री बिल्कुल फ्री है. chinmayamission.org.nz के जरिए आप क्लिक करके रजिस्टर भी कर सकते हैं. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आप प्लेयर्स को इनवाइट करना चाहते हैं टू पार्टिसिपेट. रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक के पेज पे पहुंच जाए नहीं तो पंकज मुंगा से संपर्क करें 021-0908-5067 के जरिए.
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने. हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने.
3: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get 2 pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
4: Good news, tradies. This Saturday, Mitre 10 Mega Botany Aye for a free sausage. Supplier demos on-site or giveaways. Range, convenience aur aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast. Subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
5: Branchy Group 3 Event New Zealand અને Aroha Autos સાથે મળીને પ્રસ્તુત કરે છે રાજ ગઢવી લાઈવ ઇન ઓકલેન્ડ. તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1 ઓગસ્ટ ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર રાજ ગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજ ગઢવી સેટરડે નાઇટ 1 ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz.
9: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
10: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today. The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
11: Here you go.
12: Thank you.
13: I reckon we should do some advertising.
11: Great. I like doing advertising.
12: I love doing advertising.
11: What about?
12: Thomason does advertising.
11: And what should it say?
12: Thomason does advertising.
11: Nice. I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
12: Nah, keep it simple, I reckon.
13: Thomason does advertising.
14: Winger Motors mana raha

0: purchase Chery Super Hybrid System range. Come fuel bina flexibility compromise kiye. Visit Winger Motors West Auckland, Green Lane, Manuko or Pokekoi ya winger.co.nz. Offer 31st July tak. T's and C's apply.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
2: So Dream Diary में मेरे पास आपका कॉल आया एंड आपने बताया कि यू वर विद योर मॉम एंड एक कार में आप थे और ड्राइवर सीट पे शायद आपकी मॉम थी. आपका शायद कंट्रोल लूज हो गया और उसके बाद आपकी गाड़ी जाके बुशेज में हिट करी. अब ये एक्चुअली जो ड्रीम होता है ना, ये नेचर आपको बता रहे हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लिए. ये बुशेस जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कुछ छोटे छोटे हर्डल्स, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस जो आप नेविगेट करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं. अगर आपको लगता है दैट ये एक इमोशनल साइड की तरफ आप अगर जाते हैं तो इतना ही कह सकती हूँ दैट मेजर डिसीजंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं एंड यू आर वेकिंग टू लाइफ राइट नाउ. डेफिनेटली कुछ आपके माइंड में कॉमन एक्सपीरियंस होता है इस समय, कोई ट्रांजिशन, कोई स्ट्रेस, कोई किसी चीज़ को आप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं. तो ये इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली हो सकती हैं और यू नेवर नो, ये ऑब्स्टिकल्स आपके लिए बड़ी नहीं हैं. सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट. इतना ही कह सकती हूँ इट Definitely represents your life journey, your career, or also please look after driving. I can only say that. Anxiety मत रखिएगा क्योंकि obstacle ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा आपका. चलिए आपको अब मैं लेके चलती हूँ एक ऐसे beautiful से track की तरफ जहाँ पर I still remember watching this movie so well. लेकिन movie तक तो हम पहुँच ही रहे हैं and मुन्ना भाई MBBS of course किसको याद नहीं है, लेकिन गरबा की जो नाइट है सबको याद है. 1 अगस्त के दिन महात्मा गांधी सेंटर में बहुत कम टिकट्स बची हैं. eventstickets.co.nz के जरिए आप जाके टिकट्स खरीद सकते हैं. पहली एक ये खूबसूरत रात होगी जहां पे सेलिब्रेशन और काउंटलेस मेमोरीज आप क्रिएट कर सकते हैं. राज गढ़वी स्टेज पर आपके लिए लाइव परफॉर्म करने आ रहे वाले हैं. लोटस प्रोडक्शन श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता, प्रांशी ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहे हैं फॉर द मोस्ट एंटिसिपेटेड गरबा विद राज गढ़वी लाइव.

पर्टिकुलर मूवी के लिए मैं कह सकती हूँ आई हैव बीन अ बिग बिग फैन ऑफ द मूवी साजन. 1991 में ये फिल्म जब आई थी तो इस फिल्म को यू नो 11 नॉमिनेशंस मिले थे, बेस्ट फिल्म डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर संजय दत्त, बेस्ट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, एंड दो अवार्ड्स तो जीते ही थे, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण एंड प्लेबैक सिंगर कुमार सानू फॉर अ सॉन्ग विच इज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग. अच्छा चलिए इस ब्यूटिफुल से ट्रैक की तरफ तो मैं आपको लेके चलती ही चलती हूँ, लेकिन साथ में याद दिला देती हूँ कहीं से भी आप इस समय सुन रहे हैं इस ब्लॉकबस्टर गाने को भूलिएगा मत, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर था, जो अमन का कैरेक्टर था, दरअसल ये पहले आमिर खान को दिया गया था और बाद में ये लैंड अप हुआ विद नन अदर दैन संजय दत्त. लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये गाना है. अच्छा अगले घंटे पर मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए है जहाँ शायद आप एक विनर बन सकते हैं. ओके फिलहाल के लिए

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: दिहा जो 15 ओवर आई, टेम्परेचर ऑफ 7 आज का फोकस बताया जा रहा है और कुछ फ्रॉस्ट सुबह के समय आपने महसूस की होगी. नॉर्दर्लीज दोपहर के बाद डेवलप होते चले जाएंगे. इट फील्स लाइक 9 डिग्रीज राइट नाउ. 5:34 पर सनसेट बताया जा रहा है.
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर लिव बेटर.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू? और देखिए, जब भी मैं आती हूँ तभी आपके साथ समय की जो कीमत है उसको याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। टाइम इज़ मनी, समय कितना मूल्यवान है। और जीवन में यदि सही से या अच्छी तरह से अगर हम जिए तो ये एक काफ़ी लंबा सफ़र आपका बन सकता है, वरना तो आप सफ़र करने लगते हैं। माय टाइम लेकर मैं काशिका आपकी रिमाइंडर क्लॉक आ जाती हूँ, बस इन्हीं बातों को याद दिलाते हुए। और इसी के साथ साथ थैंक यू टू कहना चाहती हूँ डेफिनेटली टू नन अदर दैन कशिश फूज, जिनके सौजन्य से आपके लिए ये मुमकिन हो जाता है। चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं और स्ट्रेट अवे पहुँच जाते हैं एक ब्यूटिफुल से ट्रैक की तरफ। और फिर एक साथ में मेरे पास एक रीज़न है, यू नो, यहाँ इस बार प्रॉबेबली विंटर्स में बारिश बहुत कम पड़ी है, लेकिन पड़ी ज़रूर है। लेकिन जब ये बारिश पड़ती है तो किस तरह से आपके पैरों पर कभी कभी लग जाती है, तो आपके लिए वो कितना ज़्यादा क्या असर कर सकती है, चलो इसी के बारे में कुछ थोड़ी बड़ी बातें करेंगे।
1: बचाओ क्या

0: better, live better.
1: Eat better, live better. लेकिन एक चीज तो है, you know, जब पानी बरसने लग जाता है, इसका मतलब होता है कि जो प्लांट्स जो हैं उनमें ग्रीनरी बढ़ने लग जाती है, बट उसी के साथ साथ कुछ फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ भी शुरू हो जाती है. अगर आपको लगता है कि आप यू नो पानी में चलना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ इतनी ठंड होती है उस दौरान, लेकिन कभी कभी समर्स में भी बारिश बारी हुई है, लेकिन ये जो डर्टी वाटर होता है ना, इसमें आप ज़्यादा टाइम के लिए आप नहीं चल पाते नंगे पाँव, क्योंकि यू नो आपकी जो एक स्किन के अंदर एक इशू होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, और वो जो कंडीशन होती है, प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, वो बिगड़ने लग जाता है. और इस दौरान क्या होता है, कुछ कंटैमिनेटेड स्टैग्नेंट पानी जो होता है वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स के साथ साथ पानी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ऐसे में वो आपके लिए एक फंगस डेवलप कर सकता है. डैम्पनेस और एक्सपोजर एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर स्किन, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. तो कभी जब आप पानी में से निकल कर आएँ, यू नो अगर नंगे पाँव चल भी लिए हैं, तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि घर में आते ही पानी ज़रूर निकाल दें, गंदा पानी, पाँव को धो लें. और कभी कभी मिट्टियों के अंदर भी यू नो वो बैक्टीरिया होती है, या कुछ रोड्स पर कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं जब वो क्लीन करते हैं. मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने पैर को ना धोएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि स्किन जो है ड्राई हो जाएगी और इरीटेटिंग आपकी स्किन में इरिटेशन शुरू हो जाएगी. क्लेंजर लेके अपने टोज के बीच में, अपने नेल्स के अराउंड, एंकल्स पर डेफिनेटली आप सोप लगाइए. कुछ एंटीसेप्टिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डर्टी वाटर विल कम आउट. अपने पाँव को अच्छे से ड्राइव करने के बाद रब कीजिए, और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बस डेफिनेटली नोटिस कीजिएगा कि कहीं पर ऐसा ना हो कि ये फंगल डिजीज़ आपके पास निकल के आ जाए. कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ पैचेस में आपकी मॉइस्चर जैसा आपको फीलिंग आ रही है, तो ड्राई पेपर टॉवल लेकर वो आप सोक कर सकते हैं. रेनी वेदर ड्राइनेस ज़रूर लेकर आता है, तो मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हील्स टोज डेफिनेटली. और अपने जो सॉक्स होते हैं, मेक श्योर आपके सॉक्स जो हैं वो ड्राई हों, और बारिश में आजकल मौसम में यू नो मॉइस्चर रह जाता है सॉक्स के अंदर. मेक श्योर वेल मेंटेन्ड वेल वेंटिलेटेड आपके सॉक्स हों, और गीले सॉक्स पहनने से शूज़ के साथ साथ इट कैन हैव अ फंगल ग्रोथ. तो ये अपने पाँव की बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रखें. आपके जो शूज़ में अच्छा एयर फ्लो होना चाहिए, नेल्स आपके ट्रिम होने चाहिए, कभी किसी की टॉवल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, एंड मेक श्योर आप वो फ्लेकिंग वगैरह, आपको इचिंग वगैरह का फीलिंग ना आए, लेंस जो आपके नेल्स है उसमें डिसकलरिंग ना हो, स्वेलिंग ना हो, पस ना हो, और किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के साथ आप डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर आपके शूज़ बिल्कुल ड्राई हैं जब आप इन्हें दोबारा पहन रहे हों. होप दैट्स क्लियर. ओके, आई एम श्योर. सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट. जल्दी कीजिए, 555-999 पे टेक्स्ट कीजिए.
0: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Dia.
1: Streaming on Rover.
2: Maddie didn't think she needed a DVS system.
3: I've got a heat pump.
2: That should do. But it didn't do it, did it, Maddie?
3: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
2: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: Right now, in midwinter with ills, chills, the short week and school holidays kicking in, many of NZ Blood's regular donors are out of the game. So if you can, please make time to give blood this week. The team would really appreciate your donation. Come off the bench and make a real impact. Your donation of blood could help save up to 3 lives. Bloody legend. Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
5: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
6: Hi, Kevin Eder here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
7: TradeStaff, industrial employment solution. TradeStaff.
8: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
9: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
10: तो मेरी आज की six word story, मुझे लगता है आप कोई student है और आपने लिख के मुझे ये भेजा है. All these books make me dizzy. ओह वाह. All these books make me dizzy. अरे पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो फिर आगे बढ़ोगे, है ना? तो all these books make me dizzy. आपका नाम शांतनु. ओके शांतनु, आपने लिख के भेजा. ऑल दीज बुक्स मेक मी डिजी, बट डोंट वरी, मैं आपके डिजीनेस को कम करती हूँ. अच्छा है ना, आप हम सुन रहे हैं और जब आप हम सुन रहे हैं ना तो आपको एक रिलैक्सेशन होने लग जाता है. मैं आपको एक मौका दे रही हूँ अब, जहाँ पर करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके ऑकलैंड पधार रहे हैं 25th of August के दिन एट द स्पार्क अरीना. तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, और इसमें बाय द वे इक्की भी आने वाले हैं जो आपके लिए कुछ अमेजिंग इनक्रेडिबल सॉन्ग्स अपनी जर्नी लेकर आएंगे. एक इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंस होने वाली है जहां पे करण औजला के साथ इक्की परफॉर्म करने वाले हैं. डबल पास जीतना है तो एक काम करो, के ए लिखो, एक सिंपल सा आंसर आपको लिख के भेजना. देखो मैंने अभी अभी उसका जवाब आपको दिया था. करण औजला कौन से दिन परफॉर्म कर रहे हैं, आई मीन द डेट, कौन से दिन परफॉर्म कर रहे हैं करण औजला. 5599 पे के ए लिखे, कौन से दिन परफॉर्म कर रहे हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. एंड आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड करूंगी. डोंट फॉरगेट टू ऐड योर नेम एज वेल. ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
9: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: एक फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे ऑकलैंड के सिटी रेल लिंक से कंसर्न है, ऑफिशियल्स जो हैं बिल्कुल एकदम चुप पड़े हुए हैं. और यू नो ये टनल जो है ये खुलना ही है, खुलना है, और इतनी सब नॉइज़ के बाद यू नो कहा ये जा रहा है. एक टाइम टेबल जो है फॉर यूटिलाइजिंग द न्यू टनल ये रिलीज़ किया गया, अनाउंसमेंट भी हुआ. कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये पैसेंजर सर्विस जो है ये कब शुरू होने वाली है यूजिंग द सिटी रेल लिंक, CRL जिसको हम कहते हैं. कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है इसमें. ऑब्वियसली यू नो वन ऑफ द डेज प्रॉब्ली 30th of August आई थिंक इट वॉज स्पेक्यूलेटेड, लेकिन अभी भी ये बात कंफर्म नहीं हो रही. कहा जा रहा है अर्ली सितंबर में ये हो सकता है ओपनिंग. अब ये कुछ काफ़ी सारे सीरीज ऑफ स्टेशन जो हैं जो उनकी ओपन डेज फॉर पब्लिक ये स्केड्यूल की जा रही फ्रॉम अर्ली टू मिड ऑफ ऑगस्ट, लेकिन हाउ मच इज़ इट गोइंग टू बी वर्किंग आउट टू बी. अब लॉट्स ऑफ बिजनेस जो सोच रहे थे कि अगस्त के महीने में ये खुलेगा, सेप्टेम्बर में, क्या फिर नवम्बर दिसंबर में खुलेगा, कुछ किसी को नहीं पता. एंड दिस एक्चुअली is making people get so frustrated. Common question is कि I think ये table हमारे पास आ रहा है, but we are very close to the opening. So मानो रीवा पापाकुरा के जो counselor हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने project leader से पूछने की कोशिश की, नए time table कब से शुरुआत होगी, नया time table on what date does this apply. So इस तरह के questions हैं, इनके answers अभी नहीं आ रहे हैं. लेट्स वेट एंड वॉच. एटी के रेल सर्विस के ग्रुप मैनेजर मार्क ने बताया कि देर आर टू मेन हर्डल्स विच आर स्टिल टू बी ओवरकम. ये 5.5 billion का प्रोजेक्ट था विच इज़ रेडी टू रोल, बट अभी कुछ लगता है दी क्लोजिंग ऑफ द रिकमेंडेशंस, आउटकम्स जो एमरजेंसी सर्विसेज के टेस्ट वगैरह हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है. चलिए जहाँ अभी यहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर.

0: चुका।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
3: थैंक यू सो मच आपके रिस्पांस के लिए अनुपम। आप अजय, अंतरप्रीत एंड 0450 एंड साथ में 5913 एंड 0615 साथ में आई हैव गॉट 1203 2837। आप सबके नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर दिए हैं फॉर द डबल पास करण औजला के लिए। अच्छा, अभी यू नो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग जहाँ पे रणबीर कपूर रामायण में नज़र आने वाले हैं एज श्री राम। और आज वैसे बाय द वे गुरु पूर्णिमा भी है, तो जितने भी लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबको इसकी बधाई। और जब इनसे सैंडियागो में ये अपने इसको मूवी को प्रमोट करने के लिए गए हैं, और इन्होंने किसी को बताया कि जब इनको ऑफ़र किया गया श्री राम का, रामचंद्र जी का रोल, तो उनके अंदर पहले तो एक डाउट आया, एक डर आया कि क्या ये केपेबल हैं, कि क्या इज़ ही गुड इनफ। और फिर इन्होंने उसे चेंज करा टू ग्रैटिट्यूड। इन्होंने कहा इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने कहा एवरी इंडियन, एवरी पर्सन फ्रॉम द एथनिसिटी, इंडियन एथनिसिटी, इन्होंने कहा कि वो रामायण की स्टोरी के साथ इतना ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ये इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा अपील लेकर आएंगे। रामायण की स्टोरी के साथ सब बड़े हुए हैं, उनकी टीचिंग्स के साथ सब बड़े हुए हैं, एंड प्रॉबेबली कह रहे थे कि इससे शायद आई विल टर्न आउट टू बी अ बेटर पर्सन। आई बिकेम माई फादर फर्स्ट टाइम, सो उन्होंने कहा कि मैं अपने अपनी बेटी को ये कहानियाँ रामायण की डेफिनेटली सुनाता चला जाऊँगा। अब एक और अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने रामायण को समझना शुरू कर दिया है। और ये फिल्म जो है रिलीज़ होने वाली है थिएटर्स में दिवाली के समय, और बहुत अच्छी कास्ट है इसके अंदर। डेफिनेटली इट्स वर्थ अ वेट।
0: ड्राइविंग योर होम The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Weeknights you're flat out. And it's leftovers again?
8: Don't settle for meh dinners. Spice things up with HelloFresh.
7: Zesty laksa, viral tacos or a juicy steak. Ready in minutes. Mm. Take back dinner time with HelloFresh.
9: Take your furry friends back to their room. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
10: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
11: Join our tribe!
10: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
11: join our tribe!
12: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.

रेस्क्यू मी रिसाइकल मी में आज मैं आपके साथ कुछ और बात करना चाहती हूँ. द रीज़न इज़, कहते हैं कि एक 2 आवर विंडो होती है. अपना जो खाना होता है जो आपको लगता है कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसको आप एक हॉट डे में जहाँ 32 डिग्री टेम्परेचर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे तक बाहर रखिए, उसके बाद बाहर मत रखिए. और अगर आपको इसको रीहीट करना, लेफ्ट ओवर्स को, उनको आपको स्टीमिंग हॉट यानी गर्म करना है. कभी भी राइस को और पास्ता को दोबारा एक बार गर्म कर लिया, इट्स फाइन, लेकिन दोबारा से गर्म मत कीजिए. और कहा जाता है जब आप खाना बना लेते हैं, कुक्ड राइस या पास्ता जो होता है उसको 2 दिन के अंदर अंदर आपको खा लेना चाहिए. इट्स बेस्ट बिफोर दैट, अदरवाइज डेफिनेटली इट्स नॉट वर्थ ईटिंग. इफ़ यू आर नॉट ईटिंग इट इन टाइम, आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं चीज़ को, चाहे वो सूप्स हों, स्ट्यूज हों या कुक्ड मील्स हों, वो 3 महीने तक ही लास्ट कर सकते हैं आपके फ्रिज में. सो हियर यू गो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट ये इस तरह की चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं.

बातों बातों में पता ही नहीं चलता कब थ्रोबैक आ जाता है, लेकिन अभी कह सकती हूँ कि जैसे कार कशिका का नमस्कार, आज का दिन कहलाता है हमवार या बुधवार, जो भी इसे कहना चाहे। मैं तो भाई आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ, और वो दिन कहलाएगा गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार। वैसे आज का दिन जो है वो है गुरु पूर्णिमा, अगर आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं टीम हम की ओर से। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज केतन। लुक आफ्टर योरसेल्व्स, कल सुबह मिलती हूँ एंड स्टे वार्म।